100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन रविवार, ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 14 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

क्षण में राम, क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो रहा है और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं लेकर आपकी पसंदीदा भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। इस पावन मेला में आपकी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हम मंगलमूर्ति विघ्न विनाशक भगवान गणेश के चरणों में सादर वंदना।

आपके साथ करते हैं। आइए उनके पावन स्मरण से अपने अंतःकरण को अलौकित करें ताकि जीवन का प्रत्येक मार्ग निर्विघ्न और कल्याणकारी हो।

श्रोताओं, वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वे न केवल अंधकार मिटाते हैं बल्कि हमारे जीवन को आरोग्य और शक्ति से भरते हैं। उनकी पहली किरण में जो जीवन शक्ति है, उसे आज अपने भीतर महसूस कीजिए। आइए भगवान सूर्य को नमन करें और अपने तन और मन की शुद्धि का संकल्प लें। ओम सूर्य देवाय नमः।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी झुककर ही कदम उठाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर उस अनंत आकाश जैसी कृपा को पाना है तो पहले अपने अहंकार की सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। आइए प्रभु भक्ति में एक बार फिर से लीन हो जाते हैं और करते हैं उसका स्मरण।

कहते हैं भगवान छप्पन भोग के नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। तभी तो चक चक कर खिलाए गए वो बेर भी दुनिया के सबसे मीठे बेर बन गए। आइए भक्ति के इसी निश्चल रंग में डूबते हैं इस बड़े ही प्यारे और मनमोहक भजन के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि। मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र तरुश्री, सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। जिन्हें पा लेने के बाद दुनिया में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उन देवों के देव महादेव के चरणों में चलिए, खुद को समर्पित करते हैं। आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, देखिए कैसे सारे संकट दूर हो जाते हैं।

श्रोताओं, 6:55 हो रहे हैं और इसी खूबसूरत से मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो गरीब का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह भी शहीद हो गए। शहीद के निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर है। असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर कल हुई इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह सहित फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश सरकार जुलाई माह में राज्य के सभी जनपदों में निपुण संकल्प कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। प्रदेश के 33 केंद्रों पर 6 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षिक विशेषज्ञ एवं जिला स्तरीय टीमों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में

देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निपुण संकल्प कार्यशालाएं शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रभावी रणनीति तैयार करने, विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, यानी तरुश्री, आपकी दोस्त। हाजिर हूँ एक बार फिर से ये जो खूबसूरत सा कार्यक्रम है ना, सदाबहार गीत, इसको लेकर। और सदाबहार गीत में होता क्या है, हर बार क्या होता है, जी हाँ, खूबसूरत से ये जो गाने हैं ये आपका इंतज़ार करते हैं, और इसी खूबसूरत दिन को और खूबसूरत बनाने के लिए ये रहा आपके लिए पहला सॉन्ग।

देखिए मेरा तो इरादा बड़ा ही नेक है जी, आपको खूबसूरत सदाबहार नगमे सुनाने का इरादा। हवा में आज एक अजीब सी बेकरारी है, जैसे कोई चुपके से कानों में कुछ कह गया हो। दिल का मामला भी बड़ा अजीब है, न वक्त देखता है न जगह देखता है, बस जब होना होता है तो बस हो जाता है। चलिए आज वक्त की सुइयों को थोड़ा और धीमा करते हैं और डूब जाते हैं उस एहसास में जहां सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हर दौर में हमारे दिल के सबसे करीब रहते हैं। कुछ गीत सिर्फ कानों के नहीं, सीधे रूह को छूते हैं, जैसे बहती नदी के किनारे ठंडी हवा का एक झोंका जो दिल को एक अजीब सा सुकून दे जाता है। जब दो दिल एक ही धुन में धड़कने लगें तो ज़िंदगी खुद ब खुद एक खूबसूरत सुर बन जाती है। तो आइए एक और सुरीले नगमे में हम लोग भी खो जाएं।

जी हाँ दोस्तों, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, है ना। कहते हैं मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो अपने साथ एक मीठा सा दर्द भी लाती है, एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं चाहता, एक ऐसी बेचैनी जिसमें सुकून मिलता है जब हर आहट पर सिर्फ एक ही ख्याल आए और जो धड़कने हैं वो बेकाबू होने लगे। तो समझ जाइए कि आप चाहत के उस मोड़ पर हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो आइए दिल की इसी कशिश और इस खूबसूरत से दर्द को महसूस करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों 7:33 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ। बहुत ढेर सारी मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं और आप भी अगर मेल भेजना चाहते हैं तो हमें मेल भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल कुछ अच्छे ऐसे मेल्स आ जाते हैं ना तो उनको पढ़कर हमारा दिन बन जाता है, क्योंकि अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है यानी कि मेरी जो है मेहनत वो सफल हो रही है और इसी सफलता का जो प्रमाण है ये आपके मेल्स हैं। तो पहला मेल मैं शामिल करती हूँ घनश्याम सिंह जी का। लिखते हैं कि ये पुष्पांजलि और सदाबहार गीत दोनों सुन रहे हैं और लिखते हैं कि मौसम जो है ना 2 दिन से काफ़ी सुहाना हो गया है। ये तो बात सही कही, कल का जो मौसम ऐसे बदल सा गया ना उससे पूरा दिन बन गया और आज भी दिन इसी तरह से कंटिन्यू है। अब देखते हैं कि आगे का दिन कैसा होने वाला है। वैसे तो आज संडे है, आज आप भी फुर्सत में होंगे तो अच्छा लगता है जब ऐसे फुर्सत में बैठ के आप कार्यक्रम सुने तो मुझे भी पसंद आएगा। आगे ये लिखते हैं कि इनके घर में जामुन का बड़ा सा पेड़ है और जामुन जो है वो पक के गिर रहा है और हमारे घर के लोग रोज़ खा रहे हैं और मोहल्ले में भी सबको खुश रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सबको बांटे जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ वैसे भी प्रथा होती है। आप ये जो पेड़ लगाते हैं अपने घर में ये सिर्फ आपका थोड़ी ना है, ये हमारे पूरे मोहल्ले का होता है और यही तो खूबसूरती है इन रिश्तों की। हमारे घर में भी आम के पेड़ हैं और आम इस टाइम पर पक के जब गिरते हैं ना तो हम कितने आम खा पाएंगे, है ना? तो बांटने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में कहाँ। तो ये जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेल पढ़कर। और आगे हम मेल शामिल करते हैं, संजय वर्मा लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं और लिखते हैं, जानकीपुरम विस्तार से लिख रहे हैं और राधे राधे कैसी हैं आप? तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सदाबहार गीत ये सुन रहे हैं और बहुत पसंद आ रहा है, इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये गाने अच्छे लग रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। रामराज जी मेल कर रहे हैं और इन्होंने सदाबहार गीत भी सुना और इन्होंने हमारा प्रोग्राम पुष्पांजलि भी सुना तो उन्हें अच्छा लग रहा है। ये रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमसे इस कार्यक्रम के ज़रिए जुड़े, इस मेल के माध्यम से जुड़े। और इन्होंने कुछ नाम लिख के भेजे हैं, चलिए वो भी पढ़ देते हैं। राम राज, राज भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, तो सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें, हमारा प्रोग्राम सुनते रहें। और अब एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

अच्छा दोस्तों, ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो तरीका है ना, मेल भेजना, आपसे जुड़ना, आप हमारी बातें सुनते हैं, हमें अपनी बातें पहुंचाते हैं, ये एक अलग सा रिश्ता है। और जैसे इस रिश्ते में बेकरारी रहती है, क्या बेकरारी रहती है, जैसे आपकी मेल्स का मुझे इंतज़ार रहता है, बेकरारी ये रहती है कि आप क्या भेजने वाले हैं मुझे। तो ये जो एक बेकरारी है, इसमें भी एक अपना ही मज़ा है ना। और वो बेकरारी आपके अंदर भी होती होगी कि कब मैं मेल भेजूँ, कब मेरा मेल पढ़ा जाएगा, है ना। तो चलिए इस बेकरारी को थोड़ा सा खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ मेल्स और शामिल करते हैं। सुधांशु जी हमसे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि कार्यक्रम पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा और प्रभु के भजन बहुत अच्छे बजाए और कार्यक्रम सदाबहार गीत अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं और आकाशवाणी पर आज महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की कमेंट्री आएगी या नहीं तो वो आप बता दें, तो मैं आपको भी अपडेट कर दूंगी इस बारे में। लेकिन फिलहाल आपका मेल मुझे मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बता सकते

हैं कि ये जो सदाबहार गीत है या सदाबहार नगमे हैं, ये जो ये प्रोग्राम आप सुनते हैं, तो जब भी आप इन गानों से जुड़ते हैं तो आपके मन में क्या भावना आती है? क्या वो पहली याद है जो आपको याद आती है? क्या चीज़ें हैं जो आपको बार बार उस माहौल में वापस ले जाते हैं? जैसे ये जब भी ये गाने मैं सुनती हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है वो रेडियो सेट जो मेरे घर में बजा करता था। जी हाँ, जब हम साथ में रहा करते थे, छोटे, जब पूरा एक परिवार साथ में रहा करता था, तो वो जो रेडियो सेट था हमारी दादी के कमरे में, वो सुबह सवेरे शुरू हो जाता करता था, उसमें आकाशवाणी की गूंज सुनाई देने लगती थी। तो ये जो सदाबहार नगमे जब मैं सुनती हूँ तो हमेशा मैं उसी दौर में पहुँच जाती हूँ, फिर से वही 5 साल की तरु बन जाती हूँ और मुझे वो सब कुछ याद आता है जो इस गानों को सुन के याद आता है। तो वैसे ही आप अपनी भी भावना हमें लिखकर भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। शकील अहमद जी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि मेरे लिए सदाबहार गीत प्रोग्राम सबसे फेवरेट प्रोग्राम है। सुबह सुबह इतने सुरीले और सुपरहिट गाने सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है और हमेशा की तरह उनको मेरे सॉन्ग्स बड़े पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत खुश हूँ, ये पढ़कर बहुत खुश हूँ कि आप जिस तरह से तारीफें करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलिए और भी मेल शामिल करते हैं, लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

हाँ जी दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब ये मेल्स मुझ तक पहुंचते हैं और भी मेल्स शामिल करने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 7:49 हो गए हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। गुलफ़ज़ा सिद्दीकी जी ने मेल भेजा है और उन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है और साथ ही साथ कई सारे नाम भेज दिए उन्होंने। रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, प्रवीण साहिबा अंसारी, सब हमें सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मेल से उन्होंने बहुत सारी मेल्स कर दी हैं, सबके नाम उन्होंने हमें गिनवा दिए। अच्छा लगा आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। कोमल तिवारी ने मेल करके भेजा है कि गाने बड़े प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेनित कुमार जी हमें अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि सदाबहार प्रस्तुत करने वाली बहन आपको शुभ मॉर्निंग, वाह गुड मॉर्निंग, शुभ मॉर्निंग, शुभ प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं कि अच्छे गाने बज रहे हैं तो मौसम भी सुहाना है और गाने भी सुहाने हैं तो बहुत सुपर हिट प्रोग्राम लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस तारीफ़ के लिए। और आप भी हमसे जुड़े रहिए क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, आगे और भी अच्छी अच्छी बातें हैं और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। सौरभ यादव जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है तो आपको भी बड़ा ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ब्रजेश सिंह जी मेल भेज रहे हैं कैसरगंज बहराइच से और लिखते हैं कि सब बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। अब एक और मेल आया है हमारे पास दिलीप कुमार बेनीगंज हरदोई से और लिखते हैं कि गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, रेडियो सुन के बचपन की याद आती है और हम जब दादी बाबा रेडियो सुना करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो अभी आप हमसे रेडियो के ज़रिए जुड़े हैं या फिर अपने मोबाइल के ज़रिए जुड़े हैं या फिर ऑनलाइन के ज़रिए जुड़े हैं या फिर ऑन AIR ऐप के ज़रिए जुड़े हैं, ये भी हमें बताइए क्योंकि ये भी अलग अलग माध्यम है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे गीत आप तक पहुंच सकते हैं। तो एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए, सुनते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, 7:57 का वक्त, यानी कि ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है इसको अब वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। एक खूबसूरत से गीत के साथ मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:15 पर। जी हाँ, फिर से लौटूंगी एक और दोस्त के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बंजी
1: ये राशन के 15,000 सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए
1: पक्का
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in हर घर सूर्य घर
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारत

0: भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड

0: स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद

0: में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देश बंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: उदासियों की इतनी मजाल कहाँ जो हमारी सुबह का रास्ता रोक ले, उदासियों की इतनी मजाल कहाँ जो हमारी सुबह का रास्ता रोक ले, जब दिल में उम्मीद और लबों पर अपनों की दुआओं मुस्कुराती हूँ।
3: क्या बात है, वाकई जब अपनों की दुआएं साथ में हो ना, और आप कभी उम्मीद नहीं छोड़ते ना, तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होता है, हमेशा अच्छा होता है और आपका दिन, आपका साल बहुत अच्छा गुजरता है। फिलहाल आपके दो दोस्त आ चुके हैं आपके बीच गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम लेकर।
2: जी हाँ, और ये सुरीली सी आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरे अलावा, जी हाँ, ये है स्वेच्छा, हमसे जुड़ चुकी है और मैं हूँ तरुश्री, आपके साथ सुबह से हूँ। तो हम मिलकर प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। तो बढ़िया सा आगाज हो चुका है कार्यक्रम का, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे गीतों का सिलसिला भी है, तो एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज का मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है। स्वेच्छा
2: जी, आज का मॉर्निंग मंत्रा हमसे ये कहता है कि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। तो आज का दिन हमारे जीवन की किताब का एक नया पन्ना है और इसे खूबसूरत बनाना हमारे ही हाथों में है।
1: जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आज का जो पॉजिटिव मंत्रा है वो आपको दिन भर पॉजिटिव रखेगा और साथ ही साथ अगर उसके साथ एक म्यूजिक का तड़का लग जाता है तो सोने पे सुहागा, है ना
2: जी।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का दिन खूबसूरत है और खूबसूरत दिन की शुरुआत होती है खूबसूरत सुबह से, और खूबसूरत सुबह की शुरुआत होती है अच्छी अच्छी बातों से और हमारे प्रोग्राम के साथ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हैं दो दोस्त आपके साथ। मैं हूँ तरुश्री, मेरे साथ हैं
2: स्वेच्छा, और आज आप सभी के संडे को बहुत स्पेशल बहुत खास बनाने के लिए हम यहाँ पर है। और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदाता दिवस। और आज के इस खास दिवस पर बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल इंटरव्यू है प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिसिन, इनसे खास बातचीत की है आकाशवाणी के कुंवर बहादुर सिंह जी की। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत।
3: कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज है 14 जून 2026, और आज ही के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। हमारे जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है कि चाहे हमारे रिलेटिव को या फिर अनजान व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है, और कुछ लोग तो स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी हिचकिचाहट से या किसी भ्रांति से पीछे हट जाते हैं। तो आज आपके माध्यम से हम ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं जिनके मन में शंकाएं हैं और जो ब्लड डोनेट करने से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन के क्या फायदे हैं, क्या महत्व है इसके।
4: देखिए, सबसे पहले आज विश्व रक्तदाता दिवस है
3: जी,
4: और हमारा कर्तव्य है, इनफैक्ट ये समाज का कर्तव्य है कि वह रक्तदान के प्रति जागरूक हो, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता, हम कहीं और से ला नहीं सकते। आर्टिफिशियल ब्लड आज तक मतलब केवल लैब में बना है, मनुष्य के रगों में तो नहीं दौड़, तो ब्लड आएगा कहाँ से
3: जी?
4: और ब्लड आएगा केवल किसी इंसान से, और जब वो इंसान रक्तदान कर सकता है। तो जब आप कह रहे हैं कि रक्तदान करने के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले हम भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें ददीची ने अपनी हड्डियों तक का दान करके दूसरों की भलाई के लिए अपने को न्यछावर कर दिए थे प्राण। लेकिन रक्तदान करने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सौभाग्यशाली होंगे अब जीते जी अपने रहते हुए रक्तदान कर पाएंगे, जिससे आपको तो फायदा होगा और साथ में अन्य लोगों की जान भी बचाएगा। अब ये कहिए आपको क्या फायदे होते हैं। जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनको 5% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। आज के जमाने में जब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं और कितने यंग लोगों को मतलब हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आप हर 3 या 4 महीने में रक्तदान करते हैं तो आप 5% कम की श्रेणी में आ जाते हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका मात्र 350 मिलीलीटर रक्त जाता है, आपके बॉडी में 4 से 5 लीटर रक्त है, तो एक रिजर्व रक्त है। जो आप जाते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होकर नई रक्त कोशिकाएं बनाती हैं जो ज्यादा स्फूर्तिवान और ऊर्जावान होती हैं, तो आपको कमजोरी नहीं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
3: यानी कि जैसे ही आदमी ब्लड डोनेट करता है जो ब्लड हमारे शरीर से गया
4: जी,
3: तुरंत ही हमारी जो बोन मैरो है बनाना शुरू कर देती है,
4: शुरू कर दी, और वो नई बनाती है, वो ज्यादा ताकतवर होती है, तो आपके अंदर ज्यादा ताकत आती है। इसके अलावा जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनको ज्यादातर बीमारी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण कराते हैं जब भी आप रक्तदान करने जाते हैं। भारतवर्ष में कितने लोग हैं

0: साल में एक बार भी अपना निशुल्क परीक्षा कोई दिक्कत नहीं है नहीं कराते तो बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर ग्रो करती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो आपका पूरा चिकित्सीय परीक्षण होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत उसको ठीक करने के लिए सजग हो जाते हैं। और जो सौभाग्यशाली होते हैं जो रक्तदान कर देते हैं उनकी रक्त की यूनिट का HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस की जांच होती है। ये बीमारियां ऐसी हैं जो वर्षों तक आपके अंदर पड़ी रहेंगी और जब इसकी जांच हो जाती है तो कॉन्फिडेंशियली आपको बता दिया जाता है, जिससे एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं आप। तो बहुत फायदे होते हैं रक्तदान के, और सबसे बड़ा फायदा है आप एक नहीं तीन लोगों की जान बचा रहे हैं और उसका पुण्य तो आपको मिलना ही मिलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो लोग नियमित अंतराल पर ब्लड डोनेट करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि नियमित अंतराल कितना होता है, कितने पीरियड पे एक आदमी ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: देखिए पुरुष के लिए 3 महीने के अंतराल में कर सकते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। तो अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करेंगे तो आप समझ लीजिए कि शायद ही आप कभी बीमार पड़े।
1: अच्छा, ब्लड डोनेट करने के लिए कोई मिनिमम एज या फिर कुछ मिनिमम वेट होता है?
0: जी देखिए रक्तदान करने के लिए, अब ये तो आप प्रेरित होके आप जब रक्तदान करने जाते हैं तो जैसे हमने कहा आपका पूरा चिकित्सीय परीक्षण होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं। एक तो आपकी एज जो होती है 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो 18 से 60 वर्ष के बीच में होते हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन 60 से 65 में अगर आपने अपने जीवन काल में एक बार भी रक्तदान किया है तो आप 65 तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वजन 50 kg या इसके ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5% होनी चाहिए, और इस हीमोग्लोबिन की जांच आपके यहाँ ही होगी, मतलब ब्लड बैंक में ही होगी, आपको स्वयं नहीं करानी है। जिससे आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में और पता चल जाएगा, आप सजग हो जाएंगे।
1: जी जी, कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल ही चेक होता है।
0: जी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा है ना कि जैसे लोग समाज में, जैसे हमने कहा चिकित्सा परीक्षण नहीं कराते, इतनी कम 7-8 हीमोग्लोबिन में अपना चलते रहते, उनको आभास ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो अपना रक्तदान करने जाते हैं और पता चलता है कि 12.5 से कम है तो एक तो उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, या तो अपना खान पान अच्छा करते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं, और या कुछ बीमारी का अगर शक हो तो उसकी भी जांच कराते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है, जैसे हमारे यहाँ से लेडीज के साथ प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो महिलाएं होती हैं वो रक्तदान करने आती हैं, उनका 12.5 से कम होता है तो वो दे नहीं पाती, और बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं उसको पॉजिटिव वे से लेके अपना खान पान बढ़ाती हैं, जैसे एप्पल खाना, पालक खाना, आयरन लेना, और जब 12.5 से ऊपर हो जाता है तो रक्तदान करने आती हैं। और अगर ऐसे सारे रक्तदान स्त्रियां करने लगें तो इतनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मतलब अपने प्रसव के समय जो मां की मृत्यु हो जाती है, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर वो एनीमिया की वजह से ही होती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक क्राइटेरिया बताया कि 12.5 से कम हो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ऐसे और कौन से क्राइटेरिया है जिस पर व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते?
0: उसके लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, अगर 1 वर्ष के अंदर आपको रेबीज की वैक्सीन लगी हो या कोई अन्य वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड लगी हो, आपको पीलिया हुआ हो, आपको कैंसर की बीमारी हो, या आपको डायबिटीज हो, और आपको ब्लड प्रेशर ऐसा हो कि मेंटेन्ड ना हो, और 1 महीने के अंदर आपने अपनी दवाएं बदली हो, तब आप रक्तदान नहीं कर सकते। और जब रक्तदान करने आइए तो एक चीज का ध्यान रखिए, रात में सो के आइए, और कोई दर्द की दवाई 3 दिन 72 घंटे पहले रक्तदान से नहीं ली जाती है। थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे, सब अच्छी बातें हैं जिससे आपके स्वास्थ्य लाभ होगा, और जब आप रक्तदान करने आते हैं तो आपको बता दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत है, और अगर ऐसी भी चीज है जो आप ओवरकम कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो और लोगों को प्रेरणा दीजिए।
1: अच्छा, कुछ खान पान का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मतलब ब्लड डोनेट करने से पहले या उसके बाद?
0: ब्लड डोनेशन करने से 4 घंटे के अंदर आपको कुछ खा के आना चाहिए, खाली पेट नहीं आना चाहिए, और ब्लड डोनेशन के बाद, जैसे जो ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके 4 घंटे तक आपको थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए, और बहुत कड़ी धूप में निकलने से बचना चाहिए, लंबी ड्राइव पे जाने से मना किया जाता है।
1: अक्सर लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जैसे ब्लड डोनेट करेंगे हम तो उनको ये थोड़ी शंका होती है कि हो सकता है वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाए या उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, कुछ ऐसा होता है?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो भ्रांतियां हैं इसी की वजह से रक्तदान की प्रतिशत इतनी कम है। आप सोचिए आजकल भारतवर्ष की जनता यंग है, अगर 2% जनता भी नियमित रूप से रक्तदान करे तो किसी ब्लड सेंटर में ब्लड की कमी नहीं होगी, लेकिन लोग सोचते हैं कि जैसे मुझे कमजोरी हो जाएगी मेरा ब्लड निकल जाएगा, जैसे हमने आपको बताया कि रिजर्व ब्लड निकलता है, नई ताकत आती है, आपको लगता है जो सुई लगती है उससे कोई संक्रमण हो जाए, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होता, जो सुई होती है वो ब्लड बैग की ट्यूबिंग से लगी होती है, तो कोई चाह के भी उसको फिर से यूज नहीं कर सकता, आपके सामने ही उसका लॉक खुलता है, और आपके सामने जब लॉक खुलने के बाद आपको लगाया जाता है और दर्द इतना होता है जैसे कोई चींटी काटती है। आप सब लोग ने कोविड वैक्सीन लगाई होगी, कोविड

0: वैक्सीन में तो दर्द ज्यादा होता है,
1: लेकिन
0: इसमें दर्द कम होता है क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको दर्द की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है, कोई संक्रमण नहीं होता, बल्कि आपके अंदर कोई संक्रमण है तो उसकी जाँच हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, शुरुआत में आपने दतीची का नाम लिया, उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान की थी, तो इस बार का हमारा थीम भी कुछ ऐसा ही है, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो जैसा कि थीम सही क्लियर है कि आप जितना रक्तदान करेंगे आप समाज सेवा करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे?
0: ये मैसेज देना चाहेंगे, रक्तदान करके देखिए अच्छा लगता है, और एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है, क्योंकि कंपोनेंट्स का जमाना है और उसका पुण्य आपको सदैव मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे श्रोताओं को विश्व रक्तदान दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये थी प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और इनसे बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी के कुंवर बहादुर सिंह जी। और जैसा कि इन्होंने बताया, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, और इस पर विशेष उन्होंने बताया हमारी कितनी सारी भ्रांतियाँ हमारे यहाँ हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, उन्होंने इस पर चर्चा की, और इस पर और भी हम बातें करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत से गाने की बात।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: मुद्दा आज का।
3: जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं आज के मुद्दे की। और जैसे कि आज स्वेच्छा, आज क्या स्पेशल डे है
4: जी,
3: वो बताइए जरा हमारे श्रोताओं को।
4: आप सभी ने भी इंटरव्यू भी सुना, विश्व रक्तदाता दिवस है और रक्तदान करना कितना जरूरी है हर किसी के लिए, इसकी क्या क्या खासियत है, ये सब बातें हमने अभी जानी। और इसी से जुड़ा हमारा आज का मुद्दा ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ का कोई ऐसा किस्सा कि आपने रक्तदान किया हो या किसी ने आपको रक्तदान देकर आपकी जिंदगी बचाई हो, आपको जीवनदान दिया हो, इससे जुड़ा आपका कोई जीवन का किस्सा है, आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए।
3: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसे कि स्वेच्छा ने बताया कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा कुछ होता ज़रूर है जहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हम सच में उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। और ऐसे में जब रक्तदान करना होता है तो वो एक ऐसा पहलू होता है जीवन का कि अभी भी आप देख रहे होंगे समाज में बहुत सारी हिचकिचाहट है लोगों के बीच में रक्तदान को लेकर, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि अभी आपने डॉक्टर तुलिका को सुना होगा, तो उन्होंने भी ये बताया कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में और अच्छा रक्त पैदा होता है क्योंकि हमारा शरीर काम कर रहा है, तो एक तरह से हम और स्वस्थ रहते हैं रक्तदान करने से। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये धीरे धीरे तो मिट रही हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आप हमें बताइए क्या ऐसा किस्सा है जब आप ने किसी को रक्तदान देकर उसकी जिंदगी बचाई हो या किसी ने आपको रक्तदान देकर आपकी जिंदगी बचाई हो।
4: जी आप अपना ये किस्सा हमारे साथ शेयर करिए हमारी ईमेल आईडी पर fmakashwani@gmail.com पर।
3: जी हाँ दोस्तों, फटाफट मेल भेजिए और तब तक एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्रैक मेरे और स्वेच्छा के साथ, हम लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और दो दोस्त आपके साथ हैं
4: स्वेच्छा और तनुश्री। और आप सभी के लिए अभी आपने सुना बागवानी स्पेशल सेगमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि आज है संडे स्पेशल। तो 9 बजे से पहले पहले आप अपने सवाल हमें जल्दी से लिख भेजिए हमारी बागवानी स्पेशल ईमेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com पर।
3: जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके सवाल हैं आपकी बागवानी से रिलेटेड, फटाफट मेल करिए, आप हमें समस्या लिख भेजिए, हमसे एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए वापस आते हैं आज के मुद्दे पर, क्योंकि आज का मुद्दा बड़ा ही स्पेशल है। और वैसे भी कहा जाता है कि जाने के बाद नेत्रदान और जीते जी रक्तदान, ये दो चीज़ें मैं हमेशा से, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारा नेत्रदान दिवस था उस दिन भी मैंने इस चीज़ को दोहराया था कि हमारे बीच में कई सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जिसके वजह से हम हिचकते हैं और ये नहीं ध्यान देते कि शायद इसको करने से हमारा ही कुछ अच्छा होगा, है ना जी। क्योंकि जैसे कि नेत्रदान के टाइम पर जब हमने ये बात करी कि आँखों को जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप पूरी ज़िंदगी आपने बता दी उनको इस्तेमाल करते करते, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आपके जाने के बाद यही आंखें फिर से दुनिया देख रही हैं और किसी की दूसरी दुनिया को रोशन कर रही हैं, वो कितनी ही नायाब बात है।
4: बिल्कुल, ये जो दान होते हैं ना, चाहे नेत्र दान हो, रक्त दान।

0: हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, ये इन सब से हमें ये जो सोचना चाहिए, जो पुरानी भ्रांतियाँ हैं उनको भुलाकर, ये हमें हर कोई कहता है कि हम कितना नेक काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे जाने के बाद भी हम किसी ना किसी माध्यम से यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, लोगों के बीच जिंदा रह सकते हैं और उनके जीवन को रोशनी दे सकते हैं।
1: जी हाँ, और इसीलिए हम आपको थोड़ा सा प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी लाइफ से जुड़े हुए किस्से हम तक पहुँचाएं, कि नेत्रदान से जुड़े हुए अगर कोई किस्से आपके पास हैं, अगर कोई दोस्त का किस्सा है आपके पास या आपका कोई किस्सा है तो हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इन कहानियों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों के बीच जागरूक करना चाहते हैं कि ये रक्तदान करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, कितनी ज़िंदगियाँ आप बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आप हमें भेजिए, हमारी ईमेल आईडी FM@lucknow@gmail.com पर 8:54 का वक्त एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के बीच।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी के गठन की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, राम मंदिर के चढ़ावा मामले की जांच करेगी एसआईटी। नवभारत टाइम्स लिखता है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच को एसआईटी बनी। अमर उजाला ने लिखा है, राम मंदिर के दान में घपले की जांच करेगी तीन सदस्यीय एसआईटी, 15 दिन में देगी रिपोर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ दौरे को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर शीर्षक दिया है, किसी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। नवभारत टाइम्स ने भी मुख्यमंत्री के बयान के हवाले से लिखा, किसी बेटी पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, बेटी पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, चेलों को भी समझाएं अखिलेश। अमर उजाला ने लिखा है, अखिलेश की बेटी के अपमान पर योगी सख्त, एफआईआर। असम में विमान हादसे की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, वायुसेना के 5 जाबाज शहीद। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, वायुसेना का विमान क्रैश हुआ, पायलट समेत 5 की जान गई। अमर उजाला ने लिखा है, वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 अफसरों समेत 5 बलिदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की खबर भी अखबारों की सुर्खियां हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पीएम मोदी फ्रांस रवाना, ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की खबरों को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, फैसला, अर्धसैनिक बलों के जवान केंद्र तक पहुंचाएंगे नीट का पेपर। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के अगले थल सेना अध्यक्ष होने की खबर भी अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान लिखता है, धीरज सेठ होंगे नए सेना अध्यक्ष। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए आर्मी चीफ। प्रदेश में आंधी बारिश से हुई मौत की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, यूपी में आंधी बारिश से 13 की मौत। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, आंधी बारिश और बिजली गिरने से गई 10 की जान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, प्रदेश में आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त हुई। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित होगा, तब तक सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब

0: जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 9:04 का वक्त और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है। दो दोस्त आपसे जुड़ चुके हैं और एक और मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ, किस लिए?
3: बिल्कुल, आप सभी के सवालों के साथ, इसलिए क्योंकि छत व गमलों में अगर आप फल फूल और सब्जी उत्पादन से संबंधित किसी भी प्रकार से मुश्किलें आ रही हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से। तो आइए इनसे बात करते हैं और आप सभी के सवालों को शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: गुड मॉर्निंग सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: जी सर, हमारा पहला सवाल है, वारिस अली जी पूछना चाहते हैं, मैंने गमले में एलोवेरा लगाया है, उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कुछ तो काली पड़ गई हैं, इसके लिए क्या करें?
4: कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूप रहती है तो भी थोड़ा सा लीफ का कलर चेंज होता है, और अब बरसात में मेनली पानी से प्रॉब्लम होती है, बाकी गर्मी में पौधा बहुत हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। तो इसलिए जो है क्या नाम, एलोवेरा के लिए सबसे अच्छी चीज है, अगर मान लीजिए कहीं लगता है कि उसमें कहीं से इन्फेक्शन फंगल आ गया है, तो आप कार्बेंडाजिम या कार्बन COC कॉप्रोक्सीक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, अगर लगता है कि हाँ ये डिजीज की वजह से है, अन्यथा वो स्वतः ठीक हो जाएगा, बस ज्यादा पानी नहीं लगना चाहिए।
3: जी
2: जी सर, एक और प्रश्न आया है हमारे पास, रमेश दत्त तिवारी जी त्रिवेदी जी भेज रहे हैं और लिखते हैं कि इन्होंने मिर्ची के पेड़ उगाए हैं और वो क्या है, उन्होंने अभी सीडलिंग्स ही हैं और अभी वो गर्मी में काफी ज्यादा सूख गए हैं, तो क्या कैसे इनको रिवाइव कर सकते हैं?
4: नहीं, गर्मी में थोड़ा सा बचा, क्योंकि सीडलिंग उगाने का समय थोड़ा सा गर्मी में चैलेंज होती है, तो उसको कई बार सो ग्रीन नेट लगा देते हैं, इसके अलावा कुछ बायो एजेंट्स यूज कर लेते हैं, फंगिसाइड का यूज कर लेते हैं, जैसे और कोई उसको दिक्कत ना हो। बाकी अब मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसको प्रॉपर पानी और प्रॉपर खाद अगर आपके पास है, नहीं है तो लिक्विड कोई मैन्योर हो या कोई आपके पास उस तरह की चीजें हो, जैसे NPK का स्प्रे कर देते हैं 19-18 उसका 5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे कर देंगे, तो उससे धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर जाएगा, मौसम थोड़ा ठीक होते ही वो आ जाएगा।
3: जी। मोनू सेठ जी पूछना चाहते हैं, हमने उड़द बोया था, फूल आए पर दाना बहुत कम आए हुए, आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए?
4: अब देखिए, उड़द का सबसे बड़ी बात है कि सामान्य रूप से तो गर्मी में बहुत अच्छे से होती है ये, क्योंकि कीड़े मकोड़े कम लगते हैं और टाइम से अगर आप बो दें तो बड़े अच्छे से उड़द मिल जाती है। थोड़ा सा इस बार मौसम बीच में गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, और बरसात में भी आप लगाते हैं, अभी भी मूंग उड़द लगाने का समय, लेकिन जो बरसात वाली मूंग उड़द लगती है इसमें थोड़ा सा कीड़े और बीमारी की समस्या ज्यादा होती है, लेकिन सामान्य रूप से लोग 1-2-3 बार तोड़ लेते हैं, इसके बाद उसको जमीन में मिट्टी में मिला देते हैं, हरी खाद का काम करती है, तो इसलिए आप उसको देखिए। ठीक है
2: सर, एक प्रश्न ये है कि समर में, मतलब इस तरह के मौसम में, अब धीरे धीरे बारिश आने वाली, इस तरह के मौसम में कौन कौन से फूल उगाए जा सकते हैं?
4: देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो बरसात के फूल हैं और इधर जो आपकी गर्मी वाले फूल हैं, जैसे कॉस्मॉस है, सनफ्लावर है, इसके अलावा जो 9 o'clock प्लांट आता है, पार्चुलाका है, गॉम्फ्रीना, गैलार्डिया, जीनिया, अब बरसात में बालसम आएगा, गुलमेदी जिसको कहते हैं, ये सब मतलब बाकी गेंदा तो है ही, तो ये सब पौधे आपकी जो है बरसात में उगाए जा सकते हैं एनुअल्स।
2: जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है, रीना त्रिवेदी जी भेज रही हैं हमें रायबरेली से, उनका कहना ये है, पूछना ये है कि हमने ना मटर कब हम बो सकते हैं, हम क्या खेती कर सकते हैं अपने घर पर ही?
4: बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मटर के लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है, इसलिए इसको अक्टूबर नवम्बर में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, फिर जाड़े में बहुत अच्छे से मटर हो जाती है। देखिए, मटर है, बीन्स है, इसके अलावा जाड़े जितनी गोभी वाली फसलें हैं, बाकी इस समय तो हम काफी सब्जियां और भी ले सकते हैं, अब धीरे धीरे जैसे इस समय आपकी लौकी, कद्दू, तुरई के अलावा लोबिया, चौलाई, ये सब चीजें इस समय हम लोग उगा रहे हैं, और बड़े आराम से क्लस्टर बीन, ग्वारफली, ये सब चीजें इस समय लगाते हैं, वो जो मटर है वो जाड़े के हिसाब से उसके पहले बोई जाते हैं अक्टूबर नवंबर में।
2: जी, इसमें क्या कुछ खास देखभाल करने की आवश्यकता है सर?
4: नहीं, खास देखभाल नहीं, अगर आप किचन

0: अगर उसमें उगा रहे हैं तो सामान्य रूप से खाद मिट्टी का मिक्सचर यूज कीजिए, और अगर थोड़ी सी चाहे तो डीएपी डाल सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा जो है गमले के साइज के हिसाब से 50 ग्राम 2 ग्राम डीएपी डाल सकते हैं, बट और ज्यादा होगा अगर आपकी गोबर की खाद पर्याप्त है और बाकी नीम की खली डाल सकते हैं, इसे कीड़ा उड़ाना लगे। नीम की खली है ना हो तो निवोली डाल दें, नीम की पत्ती डाल दें, तो इसमें और सारी चीजें नहीं होती है बढ़िया। बाकी घर का वेस्ट अगर आप लिक्विड मैन्योर बना बना के यूज करते हैं अपने किचन वेस्ट से, उसको किसी मतलब ड्रम में डाल के नीचे से अपना टोटी से उसका निकालते रहे पानी, उसको समय समय पर डालते रहे, बहुत बढ़िया से मटर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
1: जी तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से। आप सभी के सवालों का इतना सटीक जवाब दिया इन्होंने, उम्मीद है आप सभी के जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। और अगर आज आप किसी कारण से नहीं भेज पाए हैं मेल, तो अगले संडे को ज़रूर भेजने के लिए रेडी रहिए। आप आज भी भेज सकते हैं, अभी से भेज के हमारी मेल आईडी पर मेल भेज दीजिए, अगले हफ्ते वो शामिल हो जाएगा। हमारी मेल आईडी है fmrainbowhelpline@gmail.com।
2: जी हाँ दोस्तों, और अब आपको बता दें 9:10 का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है, और भी कई सारी बातें बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM Rainbow।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: नौ बज के 15 मिनट का वक्त गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है और अब चलिए देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है मौसम का हाल, क्योंकि आज अगर आपका प्लान है कहीं घूमने का और अगर मौसम इस तरह से मेहरबान हुआ तो फिर क्या है।
6: बिल्कुल तो इन सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। आइए इनसे बात करते हैं और शहर के मौसम का हाल जानते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
7: जी गुड मॉर्निंग
6: सर, कैसा रहने वाला है मौसम का हाल?
7: देखिए मौसम का हाल अब यहाँ से थोड़ा साफ रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद थोड़ा सा हल्का सा बादलों की आवाजाही रह सकती है, लेकिन अगर होलिस्टिक व्यू में बात करें तो इधर अभी 3-4 दिन साफ रहेगा और धीरे धीरे जो इधर पिछले दिनों में थोड़ा खुशनुमा था थोड़ा सा गर्मी की तरफ हम रुख करेंगे। कुल मिला के कहें तो अभी 3 दिन एटलीस्ट 3-4 दिन थोड़ा मौसम साफ रहेगा, तापमान में धीरे धीरे इजाफा आएगा।
6: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
7: ओके धन्यवाद।
5: तो दोस्तों जैसा कि बताया हमारे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने कि अब जो आज का मौसम है वो आज तो ऐसा खुशगवार रहने वाला है, कुछ बादलों की आवाजाही भी रहेगी, तो आप अपना प्लान बना सकते हैं आज का संडे बढ़िया हो और आप भी घूमने जाएं हम भी घूमें लेकिन साथ ही साथ जो हमारा और आपका ये जो नाता है ना रेडियो वाला ये बना रहना चाहिए, है ना?
6: बिल्कुल। तो बस इसी बात के साथ 9:17 का वक्त एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के बीच।

0: है ना। तो आज जिनका भी जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से।
1: आप सभी को आपके खास दिन की स्पेशल डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं आपका आज का दिन और आने वाला पूरा साल बहुत खुशियां भरा हो,
0: और साथ ही साथ जो आज अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब बारी है ये जानने की कि आपका ये जो खास दिन है, स्पेशल डे है, आप किन शख्सियतों के साथ शेयर करते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज अगर हम जिक्र करें तो

0: एक महान डायरेक्टर थे, कौन? भारतीय सिनेमा के वो महान और जुनूनी फिल्म निर्देशक का आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिन्होंने हमें मुगले आजम जैसी अमर और कालजयी फिल्में दी हैं। के आसिफ साहब की बात कर रहे हैं। उनका जन्म जो है 14 जून 1922 को हुआ था, और वे केवल फिल्में नहीं बनाते थे बल्कि पर्दे पर भविष्य, मतलब भविष्य नहीं कहूंगी, भव्य इतिहास रचते थे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनको कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ और भी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं।
1: जी, सबसे पहले सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी की आज जयंती है। भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक सतीश चंद्र दास गुप्ता जी की भी आज जयंती है। और भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन का है आज हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे।
0: और साथ ही साथ अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में अभी कमाल के कुछ सेलिब्रिटीज का आज जन्मदिन है, और उसमें पहला नाम आता है जुबिन नौटियाल जी का, जिनकी आवाज का जादू तो हम हर जगह सुनने को हमें मिल रहा है, चाहे वो भजन हो चाहे वो बढ़िया से रोमांटिक सॉन्ग्स हो, है ना?
1: जी बिल्कुल। साथ ही सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती जी का भी आज है हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस वीर जारा में देवदास, ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में इन्होंने अपने एक्टिंग का जादू बिखेरा, किरण खेर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।
0: तो देखिए आप कितने सारे लोगों के साथ अब अपना आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारी तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये जो दिन है वो हमेशा मौजा ही मौजा हो जाए, तो इसीलिए आज ये जो गाना है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।

0: दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच चुकी हैं, उनको हम शामिल करते हैं। कुछ तो गुड मॉर्निंग की मेल्स हैं और कुछ नए मुद्दे पर बात करिए, तो चलिए हम सबकी मेल शामिल कर लेते हैं। और पहली मेल किसकी आई है?
1: पहले अजय शंकर जी ने मेल किया हुआ है, बंगला बाजार से लिखते हैं कि आज की पुष्पांजलि सदाबहार इतना अच्छा लगा, भक्ति सॉन्ग सदाबहार में तो आपने गार्डन गार्डन ही कर दिया।
0: मतलब बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी बातें सुनकर। जगदीश जी ने भी मेल किया है और उनका भी कहना यही है कि वो कार्यक्रम जो है वो लाइव एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिव प्रताप जी लिखते हैं अमेठी से, अच्छा सौरभ हैं ये लिखते हैं, अपने भाई सुदामा के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है कि अपने फोन के 5% बैटरी के साथ ही सुन रहे हैं।
0: अरे बाप रे बाप, आप चार्ज कर लीजिए मोबाइल और हमारे साथ बने रहिए। तालिब अंसारी जी मेल कर रहे हैं राजा कचरा बाराबंकी से, और मैंने कई बार बोला है गुड मॉर्निंग तो आपका चलिए चलता है लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो आप मत करिए ऐसी फरमाइशें।
1: शेख अल्लाह बख्श जी हमें मेल करते हैं तेलंगाना से और साथ में हमें सुन रहे हैं बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना हमें सुन रहे हैं और प्यार भरा नमस्कार आदाब भेजा है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे बढ़ते हैं, मनीष निशा राव सौदागर माहौल थाना कैंट लखनऊ से हमें मेल कर रही हैं और लिखते हैं विश्व रक्त दिवस, रक्तदाता दिवस है आज, ब्लड डोनर डे है, तो आज विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और लिखते हैं कि कल लोकबंधु अस्पताल में रक्तदान करके आया हूं, मेरे फ्रेंड के पिताजी को जरूरत थी रक्त की और मैं उनको रक्त देकर मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब रहे। ऐसे इंसान को रक्त दें, एक परोपकार के साथ साथ आपकी बॉडी को भी लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी बॉडी को लाभ पहुंचता है, आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ आपके जो शरीर में नए खून जब बनता है तो हर तरीके से आपको लाभ मिलता है।
1: जी, अरुण कुमार जी हमें हरदोई से मेल कर रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार लिखते हैं, साथ ही प्रेरक मॉर्निंग मंत्रा के साथ कार्यक्रम शुरू करने के लिए धन्यवाद, रक्तदान करने के फायदे के बारे में जानकारी बहुत अच्छी रही। और मुद्दे में लिखते हैं, मेरे जीवन में ऐसा 2 बार हुआ है जब हमने किसी को रक्तदान किया है, रक्तदान के लिए हम सबको आगे आना चाहिए।
0: क्या बात है, देखिए इसी तरह का मैंने कहा ना, जागरूकता बढ़ती है, आप अपने किस्से हम तक पहुंचाते हैं तो हम ये किस्से और लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह प्रमोद यादव जी ने मेल भेजा है कि मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छी बात है, और कितनी सारी जानों को आपने बचाया है, कितनी सारी जिंदगियों को आपने एक और मौका दिया है, तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
1: जी, और गुलाब दास जी मानिकपुर से हमें फिर से इन्होंने भी फरमाइश लिखकर भेजी है और आप सभी फरमाइश कृपया 2 बजे करिएगा। और अब वो वक्त है 9:33, एक छोटा सा कमर्शियल, उसके बाद प्यारा सा ट्रैक और फिर लौटेंगे हम आपके बीच।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जी हाँ दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये भी बावरी है ना। और बावरी जिंदगी में हमें अगर सीधा मार्ग चलना है और सही से चलना है तो इसके लिए हमें ट्रैफिक अपडेट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: जी, और इन सब जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर TSI विकास सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं अपने शहर के ट्रैफिक का हाल।
0: स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।

0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम. गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार. आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है. आज रविवार का दिन है और छुट्टी के दिन में लखनऊ में ट्रैफिक ज्यादा नहीं रहता है, और शाम के समय में लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं, तो शाम के समय में हमारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता है वो शहीद पथ के पास में हमारा जो लूलू मॉल है, और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रैफिक रहता है प्लासियो मॉल की तरफ, और दूसरी तरफ हम हजरतगंज एरिया जो हमारा है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है. बाकी सभी जगह सामान्य रहता है, और इन सब स्थानों पर जहाँ ज्यादा जो है भीड़ भाड़ होती है वहाँ हम अतिरिक्त यातायात पुलिस और सिविल पुलिस बल लगा करके जो है सुगम यातायात का संचालन कराते हैं. और मैम कोई विशेष डाइवर्जन नहीं है आज, बस यही अनुरोध है कि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो कम समय के चक्कर में सोचते हैं कि थोड़ा सा कम समय लगे, और ऐसे में रॉन्ग साइड इख्तियार करते हैं, तो कि रॉन्ग साइड जो है हमेशा सड़क दुर्घटना में मृत्यु का कारक होता है. किसी के साथ ऐसा ना हो, हमारी हमेशा जो है वो रहती है कि ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करें, परंतु रॉन्ग साइड जो है ये घातक है. ये आपको कम समय में आपके गंतव्य तक भले ही पहुंचाता है, लेकिन उससे कम समय लगता है कि जब आपकी जान जो है चली जाती है. तो इससे ये अच्छा है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा समय लगे, थोड़ा सा समय निकाल कर घर से निकले, ताकि हम जो है अपने गंतव्य तक सुगमता से और सुरक्षित पहुंच सके.
1: जी.
0: तो यही अनुरोध है कि रॉन्ग साइड इख्तियार ना करें, यातायात नियमों का पालन करें, और इंजॉय के साथ सुनते रहे 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, और आपका अंदाज ये बयां, तो मैं क्या बताऊं, हमेशा मैं आपकी फैन हूँ.
0: धन्यवाद.
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी आभार मैम.
1: तो श्रोताओं, जैसे कि आपने सुना विकास जी हमारे साथ थे, और उन्होंने जैसा कि बताया कि किस तरह से आपको ध्यान देना है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाना बंद करें और सही मार्ग अपनाएं, रॉन्ग साइड से ना जाएं, अपनी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं और रक्तदान करें.
2: जी. प्यारा सा ट्रैक, फिर लौटेंगे इस गाने के बाद.

0: या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
6: दोस्तों, आज के दिन की हमने बहुत सारी बातें करी, कई मायनों में आज का दिन खास रहा, लेकिन आज का दिन जो है वो हमारी आंखों को थोड़ा सा नम भी कर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, वो सितारा जो खो गया।
7: बिल्कुल, आज ही का वो दिन था साल 2020 का, यही लमसम 10:30 का वक्त था जब पहली बार खबर मिली कि इतना प्रतिभाशाली, जिंदा दिल और खुशनुमा इंसान, एक आसमान के तारों से मोहब्बत करने वाला इंसान, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अचानक हमें अलविदा कहकर चले गए हैं।
6: जी हाँ दोस्तों, कई सारी फिल्में थी जिसमें अपनी छाप छोड़ी, काई पोचे, ईशान या धोनी,

0: छिछोरे, ये छिछोरे के अनिरुद्ध का जो किरदार था वो हम सबको छू गया, और ये सुशांत ने हर किरदार को अपनी मेहनत और लगन से उस किरदार में जान फूंकी थी। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर पूरा देश और उनके करोड़ों फैंस उन्हें बेहद शिद्दत से याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सुशांत भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी यादों और इस सिनेमा के आसमान में हमेशा सबसे चमकदार सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे।

जी हाँ दोस्तों, ये खैरियत जो है ना वो हम आपसे हमेशा पूछते रहेंगे और आप भी हमारी खैरियत पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेल्स के द्वारा आप हमसे जुड़ते हैं, अच्छा लगता है और कुछ मुद्दे पर भी बातचीत होती है। तो जनवेश कुमार जी का मेल हम लेते हैं क्योंकि अब समय बहुत कम है, 9:53 का वक्त हो चुका है। लिखते हैं कि खानदान काम नहीं आता, खून का दान काम आता है। यकीन मानिए मैंने अभी तक 6 बार रक्तदान किया है, बहुत ही अच्छा लगता है।

0: स्वीकार सभी को करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छी बात।
1: पवन आकाश जी ने हमें भेजा है कि जम्मू और कश्मीर से मेल कर रहे हैं, क्या बात है, और अपने लाइफ का इंसिडेंट लिखकर भेजते हैं। पहले तो लिखते हैं कि ब्लड डोनेशन एक बहुत सेल्फलेस एक्ट होता है जो हर किसी को करना चाहिए, और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, साथ ही आपको प्राउड भी बहुत फील होता है। और इन्होंने अपने लाइफ का किस्सा लिखकर भेजा है, एक साल पहले एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम को इन्होंने ब्लड डोनेट किया था जो काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे जिसे, और बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड था, और वो ही क्योंकि सिर्फ घर में कमाने वाला था, और बाद में उसको ऑपरेट किया गया, और आज वो बहुत ही फिट है और बहुत ही हैप्पी है, हैप्पीली लिविंग, मतलब बहुत अच्छे से जी रहा है, अपनी फैमिली के साथ साथ ही रह रहा है। और जब भी वो उससे मिलते हैं उस एक्सीडेंट के बारे में जब भी याद आता है उनसे मिलते हैं, तो वो हमेशा थैंकफुल रहता है इनके प्रति, पवन जी के प्रति, जिसको इन्होंने ब्लड डोनेट किया था, और इन्हें हमेशा ही ब्लेस्ड फील होता है, भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे हमेशा भगवान ने स्ट्रेंथ दे कि मैं और भी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकूँ।
0: देखिए यही प्रेरणा देता है, यही बातें प्रेरणा देती हैं हमें और आपको कि अगर एक इंसान कर सकता है ऐसा तो हम क्यों नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, तो हम इसके लिए तैयार रहें और हमेशा आगे बढ़कर दूसरे की मदद करें। और सच में बड़ा अच्छा लगता है, कितने सारे लोगों ने मेल भेजा ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रजेश सिंह जी कैसरगंज बहराइच से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं, आंखें अनमोल है, किसी को दान देकर हम उसकी एक नई जिंदगी नई दुनिया दिखा सकते हैं, ना रहने के बाद एक अच्छा काम कर सकता हूं, तो ये प्रण हम सब ले मेरे साथ। तो अच्छी बात है, नेत्रदान की बात उन्होंने करी और रक्तदान भी उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए ना, जीते जी रक्तदान आप कर सकते हैं, और मरने के बाद तो हम अपने ऑर्गन अगर डोनेट करते हैं तो किसी को नई जिंदगी मिल जाती है, तो इसमें तो और ही अच्छी बात है।
1: छब्बी राम सिंह जी हमें लिखकर भेजते, फरुखाबाद से मेल, नियमित श्रोता है, रेनबो दिल की धड़कन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए।
0: और मोनू सेठ जी ने मेल किया है, रक्तदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसमें अगर स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा से रक्तदान करता है तो वो रक्त सड़क दुर्घटना या गंभीर बीमारियां जैसे थैलेसीमिया हो गया या कैंसर हो गया और बड़ी सर्जरी के दौरान ज़रूरतमंदों के जान बचाने के लिए काम आता है। तो इन्होंने भी दो बार रक्तदान किया है, एक बार अपनी माँ के लिए और दूसरी बार ज़रूरतमंद को, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल भेजने के लिए।
1: विनीत कुमार हमें सीतापुर से मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, और साथ ही साथ एक बात पूछना चाहते हैं कि आप खाती क्या हैं, इतना मीठा बोलती हैं।
0: ओह माय गॉड। वैसे हम लोग तो क्या क्या खाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन सच में आप लोग जो मेल भेजते हैं हमारी आवाज में मिठास अपनी आप ही आ जाती है। देखिए मेरी आवाज का रंग बदल गया।
1: बाकी और साथ में जो खुशी जब मिक्स हो जाती है ना आपके मेल्स को पढ़कर, तो और भी अच्छी आवाज निकलने लगती है।
0: तो बस यही रीजन है हमारे अच्छी आवाज और मीठी आवाज के पीछे।
1: मुनेश कुमार जी हमें लिखकर भेज रहे हैं लखीमपुर खीरी से, बहुत बहुत बेस्ट है प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग लखनऊ।
0: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 9:57 का वक्त हो रहा है, यानी कि अब मुझे गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करना है। और आपको बता दें कि अभी आप 10 से मोर पंख सुनेंगे, स्वेच्छा आपके साथ रहेंगे अभी कुछ और घंटे, अभी और भी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी हैं, और साथ ही साथ सुनना मत भूलिएगा 12 हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम आएगा, फोन इन प्रोग्राम है, आप लाइव जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी हेल्थ से जुड़ी बातें भी आप जान सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, तो आप सुनना मत भूलिएगा ये कार्यक्रम। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलती हूँ किसी और दिन किसी और समय पर। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जैसा कि मैंने बोला ना, रक्तदान करते रहिए।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागी।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में शमशाबाद में प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। ये दल तीर्थ क्षेत्र में दान पात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जाँच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, IG रेंज किरण S तथा विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को SIT का सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट के अनुसार अफवाहों पर रोक लगाने और मामले की सच्चाई सामने लाने की के लिए इसकी गहन जांच आवश्यक है। ट्रस्ट ने कहा कि यह तीर्थ क्षेत्र की छवि और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन फिलहाल परीक्षण के दौरान से गुजर रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी सांचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटि रहित बनाने में जुटी है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला

0: विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मोरपंख। मोहन राकेश की कहानी संग्रह से ली गई कहानी उर्मिल जीवन, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र राजेश्वरी जी।

मोर पंख की आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसका शीर्षक है उर्मिल जीवन।

कल नीरा 7 बरस की थी, आज वो 17 बरस की है। 10 बरस का समय एक लहर की तरह उसे साथ बहा ले गया। हवा ने पानी के रुख बदल दिए, समय ने जीवन के। 10 बरस में कितना परिवर्तन हो गया। 10 बरस पहले नन्ही टांगे जिन परिधियों को लांग लेती थी, आज उनके बाहर झांकना भी उसके लिए संभव नहीं। पहले वो नासमझ बालिका थी, आज समझदार नवयुवती है। जीवन यही है, व्यंग भी यही है।

उसकी चंचलता गंभीरता में बदल गई है। उसके मुखरता ने खामोश रहना सीख लिया है। सोचने लगती है तो वर्तमान से बहुत पीछे रह जाती है, वहां से लौटे तो बहुत आगे निकल जाती है। वर्तमान के केंद्र पर विचारधारा भ्रांत होकर घूमती है। नीरा ने अपने को देखा। शारीरिक विकास उसके और नन्ही नीरा के अस्तित्व में एक युग का अंतर बतलाता है। तब चाहती थी जल्दी जल्दी बड़ा होना, आज चाहती है पहले की तरह बालिका बन जाना।

शैशव की चाह पूरी हो चुकी है, आज की चाह कभी पूरी नहीं होने की, ये वो सब समझती है। फिर भी विचार वश से बाहर होकर चलते हैं। नीरा कमरे में टहलने लगी। उसे अनुभव हो रहा था सारा वातावरण ही विषैला हो गया है, एक एक चीज में तर्जना है। सजावट का सामान सोनेपन की विडंबना को महत्व देता है। वो कमरे में अकेली थी और अकेलापन धीरे धीरे विश्वमय होता जा रहा था।

कल रात को उसका विवाह हुआ था, वो रात जो जीवन की मधुरतम कल्पना थी एक विभीषिका बनकर छाई रही। सुहाग रात आज होगी, इस समय संध्या है और संध्या के बाद तारे निकलेंगे, फिर रात आ जाएगी। उसे लगा जैसे जीवन तत्व ही निशेष हो रहा है। आज की रात जीवन में घातक कटुता घोल देगी। संभव हो तो वो रात दिन के मनकों से बनी जीवन माला का ये काला मन का तोड़कर फेंक दे, मगर जानती है एक मन का तोड़ने से माला ही टूट जाएगी, उसमें इतना साहस नहीं है। पलंग पर बैठकर नीरा ने चारों ओर देखा। 10 बरस में आंखें इस घर की दीवारों से परिचित हो गई हैं। रंग कई बार बदल गए, पलंग से चादरें भी उतरती रही। उसकी आशा जीजी घर की रानी थी। 1 महीना पहले जीजी ने भी आंखें मूंद ली और उनके स्थान पर आज स्वयं यहां आ गई है। देह कांप उठी। 10 बरस पहले एक अपरिचित व्यक्ति को जीजा के रूप में देखा था और आज से उसी को पति के रूप में पहचानना है। और जीजा का वो प्यार भरा संबोधन, नीरू रानी, नीरू रानी का आज से तात्पर्य बदल जाएगा, नया अर्थ होगा और नई ही व्याख्या होगी। हृदय भारी होता गया। विवाह हो चुका, आग की साक्षी में वागदान करके मां ने आंसू पोंछ लिए। घर का गाछ जला तो उसकी राख में नया अंकुर रोप दिया गया। पानी की कुछ छींटों में राख सदा के लिए दब गई। बाहर आकाश फैला है, शून्य, शून्य पर अंतर्वेदना की छाप नहीं पड़ती। शैशव के चित्र कहीं इस आकाश में अंकित होते तो उन पर काली तूलिका से दाग कर देती। चर्र मर्र बैलगाड़ी सड़क पर चल रही थी। नीरा को बहुत पुरानी बात याद आ गई। पिता ने कभी कहा था, जीवन एक बैलगाड़ी है, एक हिचकोले से इसके तख्ते हिल जाते हैं, एक कील टूट जाए तो पहिए निकल जाते हैं। तब केवल सुना था, आज ठीक समझ रही है। पिता की मृत्यु हुई, कील टूट गई, पहिए निकल गए और गाड़ी बैठ गई।

0: आज वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: नन्हे कृष्णा ने उसका दुपट्टा खींचा। नीरा एकदम सचेत हुई, पल भर कृष्णा की भोली आंखों को देखती रही, फिर गोदी में लेकर उसका मुंह निहारा, उसके बालों को सहलाया, फिर गोदी से उतार दिया। कल तक वो कृष्णा की मौसी थी, आज से उसकी सौतेली माँ है। मौची, कृष्णा ने कहा, तुम माँ को लेकर क्यों नहीं आई? नीरा मन ही मन रोती, कृष्णा आज भी अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है, क्या वो कभी उसे मां के रूप में स्वीकार करेगी? नीरो रानी का अर्थ बदल सकता है, पर कृष्णा का कोश बहुत छोटा है। वो अपने शब्दों का एक ही अर्थ जानती है। वो उसे कहती है मौची, कृष्णा के लिए वो मौसी ही रहेगी। उसका शैशव जानता है लहू और पानी का विवेक। बच्ची के प्रश्न का उत्तर न देकर नीरा ने कहा, जा उधर जाकर खेल मुन्नी, मेरा वहां अकेले होगी।
2: नहीं मौची, पहले बता माँ कल भी आएगी कि नहीं?
1: नीरा ने उसे अपने साथ सटा लिया, स्वर को सहेज कर कहा, तू मेरा को जिस दिन नहीं मारेगी उसी दिन आएगी। अच्छा जा, मेरा के साथ खेल बाहर। कृष्णा संतुष्ट हो गई, नीरा के गले में बाहें डालकर नाचने लगी, फिर उसे छोड़कर भाग गई। नीरा ने सामने देखा, आंखें दीवार पर लगे हुए चित्र पर अटक गई। नीरा की आंखों के आगे शमशान का वो दृश्य आया, जब आशा जीजी की चिता से चिंगारियां निकली थी। चिंगारियों की ओट में कितना रोई थी वो, कितना सिसके थे उसके जीजा।

बिना बर्बाद वैसे ही आग के चारों ओर जीजा ने उसके साथ फेरे लिए। उसे लगा जैसे बहन चिता के चारों ओर घूम रही है। चटकती हुई चिंगारियां और बोले जा रहे वेद मंत्र दोनों एक से ही थे। विवाह हो गया बिना सज धज और चहल पहल के। समय के संकेत ने उसे सौभाग्यवती बना दिया। लाल चूड़ियां और लाल सिंदूर।

मीरा ने फिर देखा। छुरी पर लहू गीला सा लगता था। कसाई, आग, बकरी और घास, ये एक परंपरा है। वो भी इसी परंपरा को निभा रही है। उसने आंखें मूंदने की चेष्टा की। मन का भारीपन धीरे धीरे पलकों पर फैल गया। नन्ही नन्ही नीरा, छोटा सा घर, माता और पिता, साधारण चहल पहल, बाजी बारात और जीजी का विवाह। किनारेदार कपड़े पहनकर जीजी कैसे बदल गई। मिठाइयां और बताशे, केले के खंभे, रोली और हवन कुंड, सेहरा बांधे एक अपरिचित व्यक्ति, सहज आत्मीयता। मां ने कहा, नीरो तेरी जीजा, जा जीजा के पास। जीजा ने बाहें फैलाई, कहा, आ नीरो रानी, तुझे खिलौना देंगे, मेले ले जाएंगे। नीरा पास नहीं गई, दूर भाग गई। रोती हुई जीजी डोली में बैठी। मां ने कच्ची लस्सी में पैर डाले। फिर जीजी लौट कर आई, गुड़िया जैसे लाल होंठ और झांकियों की सीता जैसे कपड़े। नीरा हंसी और तालियां पीटने लगी। फिर वही अपरिचित व्यक्ति, जीजा। मां ने कहा, जा पूछ दूध कब पियेंगे। नीरा पास गई, सिमटी और संकुचित सी। जीजा ने उसे दोनों बाहों से पकड़ लिया और पास खींचा। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध। नीरा हिचकिचाई, पीछे हटी और फिर उसने उस व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चौंक कर नीरा ने आंखें खोली। वही शून्य आकाश, दूर दूर तक गालिमा में ओझल होती हुई धरती के चित्र। शैशव कहाँ है? पीछे, बहुत पीछे, बीच में 10 बरस की दीवार है। झिंगुर बोलने लगे, अभी रात होने वाली है। गोधूली के गहरे पृष्ठपट पर एक तारा झिलमिलाने लगा। नीरा की आंखों से दो आंसू टपक पड़े। उसने झट से आंखें पोंछ ली। ये कैसा अपशकुन है, आज तो सुहागरात है। पहले इसी कमरे में जीजी की सुहागरात हुई थी, और वो साथ का कमरा, उस कमरे में जीजी के प्राण निकले थे। वहां का वातावरण अब भी जैसे कराह रहा है, अव्यक्त और मध्यम सा स्वर। नीरा, ओह मां, हाय।

0: कभी तो हंसाए।
1: विचारों को उसने झटक दिया, उठकर फिर टहलने लगी। फूलदान के फूल ठीक किए, सिंगार मेज के पास जाकर शीशे में चेहरा देखा। बाहों में मांसलता है और गालों पर गुलाबीपन। जीजी के गाल पिचक गए थे, बाहें सूखकर कैसी हो गई थी, पतली हड्डियां जैसी। रूखे से मुंह में दांत कैसे लगते थे, बड़ी बड़ी आंखें कितनी डरावनी थी। और वो उसे देखकर अंतिम दिन भी कहती रही, नीरा तेरा ब्याह तो देख लेती, बाबूजी की तरह मैं भी तेरे ब्याह से पहले ही। नीरा की आत्मा चीख उठी, देखो जीजी, देखो तुम्हारा नीरा का ब्याह हो गया, आज उसकी सुहाग रात है, देखो। और उस पर शिथिलता छा गई, निढाल सी वो पलंग पर बैठी रही, फिर लेट गई। छत की कड़ियों में मकड़ी का जाला था, जाला धीरे धीरे फैलने लगा, फैलकर इतना बड़ा हो गया कि नीरा उसमें उलझ गई, बिल्कुल अवसन्न और निश्चेष्ट। पृथ्वी की धुंधली रेखाएं आकाश की कालिमा में खो गई, तारे निकल आए और रात हो गई। गर्म सांस के स्पर्श ने नीरा की पलकों को खोल दिया, दो उत्सुक होंठ उसके होंठों के बहुत निकट आ रहे थे। नीरा सहमी और सिमटने लगी, दो हाथों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। बाहर अंधकार था, उसे मन में लगा कि आकाश ने भी आंखें मूंद ली हैं। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध।

निकट और निकट, आंखों के दो गहरे गड्ढे, नीरा हिचकिचाई, चाह बाहें झटकते और जोर से तमाचा लगाए जिससे सारा वातावरण झन्ना उठे, मगर हाथ नहीं उठ सका। आज वो नासमझ बालिका नहीं, समझदार नवयुवती है।

उर्मिल जीवन। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश की कहानी संग्रह पहचान से ली गई ये कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। आज का सफर यहीं तक, अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोरपंख, मोहन राकेश की कहानी संग्रह से ली गई कहानी उर्मिल जीवन। प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी जी।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
8: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
7: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
2: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
5: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
5: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है। करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान आम उत्पादक, हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और करीब 24 से 28 मेट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर। और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन $57 मिलियन का ये हमारे यहाँ से जाता है। ये ताजा फलों के रूप में जाता है और इसमें जो उसके

0: पल्प है और भी अन्य उत्पाद हैं वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही, हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतसिंह क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पिछेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुत्फ उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं।
1: जी, मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
2: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं। और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे। तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है। और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी, तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
3: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं।
1: जी,
3: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया है कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है, इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी, संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
0: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं और इसमें जो विभिन्नता है, उस समय के जो आपने सुना होगा, जो दरभंगा में जो लखी बाग एने अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए, मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सीडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सीडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा रामकेला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे फल। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मिठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त

0: बाजारों को हम भेज सकते हैं और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको। लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री या यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, ओपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, ओपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह के खाद पानी कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं जो तुड़ाई के बाद किस तरह से उसकी डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उनको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन विभिन्न बाजारों के लिए। जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है, और यहाँ जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए
1: जी।
0: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है। तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दूरस्थ बाजारों को हम भेज सकते हैं
1: जी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
0: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसके आधार पर कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में वहां पे है, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
0: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे हो कि देश में कई मैंगो क्लस्टर है, मलिया है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है, और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉयल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर हीट ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है या इरेडिएशन, वो कराते हैं, फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से झुक जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे, और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट से

0: सिचुएशन, उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब हमें
0: हाँ, हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहाँ एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं। और सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है। और ये मैं कहूँ कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूँगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट है वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल है की चिट्ठी
1: आई है,
2: वतन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही

0: उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: चिट्ठी आई है,
0: वतन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना

0: कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं, उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखिए तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखे तो दक्षिण भारत में है, बिल्कुल उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है, एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है, और उसमें अभी भी हर साल फल आता है। तो सबसे अच्छी अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता तो हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं, उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
0: जी।
1: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं, जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
0: जी,
1: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
0: जी,
1: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
0: जी,
1: तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है,
0: गुण हो गया। हाँ,
1: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
0: जी।
1: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुड़ का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा, और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुड़ है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो, और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
0: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों, सब्जियों, फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
1: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए
0: जी,
1: अगर आपने मैंजीफोरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
0: जी।
1: लेकिन अगर आप हापुस बोलोगे, जितने बाजार में जाएंगे, अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
0: जी।
1: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेसिक हो जाए
0: जी। डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद करें?
1: निश्चित रूप से आजकल देखें तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथ हैं। डॉक्टर जय प्रकाश प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश

0: में मार्च में आए, बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, तीन तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफॉर्म। जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होकर ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है। तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये तीन बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है, उसके बाद तीन चार दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरेसेंस को सिकेटियर से काटकर सबको अलग करके कहीं नीचे ले आके मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें। हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है, जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो है ये फसल कैसे स्टार्ट होते है, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं उसे मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं
1: जी।
2: चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
2: हमें जो फसल जो है लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही है इनको भी हम लगा रखे हैं, हमने ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी, इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
2: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं सरकार ने बनाए हुए हैं उससे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
2: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
2: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। और भी सवाल है आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
2: गाना तो मैं जो है

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, वो जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहां हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहां सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट में भी माल उड़ जाता है
0: जी। और ये भी जानना चाहूंगे कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई है, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई है और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है
0: जी। मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो है आम

0: उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो है वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है। तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती हैं और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
1: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, जाके वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहाँ जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमास है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है, और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी ना बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जिगर वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीए टैग मिलेगा, और करीब ये 18 साल तक के लिए प्रश्न मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही है जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है, उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट, चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं, तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले, और विदेशी बाजार में उसकी विशेष मांग रहती है, तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असामयिक बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4-5 किस्मों का समूह लगाते हैं, इसमें होता क्या है कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पेशाती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है, और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
0: जी।
1: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से, हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडार क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है, तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान अब आगे बढ़ रहा है, उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है, और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए, और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है, और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
0: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
1: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा

0: मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से आता है, लंगड़ा चौसा दशहरी केसर है, बैगन पल्ली है, तोता परी है, इत्यादि जाति हैं। इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है ये वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन है वो मध्यम मिठास चाहिए, वो खटास भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी है, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे
1: जी,
0: हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और एक दो वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे और उनको देखेंगे, इस तरह से होता है।
1: जी, बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है
1: जी,
0: वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे।
1: जी बिल्कुल।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है।
0: जी।
1: जो आम बहुत छोटा सा होता है, जैसे हम टिकोरा कहते हैं, टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है, जैसे कहा कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए, अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की जा सकता है।
0: जी, यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा,
1: निश्चित रूप।
0: जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की जो लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
1: 3-4 रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं, उस किस्म के बारे में बताते हैं, उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग

0: एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए।
1: जी।
0: इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है, जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें ऑफकोर्स कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है, और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं।
1: जी, मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे, क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है इसलिए?
2: देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे, उससे फल को नुकसान नहीं होता था, अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है, इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते ज्यादा,
1: जी वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो कुछ फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी, तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना है, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है, अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है।
1: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाए,
2: वो भी सब धुल जाता है।
1: जी, डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे, अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहां साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि वह बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पे आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहां के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसका उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरे चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी।
3: और जाके देखना भी चाहिए, जैसे विश्व के अन्य

0: बच्चों में किस तरह से खेती की जाती है और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहां तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहां के उत्पाद प्रायः बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं और वहां किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आए, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खड़े उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा।
1: जी, चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
0: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे। आपने दशहरी लगाया और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो। तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी सस्य क्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं चाहे फल हो सब्जी हो उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है। तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग शॉर्टिंग पैकेजिंग अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी है, किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इंफेक्शन है ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है तो ये उसमें कलर चेंज है, बायो सेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं अब खाने योग्य नहीं है तो आप फेंक सकते हैं। तो जो भी AI है जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरी इंडस्ट्री को कर सकते हैं और ये क्षमता है और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूं लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए। और श्री अवनेश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं, गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल होना चाहिए और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौ सेवा भी की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष अभियानों के तहत प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के अल्लापुर क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने मलिन बस्ती में आयोजित स्वच्छता एवं प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल देश के कोने कोने में विकास और स्वच्छता की अलग जगाने वाला रहा है। असम में कल हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में प्रदेश के दो वीर भी शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह बागपत के कंडेरा गांव के थे, जबकि सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर निवासी थे। दोनों के निधन से इलाके में शोक की लहर है। असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक जताया है। प्रदेश सरकार जुलाई माह में राज्य के सभी जनपदों में निपुण संकल्प कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। प्रदेश के 33 केंद्रों पर 6 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक विशेषज्ञ एवं जिला स्तरीय टीमों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निपुण संकल्प कार्यशालाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रभावी रणनीति तैयार करने, विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
5: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पीटीओ

0: ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज द गिफ्ट ऑफ लाइफ। कहा जाता है कि रक्त दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और दोस्तों, हमारी संस्कृति में तो यूं भी दान की महिमा हमेशा से बहुत मानी गई है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो का प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य होता है स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देना और उन लाखों रक्तदाताओं का सम्मान करना जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, प्रसव, थैलेसीमिया, कैंसर और कई गंभीर बीमारियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आपका रक्त किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। तो आज के इस खास दिन हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका रक्त बैंक सेवाओं में लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में रक्तदान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सीधे डॉक्टर अनिल कुमार से बात कर सकते हैं, जो कि है चरक हॉस्पिटल से और जिनके पास गहन अनुभव है इस क्षेत्र का। और आप सवाल करेंगे कैसे? आप हमें डायल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर या फिर 0522-223-8845 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी पुराने ईमेल आईडी पर fmakashwanilakhnow@gmail.com। एक बार फिर याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ शो जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 MHz पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर और DTH पर भी। डॉक्टर, प्रोग्राम शुरू होते ही हमारे पास ढेर सारे ईमेल्स आने शुरू हो गए और ईमेल्स के साथ साथ फोन्स भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पहला कॉल लूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रक्तदान हमें करना क्यों चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि भाई हमारा खून है, हम किसी और को क्यों दे दें। तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
2: रक्तदान इसलिए जरूरी है कि रक्त कहीं बनता नहीं है, रक्त किसी के शरीर से निकलता है और किसी के शरीर में जाता है। और इसको अगर हम करते रहेंगे तो बहुत सारे जिंदगी को हम बचा सकते हैं। वैसे तो आइडियली ये होना चाहिए जैसा विकसित देशों में होता है कि रक्तदान लोग करते रहते हैं रेगुलर, और मरीज जब बीमार होता है तो रक्तदान की जरूर उनसे नहीं कहा जाता है कि ये है, और उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
1: तो सीधी सी बात है ये कि हम कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाएं, कितना भी हम एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन किसी फैक्ट्री में आज भी ब्लड नहीं बनता है। और ऐसे में मानव रक्त का क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है, तो आप अगर किसी की जान बचाना चाहते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहते हैं मानवता की, तो ये एक ऐसा काम है जो कि आप करके देख सकते हैं और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, आज हो सकता है हमें ज़रूरत है, कल किसी और को ज़रूरत है, तो एक दूसरे के लिए रक्तदान करते रहेंगे, इसी से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, हेलो, हाँ जी,
3: ये मतलब पूछ रहे थे मैम
1: जी,
3: रक्तदान होता है ना, तो इसको कैसे, मतलब इसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे क्या होना चाहिए?
1: अच्छा, आप ये जानना चाहती हैं बेसिकली कि कौन रक्तदान कर सकता है और कहाँ जा कर के रक्तदान करना चाहिए, है ना? अपना एक बार नाम भी बता दीजिए। ओके, काफ़ी हल्की आवाज़ आ रही है आपकी, लेकिन आपका सवाल समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, इनका ये कहना है कि कौन रक्तदान कर सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जिसे रक्तदान करने से पहले चार बार सोचना चाहिए, और अगर मान लीजिए मेरा बहुत मन है कि मैं रक्तदान करूं, तो किस जगह जाकर के, कौन से

0: ऑथेंटिक प्लेसेस हैं जहां पर मैं अपना ब्लड डोनेट कर सकती हूं?
1: रक्तदान किसी भी ब्लड बैंक में, किसी भी पूरे देश के किसी भी ब्लड बैंक में जाके किसी भी टाइम कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्लड बैंक 24 घंटे खुलते हैं
0: जी,
1: तो कभी भी कर सकते हैं। और कौन लोग कर सकते हैं, ये पूरा वो है कि जिसका 18 से 65 वर्ष के जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, 45 किलो से ज़्यादा वजन होना चाहिए और बाकी हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए और बाकी चीज़ें तो टेस्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर और सभी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं।
0: और ये हमें खुद कराना होता है या जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब ये की जाती है ब्लड बैंक से?
1: ये सारी चीज़ें ब्लड बैंक में की जाएंगी, निशुल्क की जाएंगी और रक्तदान भी पूरा निशुल्क होता है
0: जी,
1: तो सारी जांच वहाँ पे निशुल्क की जाएंगी, उसमें किसी को बाहर से पहले से कराने की जरूरत नहीं है।
0: मतलब एक फायदा ये होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट कराते हैं तो उस वक्त हमारी सारी जांचें हो जाती हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है हमें या हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है या फिर नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
2: हेलो
0: जी, नमस्कार। मिथिलेश जी, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, बेटर, मच बेटर।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
1: हाँ, नमस्कार जी।
2: हमको सुझाव कुछ लेने हैं आपसे, जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसका ब्लड डोनेट हो जाएगा?
1: नहीं, अस्थमा के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। कभी कभी ब्लड डोनेट करने के बाद अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, बहुत रेयर, कम पड़ता है, रेयर पड़ता है लेकिन फिर भी पड़ सकता है। और फिर अस्थमा के दवाइयां अक्सर कार्टिसोन लेते ली जाती हैं, उस उनमें मना होता है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को नहीं डोनेट करना चाहिए।
2: और डोनेट करने के लिए जो है कम से कम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए?
1: 12.5
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए और आपके सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एस्मा का मरीज, एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो कौन वो लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते एस्मा के मरीजों के अलावा?
1: एस्मा के दिल के जो मरीज हैं, हार्ट के कोई पेशेंट हों या उनकी कोई सर्जरी हुई हो हार्ट की, लिवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गई है और मिर्गी के दौरे हैं या कोई पागलपन का दौरा पड़ा है, माइग्रेन हफ्ते में 2 बार अगर होता है, कैंसर है, कैंसर ठीक भी हो गया तब भी नहीं डोनेट करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। एचआईवी का होना या उनके जीवन साथी को एचआईवी हो, सिफिलिस, गोनोरिया हो, तो ये लोग जो हैं कभी डोनेट नहीं कर सकते हैं। बाकी कई सारे होते हैं जहाँ टेम्पर इंसुलिन पे अगर डायबिटिक है और इंसुलिन पे अगर है तो वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। थायराइड बीमारी अगर अनियंत्रित है तो नहीं कर सकते, नियंत्रित है तो कर सकते हैं। और ये तो परमानेंट चीज़ें हैं जो कभी नहीं डोनेट कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारी कंडीशन होती हैं जिनमें टेम्परेरी अनफिट होते हैं, उनको वो फिर उनकी एक लंबी लिस्ट है, उनको वहीं पे देख लेते हैं ब्लड बैंक में, अगर उनमें से कोई होता है तो टेम्परेरी के लिए। टेम्परेरी मतलब वो कोई चीज़, किसी का फीवर आ रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है तो उस समय 3 दिन अगर एंटीबायोटिक नहीं लिया है तभी कर सकते हैं।
0: मतलब सीधी सी बात है कि जब भी ब्लड डोनेट करने जाएं तो डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, टैटू कराने के बाद, टैटू आजकल बहुत फैशन में चल रहे हैं, तो क्या टैटू कराने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: 6 महीने का गैप होना,
0: 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। और हाइपरटेंशन जो कि बड़ी कॉमन सी बीमारी है, क्या उसमें अलाउड होता है ब्लड डोनेट करना?
1: हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल्ड है
0: जी,
1: ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 से 150, नीचे वाला 50 से 100, अगर इस बीच में है, दवाई के साथ भी अगर कंट्रोल कर रखा है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: तो हम एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, स्वेच्छा जी इशारा कर रही हैं कि अब हमें कॉलर से बात कर लेनी चाहिए, तो स्वेच्छा जी आपकी बात मानते हुए अब हम हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
3: हेलो सर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं आशिक बोल रहा हूँ, जिला बदायूं, पटवारीगंज।
0: ओके, तो आशिक जी हमें बताइए आपका सवाल क्या है।
3: सर, ये जैसे जानना चाहते हैं, जैसे किसी का अगर दिमाग का ऑपरेशन हुआ तो

0: को डोनेट कर सकते हैं।
1: सर्जरी हुई है ब्रेन की।
2: हाँ, तो सर्जरी होने के, ये बड़ी सर्जरी है, तो इसको सर्जरी होने के एक साल बाद कर सकते हैं जी।
1: और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो जल्दी से हमें कॉल करिए, फ़ोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 एंड 223-8845। इनके पहले लखनऊ का कोड 0522 ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं या अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। हमारा

0: 0522 ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं या अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। हमारा ईमेल आईडी ये भी आपको रटा होगा लेकिन फिर भी अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आपको बता दूं कि ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं ज्योति, प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस और आज खास तौर पर आपके लिए हमने हमारे स्टूडियोज़ में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन इनवाइट किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनके पास काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस है इसी क्षेत्र का। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थीम है आज के इस दिन की, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो मानवता जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, कई बार हमें लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए लेकिन समझ नहीं पाते क्या करें, तो सीधी सी चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी बचाइए। और बहुत ही आसान है, ब्लड डोनेट करके आप एक नहीं कई जिंदगियों को बचा सकते हैं और इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, जी नाम बताएं। सबसे पहले तो आप रेडियो से दूर हो जाइए प्लीज।
1: जी प्रकाश बोल रहे हैं।
0: जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए।
1: मेरी दिक्कत ये, 4 साल से डेली आयरन की गोली खा रहे, नहीं खाते है ना तो सांस एकदम थमने लगती है।
0: आयरन की गोली अगर नहीं खाती है तो कमजोरी महसूस होती है और सांसें थमने लगती हैं। आपको क्या सजेस्ट किया है किसी बीमारी की वजह से आयरन की टैबलेट्स लेने को?
1: नहीं नहीं, बस ब्लड की कमी हो गई थी ना, उसके बाद से दिक्कत हो रही है।
0: और कब से ले रही हैं आप ये दवा?
1: मैम मैं प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: अच्छा ओके ओके ओके, आप कब से ये दवा ले रहे हैं?
1: 4 साल हो चुके।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
1: मेरी 30 साल होगी।
0: ओके, तो डॉक्टर साहब इनका ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ये जानना चाहते हैं कि 4 साल से, क्योंकि पहले इनका हीमोग्लोबिन कम हुआ था, 4 साल से ये लगातार आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर नहीं लेते हैं तो फिर इनकी सांस फूलने लगती है, इनको तकलीफ होने लगती है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए इन्हें डॉक्टर से इमीडिएटली बात करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर?
2: बिल्कुल, उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक तो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है गिर जाता होगा उनका
0: जी,
2: या सांस की कोई बीमारी है
0: जी,
2: तो दोनों हालत में इनको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए जल्दी जल्दी और उसको फॉलो करना चाहिए।
0: तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हमने आपके सवालों का जवाब देने के लिए इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अनिल कुमार को, जो कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त कौन है हमारे साथ? हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं आसिफ बोल रहा हूँ, तहसील गोला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से।
0: जी सवाल पूछ लें।
3: जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जो कुछ लोग नशा करते हैं जैसे कि अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो उनके लिए रक्तदान की जरूरी है या नहीं?
0: जो लोग नशा करते हैं जी, हाँ सवाल दोहराइए।
3: जो लोग नशा करते हैं मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग कोई भी नशा करते हैं, तो वो रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
0: ओके, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब या फिर नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका।
2: पिछले 12 घंटे में कोई नशा नहीं किया होना करना चाहिए, तो 12 घंटे में कोई नशा न करें, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: और वैसे तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि नशा करना ही क्यों, लेकिन अगर आपने किया है तो ब्लड डोनेशन से पहले आप इंश्योर करिए कि 12 घंटे पहले आपने किसी भी तरह का कोई नशा ना किया हो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश की है, तो हम अपने कॉलर से बात करेंगे, हम ईमेल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, जुड़े रहिए FM रेनबो से, जिस पर हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारी प्रोग्राम जो कि आपको ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि आपकी इंफॉर्मेशन भी, आपका ज्ञान भी बढ़ाते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक हेल्थ शो, जिसमें हम खुद बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को हमारे स्टूडियोज़ में और आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे बात करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज है ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इस खास दिन पर

0: हमने बुलाया है स्पेशली डॉक्टर अनिल कुमार जी को, जो कि ब्लड डोनेशन की सेवाओं के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मिलाकर 0522-223-8852 या फिर 0522-223-8845। और इस वक्त यही नंबर मिलाकर हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, हाँ जी बताएं।
1: डॉक्टर जी को नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि जिसके डायबिटीज रहता है तो वो क्या रक्तदान कर सकता है?
2: डायबिटीज अगर इंसुलिन पर है तो वो नहीं कर सकता है, और शुगर कंट्रोल्ड है अगर आपने दवाई से या डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रखा है शुगर और इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो कर सकते हैं।
1: इंसुलिन नहीं ले रहे हैं सर, डॉक्टर साहब कोई दवाई खा रहे हैं?
2: हाँ, दवाई से अगर आपने शुगर कंट्रोल कर रखा है तो आप रक्तदान कर सकते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछे।
1: सवाल सुन लिया, मुझे थायराइड है
0: जी,
1: थायराइड बारे में ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब ने शुगर सुन लिया।
0: अच्छा, थायराइड, ओके, थायराइड के बारे में।
2: थायराइड पे अगर आपने कंट्रोल कर रखा है थायराइड को तो दे सकते हैं।
0: तो थायराइड और शुगर, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अगर ये अंडर कंट्रोल है और स्पेशली अगर डायबिटीज़ में आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ढेर सारे ईमेल भी हमारे सामने हैं और मुझे लगता है कि उनको भी हमें ले लेना चाहिए। आहिल खान उर्फी खान बुलंदशहर से पूछ रहे हैं कि अगर किसी को एलर्जिक राइनिटिस है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? राइनाइटिस नाम की बीमारी, एलर्जी वाली, तो क्या ब्लड डोनेट हो सकता है?
2: ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं और फीवर नहीं होना चाहिए।
0: दीपक मिश्रा जी का भी ईमेल आया है लखीमपुर खीरी से, ये जानना चाहते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, 18 साल की उम्र है, वेट है सिर्फ 42 kg, 3 महीने के लिए ठीक ठाक रहेगा फिर से कम हो जाएगा, तो ऐसे में और तलवों में बहुत दर्द रहता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
2: किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होंगी, तो फिजिशियन से कंसल्ट कर लें।
0: मुनेश कुमार राज का भी ईमेल है लखीमपुर खीरी से, ये कह रहे हैं कि रक्तदान करने के लिए क्या वज़न होना चाहिए?
2: 45 किलो कम से कम वज़न होना चाहिए।
0: आगे लिख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हर साल ब्लड की जांच कराता हूं, हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट रहता है, लेकिन मेरा वज़न 45 किलो है 32 साल की उम्र में, तो कर सकता हूं डोनेट?
2: 45 साल वेट है तो कर सकते हैं, अगर इससे कम होगा तो नहीं
0: एक
2: कर सकता
0: हूं। और बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, इनके ईमेल में नीचे जो इन्होंने लिखा है कि क्या रक्तदान करने से शरीर में दोबारा खून बन जाता है या जो खून गया वो गया?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल बनता है। रक्तदान करने का करीब आपका हीमोग्लोबिन जो है 21 दिन में वापस आ जाता है, और हीमोग्लोबिन जो चीज़ें बनाती हैं वो करीब 1.5 से 2 महीने में पूरी रिकवर हो जाती हैं, और इसीलिए रक्तदान का जो कम से कम समय है पुरुषों में 3 महीने और महिलाओं में 4 महीने का समय है।
0: तो जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई कमजोरी या कोई बीमारी नहीं होने पाती?
2: नहीं, कोई कमजोरी बीमारी उससे नहीं होती।
0: डॉक्टर साहब, कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हमें अभी लेना होगा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. टाइम हो गया है 12:31 और ठीक 21 सेकेंड्स. आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में ज्योति के साथ, और आज ख़ास तौर पर हमने हमारे स्टूडियोज़ में बुलाया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ब्लड बैंक सर्विसेज में. रक्तदान से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. और कैसे करना है आपको क्लियर, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ. 223-8852 and 223-8845 ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं. ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwani@gmail.com. और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब को बुलाने की वजह क्या है, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है, लेकिन फिर भी जाने क्यों हिचकते हैं, जाने क्यों हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा. तो ये जो कहीं कहीं कहीं वाले सवाल हैं उनको आप पूछ सकते हैं बिल्कुल यही यानी कि 100.7 FM रेनबो पर डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से. सो लेट्स सी इस वक्त कौन हमारे साथ फोन लाइन पर है और इनका क्या सवाल है. हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल भी.
1: नमस्कार जी.
2: मैं बबलू यादव मोहनलालगंज लखनऊ ग्राम धनवासा से बोल रहा हूँ. मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कितने महीने के अंतराल में डोनेट करना चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए लगभग लास्ट.
1: 18 से 65 साल उम्र होनी चाहिए और पुरुष लोग हर तीन महीने पे खून दे सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में ब्लड दे सकती हैं.
0: बहुत अच्छा सवाल था इनका कि कितना गैप होना चाहिए. डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेट करने से फायदे क्या होते हैं? कई बार हमने सुना है कि बड़े फायदे भी होते हैं, तो आप ये मत सोचिए बड़ा नुकसान हो जाएगा. कोई नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे. उन फायदों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज.
1: ब्लड डोनेट, एक तो 5 जांचें होती हैं जो मुफ्त होते हैं. ब्लड डोनेशन और उससे जुड़ा सारा काम कार्य जो है मुफ्त होता है, कोई पेमेंट नहीं है. तो 5 जांच हम लोग करते हैं
0: जी.
1: एक तो HIV/AIDS के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, सिफिलिस और मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के लिए 5 जांच करते हैं. और इनमें से कोई जांच पॉजिटिव आती है तो सूचित करते हैं फोन करके कि आपको बुला लेते हैं और उनको बता देते हैं कि ये निकला है और आगे क्या करना है आपको. प्लस ये कि एक आपके अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है. और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है एक जो महसूस होता है ब्लड देने के बाद कि हमने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है.
0: तो ऐसे भी
1: ये फायदे हैं.
0: हमारी संस्कृति में तो यूं भी कहा जाता है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए. कितने सारे व्रत त्योहार होते हैं जिन पर दान करने का अलग ही महत्व होता है. तो ऐसे में रक्तदान को
1: रक्तदान तो सबसे बड़ा दान
0: जी. और कितने लोगों को फायदा होता है एक इंसान के ब्लड डोनेट करने से? डॉक्टर साहब,
1: एक यूनिट एक उससे फायदा करने में कम से कम 3 से 4 लोगों को होता है.
0: मतलब एक इंसान 3 से 4 लोगों की जिंदगी बचाता है.
1: बिल्कुल
0: ओके. ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई. डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार करते हुए. तो डॉक्टर साहब, इनका फोन तो डिसकनेक्ट हो गया है, लेकिन जो वादा मैंने आपसे किया था मैं उससे बिल्कुल डिसकनेक्ट नहीं हुई. हाँ, आपकी पसंद का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग अब मैं प्ले करने जा रही हूँ. और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हमसे कनेक्ट करें और अपना सवाल डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से पूछें जिनके एक्सपर्टीज हैं ब्लड डोनेशन में, तो फिर बता दूँ 0522223-8852 and 0522223-8845 ये दोनों हमारे नंबर हैं. तो गाने से पहले चलिए, क्योंकि हमारे कॉलर फिर से कनेक्ट हो गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
3: हेलो
0: जी, नमस्कार.
3: नमस्ते
0: जी.
3: ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डोनर उपलब्ध नहीं है और हमें ब्लड चाहिए तो कैसे ब्लड मिले?
1: हाँ, डोनर उपलब्ध नहीं है तो ब्लड अगर पेशेंट की ऐसी डिमांड है कि उसको तुरंत चाहिए तो हम लोग बिना डोनेशन के उपलब्ध कराते हैं.
3: मेडिकल कॉलेज वगैरह में उपलब्ध है
0: ब्लड?

0: बैंक का मतलब शायद यही होता होगा डॉक्टर साहब की,
1: हाँ
0: ऐसे लोगों
1: जी
0: को
1: हाँ,
0: भी।
1: जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: ये स्थिति ना आए तो ज्यादा
1: हाँ,
0: अच्छा है।
1: लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप बीच बीच में ब्लड डोनेट करें। और जब ब्लड डोनेट करता है तो एक और फायदा होता है कि हम लोग एक डोनर कार्ड इशू करते हैं उनको, वॉलंटरी डोनेशन कार्ड, जिससे वो अगले कुछ महीनों तक जो हैं वो बिना रक्तदान के ब्लड वापस ले सकते हैं।
0: ओके
1: तो बल्कि एक यूनिट आप डोनेट करेंगे तो दो अलग अलग यूनिट हम आपको दे देंगे। तो हमेशा रक्तदान करते रहिए, तो अगर आपको ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
0: और ये स्थिति ना आए इसीलिए तो हम बार बार अवेयर करते हैं हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, क्योंकि बार बार जो हम कह रहे हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, कितना भी पैसा आप देना चाहें उसके बदले आप इसी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। इसलिए रक्तदान करते रहिए और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपकी पसंद का गाना आपको सुनाएंगे। अब हम
2: से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 12:40 और ठीक 57 सेकेंड्स, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? हेलो
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार।

0: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, हमें मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब जी कि मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि मुझे अगर ब्लड डोनेट करना है तो किस अस्पताल में जाना चाहिए?
2: ओके, आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: हमारा नाम रामू है, मैं राम दुकौर से बोल रहा हूँ।
2: अच्छा, तो ब्लड डोनेट करने का इनका मन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन के काबिल ये बात है। बस इन्हें पता नहीं कि जाना कहाँ चाहिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है, डॉक्टर साहब जवाब देंगे।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो किसी भी ब्लड बैंक में, बहुत सारे अस्पतालों में भी, बड़े अस्पतालों में सभी में ब्लड बैंक है, और इसके अलावा भी ब्लड बैंक है, कहीं भी जा सकते हैं। और चरक अस्पताल ब्लड बैंक में आया तो स्वागत है आपका।
2: तो कहीं पर भी, किसी भी अच्छे अस्पताल में जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है राहत हुसैन जी का, नेहतपुर बिजनौर यूपी से। इन्होंने ईमेल के ज़रिए जानना चाहा है कि खून सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बनता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह अपने खून को हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है। तो ब्लड को किस तरह इतना हेल्दी रखें कि कोई ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है।
0: नॉर्मल डाइट लेते हैं तो किसी तरह के साथ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक नॉर्मल डाइट लें। नॉर्मल डाइट का मतलब है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, जो रूटीन खाते हैं हम लोग, तो वही खाएं, वही सफिशेंट है। उसके अलावा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए तो उसका इलाज कराएं उस समय, और बाकी नॉर्मल डाइट ही बेस्ट है।
2: विजयपाल यादव जी आपके और वैभव प्रकाश जी आपके सवालों का भी जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं, उम्मीद है आपने सुना होगा। राजेश कुमार जी मोदीपुरम मेरठ से ईमेल कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि 60 किलो वज़न है, रक्तदान करना चाहते हैं, कितने लीटर तक रक्तदान कर सकते हैं?
0: रक्तदान आप की उसमें मर्जी पे नहीं, कितना कर सकते हैं। रक्तदान के दो ही गाइडलाइन हैं। अगर 60 किलो, 45 से 60 किलो वजन है तो 350 ml, 350 ml लिया जाता है। अगर 60 किलो से ज़्यादा वजन है तो 450 ml लिया जाता है।
2: मतलब ये लीटर्स में नहीं होता है?
0: नहीं, लीटर्स में बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो गाइडलाइन है वो इस हिसाब से हैं कि रक्त देने वाले को जरा भी किसी नुकसान की आशंका भी नहीं रहे, इसलिए लीटर में नहीं होता, 350 ml या 450 ml।
2: तो राजेश कुमार जी के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है, जल्दी से हमें आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर आपके लिए ही तो हमने इनवाइट किया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर। डॉक्टर अनिल कुमार को हमारे स्टूडियोज़ में, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जिनका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। तो लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर कौन है। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: मैम प्रेम शंकर बोल रहा हूँ।
2: जी प्रेम शंकर जी, बताएं।
3: राजेजीपुरम से बोल रहा हूँ। मैम ये जानना चाह रहा हूँ, जो खून लोग डोनेशन करते हैं तो मैम इसमें कोई गड़बड़ी निकल जाती, कैसे पता चलेगा? मतलब कि उसको गलत लोग चढ़ा देते कभी कदार।
2: ओके, मतलब ब्लड जो लोग चढ़वाते हैं उनको गलत ब्लड तो नहीं चढ़ेगा, ये कैसे पता करा जाए, है ना?
0: नहीं, ब्लड जब होता है तो उसकी 5 जांच हम लोग करते हैं, जो 5 चीज़ें रक्त के थ्रू फैलती हैं, तो वो उनका टेस्ट करते हैं हम लोग। और अगर वो टेस्ट में कोई भी 5 में से, नाम बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी एड्स या सिफिलिस या मलेरिया होता है, तो इन 5 जांच को करते हैं। अगर इनमें से कोई ब्लड निकलता पॉजिटिव निकलता है तो उस ब्लड को फेंक दिया जाता है। प्रॉपर तरीके होता है उसका, उस तरह से फेंक दिया जाता है, वो कभी किसी को दिया नहीं जाता।
2: तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है इस क्षेत्र में, बहुत R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि कहीं गलत ब्लड तो नहीं चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपकी भी जांचें होती हैं। तो बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के ब्लड डोनेट भी करिए, और ज़रूरत है तो फिर अपने, अगर आपका कोई अपना है तो उसको आप ब्लड चढ़वा भी सकते हैं। राहत का ईमेल आया है डॉक्टर साहब एक और, उनका ये कहना है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनको

0: कैसे ब्लड मिल सकता है? क्या उनको कोई रजिस्ट्रेशन हमेशा से करा के रखना चाहिए, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, या ज़रूरत पड़ने पर उनको ब्लड मिल जाता है? और कौन से रेयर वैसे होते हैं ब्लड ग्रुप्स, ये भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: उन्हें ब्लड लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ब्लड देने के लिए सोसाइटीज होती हैं और सभी ब्लड बैंक मेंटेन रखते हैं रिकॉर्ड कि अगर आपको ब्लड देना है, रेयर ब्लड ग्रुप है, तो आप दे सकते हैं। बाकी लेने के लिए तो ये अवेलेबिलिटी पे है कि जो आप ब्लड बैंक देखेंगे, अब तो इंटरनेट पे साइट पे अवेलेबल रहता है, सारे अस्पतालों के पास वो साइट होती है, उनसे डेली आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको लेने के लिए। और दूसरा सवाल क्या था? मैं
0: दूसरा सवाल ये था कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं,
1: हाँ,
0: आपने हालांकि जवाब दे दिया कि उनको क्या ब्लड लेने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वैसे ब्लड ग्रुप होते कौन से जिन्हें कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोला जाता है?
1: रेयरेस्ट तो आरएस नल एक होता है, वो तो थ्योरेटिकल इसलिए है कि वो पूरे वर्ल्ड में समय केवल 60 लोगों का कर लगभग वो ब्लड ग्रुप है।
0: okay.
1: और मैंने अपने 16 साल करियर में वो उस ब्लड ग्रुप का कोई नहीं देखा है। लेकिन दूसरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप नेक्स्ट रेयर आता है, वो भी उस बॉम्बे में पहली बार मुंबई में पाया गया था, वहाँ से खोज हुई थी इसके लिए, इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, वो होता है लेने के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं, देने के लिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के मरीज को केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, और उसकी सोसाइटी है मुंबई में और बहुत अच्छी सोसाइटी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, और अगर डिमांड ज़रूरत होती है तो आप किसी भी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल को संपर्क करेंगे, वहाँ से वो उन सोसाइटी को संपर्क करते हैं
0: जी।
1: तो बाई एयर वो लोग भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप अवेलेबल कराते हैं। और जो कॉमनली सबसे कम ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी निगेटिव होता है, निगेटिव सारे कम होते हैं और ए बी निगेटिव सबसे कम होता है, रेयर उनमें है, और ये देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए
0: जी।
1: सभी निगेटिव्स को, और लेने के लिए तो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कहाँ पर अवेलेबल है,
0: और ये अवेलेबिलिटी बनी रहे इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप, मैं, हम सब जो कि एलिजिबल हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो हम सभी ब्लड डोनेट करते रहें। डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लूंगी और उसके बाद जो हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर,
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: 12:50 हो गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चला, तो इससे पहले कि एक बज जाए और हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़े, जल्दी से हमारे इन कॉलर को लाइन पर ले लेते हैं। हेलो।
8: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें डॉक्टर साहब से।
8: मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं लखनऊ से, इंद्रनगर से बोल रहा हूँ, इंद्रनगर राजीव नगर से। मेरा सवाल ये कि कान संबंधी दिक्कतें होने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: जी, कौन सी दिक्कतें होने पर?
8: कान में पर्दा छेद हो या कान बहता हो।
0: अच्छा, कान अगर बहता है तो क्या उसके बाद भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
1: फीवर नहीं होना चाहिए और कोई एंटीबायोटिक न ले रहे हो तो दे सकते हैं।
0: तो सीधी सी बात है कि आप अगर ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो जो भी वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उन्हें अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर बताएं। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके विषय में भी पूरी जानकारी दें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, हेलो,

0: हाँ जी बताइए।
1: मेरा नाम सावित्री है, मैं देवी जगदीशपुर से बोल रही हूँ।
0: थोड़ा आप अपने फोन के करीब आ जाइए कि आपकी आवाज़ बहुत ही हल्की आ रही है।
1: हेलो, मेरा नाम सावित्री है, मैं देवी जगदीशपुर से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी सावित्री जी बताइए, सवाल पूछिए।
1: उन्नाव से
0: हम्म।
1: मेरे भाई ने, जब से मेरे भाई ने एक बार ब्लड रक्तदान किया था ना,
0: हाँ
1: तब से उनको कमजोरी है, तब से उनके शरीर में कमजोरी नहीं जा रही।
0: डॉक्टर साहब, सावित्री जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भाई ने एक बार ब्लड डोनेट किया था और तब से उसको कमजोरी रहने लग गई है, तो आप प्लीज़ बताएं कि क्या उस वजह से इनको कमजोरी रहने लग गई है या फिर कोई और वजह है, और अगर और भी जो भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई, जैसे लोगों को लगता है हमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारी वीकनेस हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कोई बीमारी पकड़ ले, इस विषय में भी हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज़।
2: रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती है मैम। एक तो कभी कभी लोगों के, चूंकि दिमाग में बैठा हुआ है, रक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोबारा नहीं बनता है, तो वो दिमागी तौर से कुछ लगता है। अगर फिर भी कमजोरी लग रही है तो एक बार उनकी दिखा लें किसी डॉक्टर को, वो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाने के बाद ये पता लग जाएगा कि वो रक्तदान से तो नहीं हुआ है या कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया। रक्तदान से होता नहीं है क्योंकि 12:30 पे हम लोग से नीचे ब्लड डोनेशन नहीं कराते हैं, और अगर उससे थोड़ा बहुत गिर भी गया, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं गिरता है, तो 11:30 आप आ जाएगा, जो कि 3 हफ्ते में रिकवर हो जाता है।
0: तो ये सिर्फ एक भ्रांति है,
2: ये सिर्फ एक
0: और डॉक्टर
2: भ्रांति
0: साहब ये जो भ्रांति है कि कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं या बीमारियां लग जाती हैं, ये भी कई लोग बार बार पूछ रहे हैं।
2: नहीं, जो भी ब्लड लिया जाता है वो निडेल वगैरह बहुत स्टराइल वन टाइम यूज होता है
0: हाँ
2: उनका, वो पैक्ड होती है वन टाइम यूज, सेकेंड टाइम आप यूज कर ही नहीं सकते, ब्लड बैग से अटैच निडेल आती है, तो
0: जी,
2: इसलिए उससे कोई इन्फेक्शन किसी तरह का होने का कोई चांस नहीं,
0: मतलब नुकसान तो बिल्कुल नहीं
2: बिल्कुल
0: होता
2: नहीं होता,
0: और फायदे जरूर
2: फायदे
0: है जिनके बारे
2: तो
0: में आपने
2: बिल्कुल
0: बताया।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे?
3: मेरा नाम ध्रुवकांत पांडे है,
0: जी
3: मैं
0: पांडे
3: बिहार
0: जी,
3: कॉलोनी लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: जी पांडे जी सवाल पूछिए
3: प्लीज। सबको नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे एक स्टंट पड़ा है और मेरे जो ब्लड थिनर की दवाइयाँ चलती हैं, और बीच में मुझे विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी थी, जिसको मैं इंजेक्ट के थ्रू ठीक कर लिया मैंने। डॉक्टर साहब क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कभी जरूरत पड़ने पे? मेरा ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है।
2: नहीं, ऐसा है कि पांडे जी कि अगर स्टेंटिंग पड़ा हुआ है तो फिर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, उसको पूरे कभी नहीं कर सकते हैं।
0: लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस विषय में सोच रहे हैं इतनी
2: हाँ,
0: समस्या के बाद भी। पांडे जी हैट्स ऑफ टू यू।
3: इसके अलावा भी मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, वो समय समय पे देते रहते हैं, 5-6 महीने के रेगुलर अंतराल पे। बीच में जरूरत पड़ी थी उसके एक दोस्त के मदर को ब्लड की जरूरत थी, मैंने अप्रोच किया, लेकिन लड़कों ने मिल करके गैदरिंग करके कवर कर लिया। एक मन में रहता है कहीं भी जरूरत पड़े, क्योंकि मेरा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है
0: जी,
3: और डोनेटर ब्लड ग्रुप है, बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है।
0: बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को आपके जैसे और लोगों की जरूरत है। डॉक्टर साहब इन्होंने जो बात कही यूनिवर्सल डोनर वाली बात कही ओ पॉजिटिव, तो ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका खून, जिनका ब्लड हर किसी को चढ़ सकता है?
2: नहीं, यूनिवर्सल डोनर का कंसेप्ट यथा संभव नहीं होता है, सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में होता है, जैसे एम्बुलेंस लेके एक्सीडेंट की साइट पे चल दी और वहीं पे ब्लड बिल्कुल बह रहा है, तो वो नेगेटिव या वो पॉजिटिव भी ब्लड लेके चलते हैं, और उस इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ ब्लड ग्रुप करने का भी आपके पास टाइम नहीं है, इतनी खून बह रहा है, वहाँ वो पॉजिटिव यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा जो है ब्लड ग्रुप करके ही करते हैं। ब्लड ग्रुप करने में 5 मिनट से भी कम समय का लगता है
0: जी,
2: इसलिए ब्लड ग्रुप करके ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी टाइम नहीं है तो भी यूज करते हैं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट था यूनिवर्सल डोनर का, जो अब यूज जनरली नहीं होता जब तक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन ना हो।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो फर्ज मेरा ये

भी बनता है कि जो अच्छे से गाने आपने सुनाने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था मैं वो गाने आपको सुना दूं। तो दो गाने तो हो चुके, तीसरा ये गाना विच हैपेंस टू बी मेरा भी फेवरेट, तो चलिए सुनते हैं वो कौन थी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना लता जी की आवाज़ में।

0: अच्छा काम कल पर बिल्कुल भी मत टालिए। इस गाने को सुन लीजिए, ये भी यही कहता है कि भाई काल करे सो आज कर, जो करना है वो आज ही करिए। और स्पेशली आज का दिन, ये तो बहुत ही स्पेशल है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव। और इसीलिए खास तौर पर हमने बुलाया हमारे स्टूडियोज में प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका एक्सपर्टीज है इसी फील्ड में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अगर आप संक्षेप में हमारी श्रोताओं को कुछ कहना चाहें तो।
1: मैडम ये है कि 18 से 65 साल की उम्र है और 45 किलो से ज़्यादा वजन है और 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो, वो तो खैर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, लेकिन यथासंभव हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ब्लड कहीं बन नहीं सकता है, सब एक आदमी से देके और एक सोसाइटी में अगर इस तरह का माहौल बन जाए कि सब लोग डोनेट करें, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ज़रूरत के टाइम आपको कहा जाए, जिस समय आप परेशान होते हैं कि उस टाइम ब्लड डोनेट किया जाए और सबको ब्लड मिलता रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात एकदम स्पष्ट है कि रक्त का कोई कारखाना नहीं होता, इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। और इसी कारण रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। अ सिंगल पिंच कैन सेव 3 lives और मे बी मोर देन 3 lives। अ सिंगल जेस्चर कैन क्रिएट अ मिलियन स्माइल्स। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आज आपने रक्तदान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरल और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से। मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह। और विशेष सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी मैं स्वेच्छा जी को। मैं ज्योति अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने की आपसे इजाजत लेती हूं। अगले रविवार फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अगर

0: संभव हो तो रक्तदान जरूर कीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी की धड़कनों को फिर से जीवन दे सकता है। नमस्कार।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत में मंदिर निर्माण और दान प्रकरण की जांच को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्रा ने बताया कि सरकार ने एक सप्ताह में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रीराम मंदिर परिसर की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक तकनीक आधारित बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज औरैया जनपद के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की गई, जिसमें कुल 3,438 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गई थी। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। स्टेट हेल्थ एजेंसी सांचीज की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटि रहित बनाने में जुटी है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:09 और ठीक 7 सेकंड्स हो रहे हैं. अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें और इलाकाई खबरों के बाद हम फिर मिलेंगे लेकर होठों पे तेरी बात.

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संघ

0: बुनियाद रखेंगे। वज़ीरे आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीरे आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज़ गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वज़ीरे आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीरे आज़म की क़यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने 1 हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज़ पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले ज़िक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम शहरियों की ज़िंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाज़ह रहे कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफ़र फराहम करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई ज़िला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज़ तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भरोसे का सर फेंकना
1: आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
2: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

1:17:30 आप ज्योति के साथ इंटर प्रोग्राम HPTB यानी कि उर्दू में तेरी बात। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज, लेकिन मेरी आवाज में होंगे बस आपके जज्बात, आपके अल्फाज। आपसे आज मैं जानना चाहती हूँ कि इस मौसम में, ये जो वेकेशंस का मौसम होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? आप पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं या फिर समंदर आपको बुलाते हैं? मतलब आप माउंटेन पर्सन हैं या फिर सी पर्सन, या जब कभी छुट्टी होती है तो आप चुपचाप अपने गाँव की ओर चले जाते हैं? नानी हाउस आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है या फिर कोई आसपास की जगह? जल्दी से मुझे ईमेल करिए और बताइए। मैं ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपके ईमेल्स का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना ठेडिये मारा, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: जी हाँ, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ ईमेल्स भी पहुंचाते रहिए। मोनू सेठ ने लिखा है कि घर के काम में व्यस्त था तो मुद्दा नहीं सुन पाया, लेकिन हैप्पी संडे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस संडे को इतना हैप्पी बनाने के लिए। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो आज मैंने आपसे ये जानना चाहा है कि छुट्टियों में आप कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, पहाड़ों में, गांव, घर पे रहना पसंद करते हैं, नानी घर जाते हैं या फिर समंदर की साइड निकल पड़ते हैं। कौन सा आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है हॉलीडे के लिए? सुधाकर जाधव जी ने लिखा है, हम तो किसान हैं, हमारे इधर किसान की खेती की मशागत चालू है और आपका प्रोग्राम खेत में काम करते वक्त सुन रहे हैं। अभी बरसात नहीं हुई है तो गाना सुना दीजिए जी, पूरी कोशिश की जाएगी। इन्होंने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ईमेल किया है, श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख के साथ इतने सारे लोगों ने मिलकर के ईमेल किया है। रामराज जी का ईमेल आया है, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, इन्होंने लिखा है आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश अनेजा जी के दो दो ईमेल आए, इन्होंने लिखा है गर्मी की छुट्टियों में हम पहाड़ों में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खुशी की बात है कि हम अधिकतर मनाली जाते हैं, मनाली इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आगे लिखते हैं, वहाँ हमारा घर भी है तो अगली बार हमें इन्वाइट करिए ना अब सतीश जी। आगे लिख रहे हैं कि मनाली से थोड़ा आगे लाहौल स्पीति में बर्फ पड़ रही, जिसका पूरा आनंद लेते हैं। कुछ दिन बाद वहीं से रेनबो लखनऊ सुना करेंगे। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा एंड सुल्तान रजा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात लिखने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए। आगे इन्होंने लिखा है, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, इकबाल रजा, और जब बात घूमने फिरने की आती है तो हमको ना ही पहाड़ों से सुकून मिलता है ना ही समंदर।

टमाटर के किनारे हमें तो सुकून मिलता है अपने गांव जाकर जहां हमारे घर के अंदर बहुत से पेड़ लगे हैं उन पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाना इस मौसम में आम खाना जामुन खाना वाह क्या बात है और वो सब भी फ्री में होता है अगर हम पहाड़ों पे गए तो पैसा खर्च होता है लेकिन हमारे गांव जाकर नहीं तो पैसा खर्च होता है और ना ही तकलीफ होती है और मज़ा भी दुगना हो जाता है मेरा गांव है मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ ज़िला बरेली लेकिन अभी बरेली से ईमेल कर रहा हूँ मैं इतना अच्छा अपने बिल्कुल सीन मेरी आंखों के सामने खींच दिया कि मैं क्या कहूँ मेरा भी मन कर रहा है आपके गांव आ करके पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी शोटी खाने का और आम जामुन एकदम फ्रेश फ्रेश दाल वाले उनका आनंद उठाने का तो भाई छुट्टी का मतलब ही होता है थोड़ी सी मौज मस्ती थोड़ी सी मटर गश्ती आप कहाँ जाना पसंद करते हैं छुट्टियों में मतलब आप माउंटेन पर्सन है या आप सी पर्सन है मुझे बताइए जल्दी से ईमेल करके

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: एक बजकर 34 मिनट और ठीक 4 सेकंड्स। प्रोग्राम का नाम HPTB यानी ये होटल पे तेरी बात। सीधे सीधे कहें तो आवाज भले ही मेरी है लेकिन सब तक पहुंच रहे होंगे बस आपके अल्फाज, आपके जज्बात। ऑन द टॉपिक, छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? आर यू अ माउंटेन पर्सन या फिर आपको समंदर अपनी ओर खींचता है? छुट्टियां अपनी नानी के घर बिताना पसंद करते हैं, गांव जाते हैं या चुपचाप घर पर ही रहते हैं? लगातार ईमेल्स हमें आ रहे हैं और मैं जानती हूं आप सबको ईमेल आईडी हमारा रट चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपको बता देती हूं कि आप ईमेल हमें कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। वकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्चुअली मेरा दिन बना दिया। लिख रहे हैं, छुट्टियों में गांव अच्छा लगता है, हमारे आम की बाग है उसी में हम रोज आते हैं, खेत भी हमारे उधर है, इस समय भी आम के बाग में है, आम गिरने लगे हैं। वकील अहमद, मंसूरी, कटका, हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबका नाम इन्होंने लिख दिया है। मुनेश कुमार राज लिखते हैं भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से, हम हैं FM के दीवाने, आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने, रोना पड़े तो गुदगुदाए ना कोई, हंसने के लिए 1000 होते हैं बहाने, वाह वाह वाह वाह। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप अगर दुखी होते हैं तो एक बार कोई आपकी परेशानी सुन लेता है, दो बार सुन लेता है, 90% केसेस में कोई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देता और बाद में सुनना भी पसंद नहीं करता, तो क्यों नहीं हर वक्त मुस्कुराते रहे, क्योंकि समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं, मिल ही जाएंगे सूनर और लेटर। आगे लिखते हैं कि मैं पहाड़ों को पसंद करता हूं, पिछले साल उत्तराखंड के शिवपुरी घूमने गया था। जनवेश कुमार जी लिख रहे हैं कि कल आपने और रत्ना जी ने जो GML किया था अच्छा लगा था, मुझे अपना घर लखनऊ शहर अच्छा लगता है, वहीं मैं छुट्टियां बिताना पसंद करता हूं। रत्ना जी को भी ये नमस्कार करें, उम्मीद करती हूं रत्ना इस वक्त आपका प्रोग्राम ये वाला, क्योंकि ये तो आपका प्रोग्राम हो गया ना, सुन रही होंगी। लिख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की भूल भुलैया चौक और वहाँ की आइसक्रीम खाने में बड़ा आनंद आता है। जनवेश कुमार, ग्राम रसूलपुर, पोस्ट सकरावा, जिला कन्नौज इस वक्त।

नोएडा में सुन रहा हूँ। नीलू शर्मा रूपुर चंदेला से लिखती हैं, किसी को देखकर जज मत करो, क्या पता भगवान तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाले हो। हेल्थ एंड फिटनेस अच्छा लगा, मुद्दा मैं नहीं सुन पाई, अपनी दोस्त के यहाँ आई हुई थी, अब तो सुन लिया होगा है ना। अगर मैं कहीं भी जाना पसंद करती हूँ तो अपनी दोस्त पीहू के साथ। अंकित वैश्य का ईमेल आया, लिख रहे हैं शिमला में मैं मोनू मामा जी से मिलने जा रहा हूँ, यानी कि गांव में। ओके, शिमला से इन्होंने ईमेल किया है और लिख रहे हैं कि गांव में जो आनंद है वो कहीं बाहर कहाँ। गांव में पैसे भी नहीं खर्च होते, सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। राजा बाबू फ्रॉम शिमला। तो भाई पैसे खर्च होते हैं हर जगह, पैसे खर्च होते ही बात अलग है कि अगर आप मामा के घर जा रहे हैं तो मामा आपको सारी चीजियां यूं ही उपलब्ध करा देते हैं। अशोक कुमार लिख रहे हैं रायबरेली उचाहर धमधामा से कि छुट्टियों में घर पर ही रहता हूँ, मौका मिला तो कभी कभी घूमने भी चला जाता हूँ। अनिता साहू, आलोक साहू, मुस्कान साहू, अमन साहू के साथ मेल किया है। भाई ये भी बात सही है, छुट्टियों के नाम पर हम सब घर से निकल पड़ते हैं और होता क्या है कि नॉर्मल डेज से कहीं ज्यादा थक जाते हैं। अभी मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर थी और कुछ ऐसी थकान लेकर आई हूँ कि तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं लेकिन थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इससे तो मैं टोटली अग्री करती हूँ कि हम सब छुट्टियों में घूमने जाना है इसको ऐसे रिचुअल बना लेते हैं कि कभी कभी नॉर्मल डेज से कहीं ज्यादा थक जाते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, लिखते हैं ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी तारीफ के लिए। आगे लिख रहे हैं कि पहाड़ों पर जाते हैं और यहाँ हैदराबाद में पहाड़ बहुत हैं, गांव जाने का मन करता है लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पाता। एक्चुअली मेरा गांव राजकटरा अहमदपुर बाराबंकी में है। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, गुलफशा अप्पी, एमन नवाब अप्पी, सबको नमस्कार बोल रहे हैं। तो जी, किसी को समंदर पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को हरियाली में घूमना फिरना पसंद है। तो कई ऐसे भी हैं हमारे दोस्त जिन्हें बस घर में रहना ही पसंद है। देखिए ना कितना अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो थोड़ा और कुछ बताइए अपने बारे में, जल्दी सी ईमेल भेजिए और मुझे बताइए कि आप छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं। आप मतलब माउंटेन कॉलिंग वाले पर्सन हैं या फिर समंदर आपको अपनी ओर खींचता है, या फिर जस्ट यूं ही अपने घर में रहना छुट्टियों में भी आपको ज़्यादा भाता है। मैं हूँ ज्योति और मुझे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HPTV यानी होटो पे तेरी बात में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: कभी कभी घर में रहना, रिलैक्स करना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी को लगता है कि छुट्टियां हुई हैं तो घर से बाहर निकला जाए, दुनिया को देखा जाए। कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत ये दुनिया है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवलिंग आपको जो एक्सपीरियंसेस देती है, जो ज्ञान देती है, वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी किताब में मिल ही नहीं सकता। और किसी ने कहा भी है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए तो जैसे ही मैंने आज का क्वेश्चन थ्रो किया कि आपको छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद है, ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने स्क्रीन पर आ गए। आलोक साहू जी का ईमेल है, रायबरेली ऊंचा हार धमधमा से लिख रहे हैं कि छुट्टियों में कहीं जा नहीं पाता, घर पर ही रहकर रेडियो सुनता हूँ और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनते रहते हैं, समोसे पकौड़े के साथ कोल्ड ड्रिंक आराम खाते हैं, हमारी तो छुट्टियाँ ऐसे ही मस्ती में बीत रही हैं। भाई ये बहुत गलत बात है, मतलब लंच के टाइम पर आप समोसे पकौड़े की बात कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है, मुझे भी भूख लगने लग गई, नॉट फेयर। बाबू अंसारी देव कली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से लिख रहे हैं, ओके जी, थैंक यू, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी ढेर सारी तारीफ के लिए शुक्रिया। लिखते हैं, कहना चाहता हूँ कि मुझे छुट्टी मिलती है या फिर मैं जब कभी फ्री होता हूँ तो घर पर ही रहना पसंद करता हूँ, ये भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मोनू सेठ जी लिखते हैं, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे लिए सब दिन बराबर है, मतलब कभी तो टाइम निकाला करिए मनु जी। सूरज उगने से पहले दुकान के ताले खुल जाते हैं, त्योहार की भीड़ हो या इतवार, दुकानदार के दिन कभी ना थमते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई विराम नहीं, बस सुबह से शाम का एक चक्र है, ग्राहक की एक मुस्कान पर ही टिकी उनकी रोजी रोटी का मंत्र है। जब आराम की चादर ओढ़ कर सपनों की मीठी नींद सोती है, तब भी एक छोटे से बल्ब की रोशनी में उनकी दुकान की चौखट कभी ना रोती है। परिवार के साथ भी पल बिताना उनके लिए त्योहार से कम नहीं, पर लोगों की जरूरतों के आगे दुकानदार की कोई छुट्टी नहीं। हर मौसम की मार सहकर हर रोज वही सामान सजाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हालात, दुकान पर जरूर आते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोनू जी, कभी कभी ना आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को, अपनी फैमिली को देना भी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सब कुछ छोड़कर, बंद करके घूमने फिरने भी निकला जाए, क्योंकि काम है, ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, है ना। आशा वसी लिख रहे हैं, मुझे तो

पहाड़ों पर जाना पसंद है, एकांत और ठंडा मौसम, लेकिन स्टूडेंट लाइफ है तो अभी ज्यादा कहीं घूम नहीं पाती। नेवर माइंड, सबसे बड़ी बात है ये कि आपको घूमना पसंद है और अभी आप बहुत छोटी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आगे जरूर घूमेंगे। अर्जित हर्षित अर्पित प्रिंस परी सेठ, हम सभी लोग बुआ के यहाँ नानी के यहाँ घूमने जाने वाले हैं। बुआ जी ने भी बुलाया है और नानी जी ने भी। वाह भाई वाह, क्या बात है। परी का ईमेल आया है। एमन, एमन लिख रही है कि आपने पूछा मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, तो मैं ना ही हूँ सी टाइप की पर्सन और ना ही हूँ मैं माउंटेन टाइप की पर्सन है। मुझे माउंटेन से डर लगता है, ऊंचाई से डर महसूस होता है। सी पर्सन भी नहीं हूँ, पानी के लहरों से डर लगता है। मैं हूँ नेचर टाइप की पर्सन, यानी मुझे हरियाली बहुत पसंद है। यहाँ जहाँ भी हूँ वहाँ पर ज़मीन पर हरी हरी घास हो, खूब पेड़ लगे हो, बेंच पड़ी हो, वहाँ शांति से बैठकर अपने ख्यालों में गुम हो जाना चाहती हूँ। वैसे घूमने के मामले में लखनऊ गई हुई हूँ, अगर कोई मुझसे घूमने को कहे तो लखनऊ में ही घूमना चाहूँगी। आई लव लखनऊ। एमन नवाब संडीला, जो आपने पूरा सीन क्रिएट किया है ना, हरी हरी घास हो, एकांत हो, तो मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी आंखों के सामने पूरी पिक्चर बन गई। लेकिन हाँ, अगर लखनऊ आइएगा तो हम सबसे मिलने जरूर आइएगा, भूल तो नहीं जाएंगी। मैं महेंद्र देपन राजस्थान के नागौर जिले के गाँव रूण से हूँ। मेरा मानना है कि पहाड़ों की गोद में जो शांति और सुकून है उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की वादियों में खो जाना पसंद है। मैंने लोनावला और खंडाला की खूबसूरत वादियों का अनुभव किया है जो जन्नत जैसे हैं। पहाड़ों के अलावा मुझे हमारे देश के पवित्र धार्मिक स्थलों पर भी जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर आत्मिक शांति मिलती है। कुछ नाम ले दीजिए, बाबू भाई अंसारी, रोशनी रावत दीदी, बबीता राव दीदी। तो ये जो जन्नत वाली बात कही ना आपने, कहा जाता है ना कि ज़मीन का जन्नत कश्मीर है, इसी बात पर ये गाना सुन लेते।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: रामेश्वर जी का ईमेल आया है। रामेश्वर कठेरिया ग्रामवा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से उमाकांती कठेरिया के साथ लिख रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाते, बस आपका प्रोग्राम लगातार सुनते रहते हैं। ओके रवि कुमार जी ने गाने की फरमाइश की, तो ये अभी फरमाइश वाला तो प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है। अभी तो मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको छुट्टियों में कहाँ पर जाना पसंद है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम पोस्ट खन्नौदी, जिला शहडोल से जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर और इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू। छुट्टी में बच्चे तो नाना नानी के यहाँ चले गए हैं, तो वहाँ पर आम का आनंद उठा रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर आम का बड़ा सा बागीचा है। रोशनी रावत ने लिखा है जी, पहले तो शुक्रिया रोशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती है, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ, रहने वाली हूँ बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, कहीं भी ले चलो। और थोड़े दिनों बाद मैं फिर से जाने वाली हूँ, बहुत सारे राज्यों में गई हुई हूँ, तो जी सीधी सी बात है ये कि घूमना फिरना मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाएं, बहुत ज़्यादा खर्च करके जाएं, लेकिन थोड़ा घर से निकलना ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, नो डाउट। आंचल सेठ ने लिखा है, दीदी नमस्ते, महाकाल गई थी और अभी भैया के यहाँ हूँ, मायके में हूँ, 7 दिन यहीं रहूँगी, आपके प्रोग्राम सुनती रहूँगी। हाँ सुनती रहिए और फीडबैक भी देती रहिए। ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, इन सब ने ईमेल किया है और अब टाइम हो गया है कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने इतने अच्छे फीडबैक दिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। थोड़ी देर पहले ये कहा था ना आप में से किसी ने कि कहीं भी घूमना पसंद है, कहीं भी आप जा सकते प्रोवाइडेड कि आपकी कंपनी अच्छी हो, तो इसमें मैं टोटली अग्री करती हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप एक जगह एक बंदे के साथ जाते हैं तो आपका दूसरा एक्सपीरियंस होता है और दूसरी कंपनी में जाते हैं तो फिर दूसरा एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं भी घूमने जाइए, कुछ भी करिए, बस ये ध्यान रखिए कि आपका साथ बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो, कुछ ऐसा हो कि आप कुछ ये कह सकें कि तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। वारिस अली खान जी का भी ईमेल आया है, देवस्थल के दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो जी ऑन दिस नोट ज्योति कहती है, आपसे टाटा फ्रॉम दिस प्रोग्राम, ये खूबसूरत गाना आपके साथ छोड़कर जा रही हूँ, फिर न्यूज ब्रेक और उस पर आपके ईमेल्स, आपकी फरमाइश और बस आपकी पसंद के सॉन्ग।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। स्टेट हेल्थ एजेंसी साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटि रहित बनाने में जुटी है। अब तक 3.5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले श्री योगी ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में 150 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण

समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत में मंदिर निर्माण और दान प्रकरण की जांच को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुटे कथित घोटाले के मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने बताया कि सरकार ने एक सप्ताह में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, साथ ही हर गरीब को प्राथमिकता दी जा रही है। अम्बेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार द्वारा युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा, बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान महादान का पुनीत कार्य किसी को नया जीवन प्रदान करने के साथ ही मानवता की सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। इस मौके पर फर्रुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने की अपील की। वहीं कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित 10 बेड वाले ब्लड कलेक्शन रूम में रक्तदान शिविर आयोजित कर आज से उसकी शुरुआत की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 3 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।
3: दो बजकर 5 मिनट और ठीक 33 सेकेंड साफ है ज्योति के साथ, और ज्योति फिर करने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बात। यस, प्रोग्राम का नाम हॉट मेल। तो इस प्रोग्राम में बस आप ही के मेल में लिखी हुई बातों को पढ़ा जाएगा, आपके मैसेजेस को दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा और आपके ही फरमाइश किए हुए सॉन्ग्स को प्ले किया जाएगा। इन अ नटशेल हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आप ही तो हैं सुपरस्टार इस पूरे घंटे के। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से हमें ईमेल करिए। वैसे तो ईमेल्स हमारे सामने बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन आपने अभी तक नहीं सोचा तो जल्दी से ईमेल करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और मैं आप ही में से किसी एक का रिक्वेस्ट किया हुआ ये गाना प्ले करती हूँ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
6: विजय महोबिया जी का ईमेल आया है और ये लिख रहे हैं आज के खूबसूरत गीतों में हमें भी शामिल करें, सदैव मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, प्रस्तुति पसंद आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साई गायकवाड़, हॉटमेल करने वाली दीदी को प्यार भरा नमस्कार। हॉटमेल बढ़िया चल रहा है, कोई भी गाना सुना दीजिए। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़, महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। रवि कुमार जी ने भी गाने की फरमाइश की है, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। लिखते हैं रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत

राहुल गुरशब्द सिंह राहुल ओके इतने सारे राहुल मोहम्मद सादिक खत्री ओके इन्होंने लिखा है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री रमेश गौर मोहम्मद शादाब खत्री जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोला मानी मोहम्मद उमर कासमी हाजी अयूब शेरी तुलसी मस्कीन ज्योति जी नमस्कार हम भी रेगुलर कनेक्ट हो गए एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी इतने ढेर सारे ईमेल ओ माय गॉड इतने सारे ईमेल ओके तो किसी भी गीत में शामिल करें जगदीश ढाकर नायमा जी श्रीमती रंजू भाई भाई ढाकर नायमा युवराज सिंह ढाकर शिवांगी ढाकर रतलाम एमपी से हिंगड़ी आलोट श्रोता संघ मालवा रेडियो जगदीश जी आपका ईमेल तो पढ़ लिया मैंने अभी अभी आप सुन रहे होंगे है ना फिर भी भेजा ओके हनुमंत शिंदे छेटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे संगीता शिंदे ऋषिकेश वसुंधरा गाने का इन्होंने गाने की फरमाइश की है और अब मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी दोस्तों होता क्या है हम पूरी कोशिश करते हैं आप सबके ईमेल शामिल करने की लेकिन थोड़ा मुश्किल तब हो जाता है जब कभी कभी आप 20-25 ईमेल एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक भेजते हैं तो अगर एक बार आपने ईमेल भेज दिया है तो हम वहीं पर रुक जाएं गुड और जहां तक कोशिश की बात है तो कोशिश पूरी की जा रही है और हाँ अपने ईमेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए बढ़िया सा कोई मैसेज कोई लतीफा कोई इंसिडेंट कोई संस्मरण कोई शेर व शायरी अगर आप भेजें तो बस सुनने वालों को भी मजा आ जाए और पढ़कर मुझे तो मजा आ ही जाए फिलहाल सुना रही हूँ आप में से ही किसी एक की पसंद का ये सॉन्ग

0: मतलब ये कि जो भी करो स्टाइल से करने का,
1: उससे तो सस्ता ही है।
0: और इसी स्टाइल से आपके ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं, जिन्हें लगातार पढ़ा जा रहा है इस प्रोग्राम में। बस आपके ईमेल्स पढ़े जाते हैं, आपकी बातें दूर दूर तक पहुंचाई जाती हैं, आपके संदेश पूरी दुनिया तक, जी हाँ अब तो पूरी दुनिया में हम सुने जा सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं, और साथ में आपकी पसंद के सॉन्ग्स भी प्ले होते हैं। तो अपनी मैसेजेस भेजना जारी रखिए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ढेर सारी ईमेल मेरे सामने, और इनमें से ज्यादातर ईमेल्स उनके हैं जिन्होंने एक ईमेल तो भेजा ही है, लेकिन उसके बाद में रिपीट पे रिपीट, मतलब एक नाम के 40-40, 50-50 ईमेल्स भी। तो दोस्तों उसमें होता क्या है ना कि आप ही में से कुछ लोगों के ईमेल्स छूट जाते हैं, और उसके बाद में हमारे वो साथी हमसे खफा हो जाते हैं। तो एक ईमेल काफ़ी है नहीं। आफ्ताब अंसारी जी ने ईमेल किया है, रियाज अंसारी के साथ मिलकर शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अवराज

सिंह। लोहगढ़ ठाकुरावाला गांव से एंड उदयभान पाल साहब। उदयभान पाल साहब का भी ईमेल है, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। सुरेश नारंग जी का ईमेल, इन्होंने भी सॉन्ग की फरमाइश की है, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन सब ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने भी ईमेल किया है। शैलेश कुमार, नीलू शर्मा, पिछले प्रोग्राम अच्छे लगे, आज संडे है तो ये गाना सुना दीजिए जी, पूरी कोशिश करी जाएगी। सारा, पीहू, रोशनी, बबीता, संजीला से गुलफशा दीदी जी को भी ये करती हैं डेडिकेट। गमोइया हरदोई से अरुण कुमार कुशवाहा जी को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गाने की फरमाइश की है। विराज मौर्य जी, पलिया कला जिला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहा हूँ, कार्यक्रम मुझे अच्छा लगता है, इस समय गर्मी की छुट्टी में मौसी के आया हूँ प्रसादपुरवा गांव, किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। ताज मोहम्मद जी, आपका ईमेल पढ़ा जा चुका है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। वारिस अली खान साहब लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त ज्योति मिश्रा को सादर प्रणाम, अर्ज है फेस पर स्माइल की और लाइफ में स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने लिखा है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन एक बार चेक करिएगा वारिस अली साहब, ओके। और भी ढेर सारी ईमेल्स हैं हमारे सामने, ईमेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बार मैं फिर से ये कहूँगी कि हमारे वो दोस्त जो ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल भेज रहे हैं, प्लीज़ एक ईमेल भेजकर थोड़ा सा थम जाइए ताकि सबके मेल्स पढ़े जा सके। आज सुन रहे प्रोग्राम हॉट मेल, आज ज्योति मिश्रा के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो। टाइम हुआ है 2:24 और ठीक 52 सेकेंड्स।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

बजकर 29 मिनट और 7 सेकंड्स। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि आप कितनी शिद्दत से मेल्स करते हैं और एक ही नहीं कई कई मेल्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए। ब्रिजेश सिंह जी ने लिखा है कि गाने की फरमाइश कर रहा हूँ, प्ले कर दीजिए।

जी वारिस अली साहब, आपने कुछ और लिखा था इसके पहले वाले ईमेल में, एक बार चेक करिएगा। ओके, उत्तम कुमार भगत साहब जी ने भी ईमेल किया है। श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत के साथ ईमेल किया है इन्होंने। संजय ढिंगिया, हमारी ईमेल कहाँ गुम हो गई? जी आपकी ईमेल कहीं नहीं गुम हुई है, होता क्या है कि आप और हमारी बाकी श्रोता भी ढेर सारी ईमेल्स कर देते हैं, इसी में कभी कभी नंबर आने में देर लग जाती है। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, बागत बागपत उत्तर प्रदेश से, दिलीप रामेकर जी आपका ईमेल मिल गया है, सिमरन स्वरांजलि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद आपका ईमेल मिला है, आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। प्रोग्राम की इन्होंने फरमाइश की है, प्रोग्राम में इन्होंने गाने की फरमाइश की है कि कोई भी गाना इनमें से आप प्ले कर दीजिए, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, पूरी कोशिश की जाएगी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, इनका भी ईमेल आया है। भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, बड़ी स्वीट सी बात लिखी है कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप ईमेल शामिल करें ना करें, हम तो प्रोग्राम सुनते रहेंगे। बिट्टू गगनेजा जी का ईमेल आया जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, भाई सजेशन तो आपका बिल्कुल सही है बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ। इन्होंने लिखा है कि जो लोग कई ईमेल भेज रहे हैं उनके ईमेल शामिल मत करिए, अब किया जा सकता है लेकिन फिलहाल चलिए मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, एक ईमेल भेजें जिससे कि सबके ईमेल्स शामिल हो सके। बसंत कुमार सिन्हा शॉ का ईमेल है, दमदम एयरपोर्ट कैलकाटा से बसंत, रेखा देवी सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने, अन्विका बेबी, और लिखते हैं कि नाम शामिल करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया दीदी, और राइट बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल भेजने के लिए। फिलहाल आप ही में से किसी की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. Khush raho, khushiyan baato. Ye maine keh rahi hai, keh rahe hain.

नारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। विजय मोहबिया जी का ईमेल है, लिख रहे हैं कि हमारे मित्र हमसे रुष्ट हैं, उनके लिए गाना सुना दीजिए जी, पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन अच्छा ये रहेगा ना, पेंटर बाबू विजय सिंह महोबिया रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, आप अपने दोस्त को फोन करिए या फिर उनके घर जाकर के बैठ जाइए, उनसे जाकर के कहिए कि भाई ये जो दोस्ती है ना, छोटी छोटी सी बातों में नहीं टूटनी चाहिए। तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते हैं, भिगा देते हैं पलकों को, मगर रोने नहीं देते हैं। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपने, वो बीते पल तुमसे मुझे जुदा होने नहीं देते हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, सतीश अनेजा जी। लीजिए जी, आपका ईमेल फिर से शामिल हो गया, हैप्पी। पहले भी शामिल हुआ था सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी, चंडीगढ़ सिटी से। एमके राज जी, मनीष कुमार राज, हरवा जिला लखीमपुर खीरी भानपुर से। हम हैं एफएम रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने, चलती आवाज उड़ती है धूल, हमारे इस ईमेल को पढ़ना ना जाना भूल, आनी बनी आ गया, रेडियो पर ज्योति मैम का नाम छा गया। ओके नाम इस प्रकार है, शिवम, शिवानी, राधा रानी, अनुराधा के साथ लक्ष्मी, मोहम्मद शादा, विलेज बेलाई, संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? मूवी का नाम बताया है और फिल्म के गाने की फरमाइश की है। कमलकांत गुप्ता जी, दीपा रिमझिम गुप्ता, ये दोनों पिपरिया से, समडील नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी, कब्रु निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। रोजी डी कैस्ट्रो, जॉन डी कैस्ट्रो, पॉल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन सब ने भी मिल करके ईमेल किया है जनकपुरी सहारनपुर से। ब्रिजेश सिंह जी, आपका ईमेल प्ले, आपका ईमेल भी पढ़ा जा चुका है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये खूबसूरत गाना सुनाते हैं। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: संदीप मक्कड़ जी का ईमेल है मेरे सामने। भरत मक्कड़, कमल साहनी और कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर पंजाब से। अजमत अली साहब ने भी अपना कीमती वक्त दिया है, जिला सीतापुर से। ओके, रहने वाले जिला

तवपुर के, लेकिन अभी दिल्ली से ईमेल कर रहे हैं। गाने की फरमाइश की है जी, कोशिश की जाएगी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी, लेकिन जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी अपनी घड़ियों में 2:47 और 33 सेकंड्स हो चुके हैं, तो कितने गाने हम प्ले कर पाते हैं, लेट्स सी। राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू का भी ईमेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। बोधराज खुरवाल जी का ईमेल आया, संदीप मक्कड़ और गोविंद परमार। गोविंद परमार जी ने गांधीनगर गुजरात से ईमेल किया है। जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष एंड दीपल। बाबू अंसारी जी का भी ईमेल है, गाना डेडिकेट करना चाहते हैं रेडियो दोस्त कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देपन, फैज अंसारी, गौश मोहम्मद अंसारी जी को। और ईमेल इन्होंने कहाँ से किया है? ओके, इन्होंने ईमेल किया है देवकली अहमदपुर बाजार 12 बंकी से। नमस्ते, मैं गौन नटोही जिला प्रतापगढ़ से हूँ। मैम जी, आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम आपने नहीं लिखा, तेज भान जी, आपकी ईमेल आईडी से मैं ये गेस कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल के लिए। आरिफ खान, सोनू खान, राजू केवट, रवि मिश्री, विनायक तिवारी, इन सब के भी ईमेल आए। खनौदी शहडोल MP से। इनके अलावा शाहरुन नूर अंसारी, बोझराज खोरवाल, जावेद अख्तर, दिलावर खान, कमलकांत गुप्ता, रविंद्र मोहन दास और जितेंद्र नामदेव। जितेंद्र नामदेव के अलावा जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप में से किसी के ईमेल्स, किसी के नाम छूटने ना पाए। रियासत हुसैन साहब का ईमेल है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, हरजिंदर शिंदा, हीरा मणि वर्मा, सतीश अनेजा जी, राजकुमार डूडी, दिग्दर्शन गौड़ जी, अक्रम हुसैन, प्रिंस सदानंद मंडूरकर, सतीश अनेजा, विजय सिंह, रमाकांत सिंह, मूसा शेख, संजय ढिंगिया, मुकेश कश्यप, मोहम्मद सादिक, रविंद्र मोहन दास, उत्तम कुमार भगत, जय खोरवाल, इन सबके भी ईमेल हमारे तक पहुंचे थे। तो जी, कोशिश पूरी की गई कि आप में से ज़्यादातर लोगों के ईमेल्स पढ़ लिए जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वक्त इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए वक्त के सामने तो हम सभी मजबूर हैं, है ना। तो चलिए, अब आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम नरसिम्हा। फरमाइश करने वाले हैं आप ही में से हमारे एक पुराने दोस्त।

दो बजकर 58 मिनट और ठीक 3 सेकंड्स हो चुके हैं और ये वो टाइम है जबकि अब प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना ही होगा. रविंद्र मोहन दास, नीलू शर्मा, वारिस अली खान जी, मोहसिन रजा जी, मूसा शेख जी, पूरी कोशिश की गई है कि आप में से किसी के भी नाम मिस ना हो. रमेश चौधरी जी का भी ईमेल आया है बिल्कुल अभी अभी, जोधपुर राजस्थान से. रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी एंड हिमाक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने अपना कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. लेकिन अब ज्योति को प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा. सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी रेनबो के पिटारी में बहुत कुछ है आपके लिए खास.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योगा सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए DGP ने बताया कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किया है, जिससे आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। प्रदेश सरकार जुलाई माह में राज्य के सभी जनपदों में निपुण संकल्प कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। प्रदेश के 33 केंद्रों पर 6 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक विशेषज्ञ एवं जिला स्तरीय टीमों के सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में

देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, साथ ही हर गरीब को प्राथमिकता दी जा रही है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। बलिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। अम्बेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार द्वारा युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। असम में कल हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में प्रदेश के दो वीर भी शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह बागपत के कंडेरा गांव के थे, जबकि सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के निवासी थे। दोनों के निधन से इलाके में शोक की लहर है। असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 4 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

And the winner is... या फिर द अवार्ड गोज टू, ये जो शब्द होते हैं कितने अच्छे लगते हैं ना, कितना अच्छा लगता है जब कभी आपका या आपके किसी अपने का नाम किसी ऐसे अवार्ड फंक्शन में लिया जाता है और एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कंग्रेचुलेशंस। लेकिन भाई हमेशा ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, कई बार हमारे ख्वाब ख्वाब ही बन के रह जाते हैं और स्कूल कॉलेज के बाद हमें अवार्ड्स मिल ही नहीं पाते हैं। बट नेवर माइंड, हम है ना, हम का मतलब हम आपके अपने दोस्त रेडियो एफएम रेनबो। तो भाई कहने को तो हर साल कितने सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिल्मों के अवार्ड्स, खेलों के अवार्ड्स, संगीत के अवार्ड्स, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अवार्ड्स जो कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपके घर में भी किसी को या शायद आपको भी मिल ही जाएगा। Yes, friends, 3:11 और ठीक 40 सेकंड्स, आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ इन द प्रोग्राम में सतरंगी और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा अवार्ड शो जिसमें अवार्ड के हकदार आप भी होंगे। अच्छा सोच करके देखिए, अगर हमारी अवार्ड आदतों का अवार्ड फंक्शन होने लगे तो क्या आप विनर नहीं बन जाएंगे? कौन जीतेगा ओवरथिंकिंग रत्न अवार्ड, फ्रिज इंस्पेक्टर जनरल अवार्ड, स्क्रीनशॉट कलेक्टर अवार्ड, या फिर बस 5 मिनट और अवार्ड, या एक रील और प्लीज अवार्ड?

0: आज की सतरंगी दुनिया में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी इन्हीं छोटी छोटी आदतों को जिन्हें हम कभी छोड़ना चाहते हैं, कभी छुपाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। और मजेदार बात, ये ज्यादातर आदतें बस आपकी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारी आदतों के अवार्ड फंक्शन में। कान लगाकर सुनिएगा, कौन जाने जब मैं कहूं इस बार की द अवार्ड गोज टू, तो आप अपना ही नाम ले लें।
1: लेटेस्ट अपडेट
0: 3:12 हो चुके हैं और साथ में ये लीजिए 3:13 आप हैं ज्योति के साथ, और ज्योति लेकर आई है आपके लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग वाली बात। तो भाई गाना मैं चलाना चाह रही थी आपके लिए ये वाला, सो हियर वी गो।

जी अवार्ड्स की बात मैं कर रही थी आपसे तो जब ये विनर वाली बात हो रही है तो सबसे पहले हम देते हैं

तो जी अवार्ड्स की बात मैं कर रही थी आपसे तो जब ये विनर वाली बात हो रही है तो सबसे पहले हम देते हैं ओवरथिंकिंग रत्न अवार्ड आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में ये किसे जाना चाहिए आप खुद ही सोच लीजिए और फिर फोन करके उनके इस अवार्ड को सेलिब्रेट भी कर लीजिए तो भाई ये अवार्ड जाता है उन लोगों को जो कि रात को सोने के लिए जाते हैं और अचानक उन्हें 4, 6, 8, 10 साल पुरानी कोई मेमोरी याद आ जाती है और फिर शुरू होता है एनालिसिस मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था सब क्या सोच रहे होंगे एक कहीं मेरी इमेज तो खराब नहीं हो गई और बस घंटों सोच सोच के कभी एम्बेरस्ड होना कभी दुखी होना तो अगर आप भी कुछ इसी तरह के हैं तो ओवरथिंकिंग का रत्न अवार्ड जाता है बस आपको वैसे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट बताओ हमारा दिमाग नेगेटिव और एम्बेरसिंग एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तुलना में कुछ ज़्यादा देर तक याद रखता है तो कुछ हद तक इट्स नॉर्मल इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में तो अगर आपको भी कई बार पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं आप सोचते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं ऐसा करना था कि नहीं ओ माई गॉड तो बधाई हो आप ऑफिशियली ह्यूमन है बिल्कुल नॉर्मल है ये बस इसे आउट ऑफ कंट्रोल जाने मत दीजिएगा क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकिंग इस बात का सबूत होने लग जाती है कि शायद कहीं आपको वैलिडेशन की अटेंशन की कमी हो रही है तो ज़रूर ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करिए जो हो गया सो हो गया उसे छोड़िए और आगे बढ़ जाइए बट यस उससे पहले खुद को ये वाला अवार्ड तो दे लीजिए

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

एंड द अवार्ड गोज टू, कौन सा अवार्ड है? अब बारी हो गई, बस 5 मिनट और अवार्ड. ये अवार्ड तो 100% आपके घर में किसी ना किसी को जरूर मिल जाएगा. सोच कर देखिए किसको मिलना चाहिए. सुबह सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है, टाइम देखा जाता है, बस 5 मिनट और. ये एक्चुअली एक बहुत ही कॉमन हैबिट है. बस इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि जागने के बाद ब्रेन को पूरी तरह एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब ये बल्ब नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया, ऐसे नहीं होता है. एक्टिव होने का खुद का टाइम लेता है ब्रेन, और इसीलिए आपके मुंह से निकलता है बस 5 मिनट और. लेकिन कभी कभी ब्रेन को एक हैबिट सी हो जाती है कि जब कोई जगाएगा तो फिर हम थोड़ा टाइम और बाई करेंगे, फिर थोड़ा और, अरे ये 5 मिनट कब घंटों में बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता. तो अगर ये कुछ मिनट्स की बात है तब तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा है तब तो 100% द अवार्ड गोज टू यू. नीलू शर्मा का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ईमेल है मेरे सामने. थैंक यू सो मच नीलू जी. इन्होंने लिखा है, हमारे लिए सबसे कीमती अवार्ड आप हो. थैंक यू. हमारे लिए सबसे कीमती अवार्ड आप सब हमारे लिसनर्स हैं. ये लिख रही हैं, मुझे जब कभी गुस्सा आता है तो आपकी आवाज़ सुनकर और अपनी दोस्त पीहू से बात करके हम सब भूल जाते हैं. पीहू कौन है ये भी इन्होंने बताया, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पीहू की आइडेंटिटी रिवील किए जाने पर उनको कितना अच्छा लगेगा. तो नीलू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए. दोस्तों आप भी ईमेल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके घर में किनको ये अवार्ड मिलने चाहिए, स्पेशली ये वाला 5 मिनट और प्लीज. कितना भी मम्मी कह ले वेक अप वेक अप वेक अप, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: बजकर 31 मिनट और ठीक 54 सेकेंड्स आप है ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम 17।

यस यस यस एक बार फिर आप सबको विनर बनने का मौका मिल रहा है आज की शतरंगी दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से तो अजीब हम सभी हैं, थोड़ी थोड़ी वियर्ड टाइप की हैबिट्स तो हम सभी के होते हैं। तो चलिए आज का अवार्ड खुद को ही दे लेते हैं या फिर किसी अपने को दे लेते हैं। तो सोचिए सोचिए और मुझे बताइए कि अगर आपकी आदतों का कोई अवार्ड फंक्शन हो तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा, ओवर थिंकिंग वाला, 5 मिनट और वाला, फ्रिज के इंस्पेक्शन वाला, या फिर कोई और। जल्दी से सोचिए और ईमेल करके मुझे बताइए। वैसे एक और बड़ी कॉमन सी हैबिट होती है, फोन अनलॉक करके भूल जाने वाली हैबिट। तो अगर आपकी भी यही वाली हैबिट है ना, तो फिर मैं आपको देती हूँ फोन अनलॉक करके भूल जाने वाला अवार्ड। होता क्या है कि हमने फ़ोन उठाया होता है किसी खास काम के लिए, लेकिन उसे अनलॉक करते हैं, स्क्रीन देखते हैं, उसके बाद में ये वाला सोशल मीडिया ऐप, वो वाला सोशल मीडिया ऐप, ये चेक किया, वो चेक किया, और अच्छे खासे टाइम के बाद में याद आता है मैंने तो इसलिए फ़ोन उठाया था। तो कभी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, आप अकेले नहीं हैं। ये बड़ी कॉमन सी लेकिन वियर्ड सी हैबिट है। होता क्या है कि हमारा ध्यान कई चीज़ों के बीच घूमता रहता है, और स्पेशली जब से हम फ़ोन से इतना कनेक्टेड रहने लग गए हैं, तो होता ये है कि हमारी ब्रेन को जो उनका ओरिजिनल काम था उसे याद करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, और ये प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मेमोरी की नहीं। एंड यस, इसी से रिलेटेड यानी फोन से रिलेटेड एक और वियर्ड से हैबिट, नोटिफिकेशन चेकर अवार्ड भी आपको मिल सकता है। कभी कभी होता है कि फोन रखा है

ना वाइब्रेट हुआ ना नोटिफिकेशन आया, लेकिन फिर भी बेचैनी सी होती है कि फोन उठाकर देख ले कहीं कुछ इम्पोर्टेंट तो मिस नहीं हो गया। होता है ये कि हमारे ब्रेन को नोटिफिकेशन से ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी एक्साइट करती है और इसीलिए हम बार बार अपने फोन को हाथ में उठा लेते हैं। तो भाई ये वाला अवार्ड आपको मिल सकता है क्या, सोच करके देखिएगा। एंड एक ये वाला, किसी को आपने अगर मैसेज भेज दिया तो उसके बाद में फोन ले करके बस उसे घूरे जा रहे और अगले ने अगर रीड करके उसके बाद में आपको रिप्लाई नहीं किया तब तो बस एंजाइटी का हाल पूछे ही मत। तो ये वाला वर्ड तो नहीं कहीं आपको मिलने वाला। सोचिए और मुझे जल्दी से बताइए कि आपकी कौन सी वो वियर्ड सी हैबिट है जिसे अभी तक आप सोचते थे कि वाकई बड़ी वियर्ड है, लेकिन आज के प्रोग्राम सुनकर के आपको लगा कि इस पर भी आपको अवार्ड दिया जा सकता है। मतलब इतने भी अजीब नहीं है हम।

ढेर सारी ईमेल से हमारे सामने गुलफशा सिद्दीकी लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून। मैं अपने हस्बैंड को अवार्ड देना चाहूंगी, जब भी उनसे कोई काम बोलो तो वो हमसे कहते हैं सब्र करो बाबू कर दूंगा, और वो कई काम एक बार कहने से कर ही नहीं सकते जब तक हम उनके पीछे ना पड़ जाएं। तो भाई ये सब्र करो बाबू अवार्ड भी ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुलफशा जी बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। नीलू शर्मा ने लिखा है कि पीहू आपको पसंद करती हैं। ओके

तो जी हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं पीहू तो उनको और आपको नीलू शर्मा जी ढेर सारा प्यार ज्योति की तरफ से दिल तक मीनाक्षी इंडियन लिख रही हैं कि अलार्म वाला मतलब ये 5 मिनट और वो वाला अवार्ड जाता है मेरी छोटी बहन सृष्टि को क्योंकि वो अलार्म लगाए तो बार बार अलार्म को स्नूज करके बोलती है 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और अगर फैमिली में किसी से कह दिया कि मुझे इस टाइम जगा देना तो जगाने पर भी यही होता है कि 5 मिनट और 5 मिनट कब 15 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता और बाद में बोलती है मुझे जगाया क्यों नहीं भाई साहब इतनी कॉमन ये प्रॉब्लम है ना हर घर में एक ना एक इंसान तो मिल ही जाएगा जिसे ये समस्या है अच्छा एक बात बताइए कभी इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट मतलब बहस जीती आपने इफ यस तो इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट चैंपियन अवार्ड जाता है आपको ये अकेले रहने पर सोच करके कि इस बार उसने मुझसे ये कहा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा या दूंगी या अब की बार वो मुझसे शुरुआत तो करे मैंने पूरी तैयारी कर ली है नहाते समय बहस दिमाग में किसी को शानदार जवाब देना और ऐसी ऐसी बातें कहना जो एक्चुअली आपने कभी बोली ही नहीं अगर आप भी रिहर्स करते हैं आर्ग्यूमेंट यानी बहस को जीतने के लिए तो गुड न्यूज आप नॉर्मल है साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं मेंटल स्टिमुलेशन हमारा दिमाग कई बार फ्यूचर्स जो सिचुएशंस होती हैं उनको रिहर्स करता है मतलब आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है नहीं है मतलब वाकई ना ना ना

क्यूट सा मैसेज आ गया है, इन्होंने लिखा है कि जब आप लोगों की कार्यक्रम सुनती हूँ काम करते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है और ये अवार्ड आप लोगों की मेहनत को जाता है। जब हम लोगों को जानकारियां देते रहते हो, एंटरटेन करते रहते हो। इन्होंने अपनी प्यारी दोस्त पीहू का भी जिक्र यहाँ पर किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नीलू जी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, ओवर थिंकिंग वाला? ये बहस इमेजिनेशन में करने वाला, बार बार फोन चेक करने वाला या 5 मिनट और वाला अवार्ड? मुझे जल्दी से बताइए, नॉमिनेट करिए खुद को या फिर अपने घर वालों को। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अवार्ड एक्चुअली मेरी निगाहों में आया, दैट इज गूगल डॉक्टर अवार्ड। हल्का सा सरदर्द हुआ, सर्च किया और 10 मिनट बाद ऐसा लगा कि भाई पूरी मेडिकल साइंस समझ गए। अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर तक जा करके उन्हें बताते हैं कि मेरे सिम्टम्स ये हैं और मैंने सर्च ये किया था तो मेरे ख्याल से मुझे ये ये ये ये ये बीमारी है और आप मुझे ये मेडिसिन दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, डॉक्टर्स को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। और देखा ये भी जाता है कई बार कि आप ये जो सर्च करते हैं ना, तो आपकी सिम्टम्स, आपकी परेशानी से ज़्यादा, आपकी तकलीफ से ज़्यादा ये जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं ना, ये आपको डरा देते हैं, ये आपको परेशान करते हैं, ये आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं कि आपको लगता है ओ माय गॉड, एक हल्की सी चीख आई तो कहीं ये तो नहीं हो गया। तो क्या आप भी अपने हर सिम्टम को इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं? इफ यस, तो गूगल डॉक्टर अवार्ड गोज टू यू। Yes, one more online card, Maharathi Award. सच बताइएगा, ऑनलाइन शॉपिंग में आप कितना शॉप करते हैं और कितनी आइटम्स को शॉपिंग कार्ट में यूं ही छोड़कर रख देते हैं? मैं अभी अपनी कार्ट को चेक करूं तो 7-8 तो मेरे में भी मिल जाएंगे। होता क्या है कि आप जब इन आइटम्स को देखते हैं तो आपका जो डोपामीन होता है वो बढ़ता है, बड़ा मज़ा आता है। आप कार्ट में डालते हैं लेकिन जहां पेमेंट की बारी आती है वहां आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है कि क्या पेमेंट करना ठीक रहेगा, इतना पैसा खर्च करना ठीक रहेगा। लेकिन जब हम अपना टाइम खर्च कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये सौदा खरा खरा होने वाला है या फिर नहीं।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: लीजिए जी, टाइम कितनी जल्दी कट जाता है आपके साथ। ऐसे थोड़ी ना कहती हूँ मैं हमेशा हर बार कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आया है और लिख रहे हैं कि अगर मुझको कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए हर किसी से दोस्ती कर लेने का अवार्ड, क्योंकि मैं बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ। कितनी अच्छी बात है गुलफशा जी, आज के वक्त जबकि इंसान हर चीज़ को नफ़े और नुकसान में तोलने लगा है, ऐसे में अगर आप खुले दिल से दोस्ती करती हैं तो ये तो वाकई लिटरली अवार्ड पाने की बात है। बस ऐसी रहिएगा, कभी मत बदलिएगा। तो दोस्तों 3:55 और 32 सेकंड्स हो गए हैं, श्वेता आ गई है बिल्कुल तैयार होकर अपनी यूथफुल वॉइस में यूथ वेव प्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद भी आपके साथ रहने वाली है। लेकिन फिलहाल ज्योति को तो लेनी होगी आपसे इजाज़त। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, हम सब अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं। कोई ओवरथिंक करता है, कोई हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करता है, तो कोई बस यूं ही दिमाग में ही लड़ाई झगड़े करके खुद को विनर साबित कर देता है। लेकिन इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, कि हम परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ तो हम सब में ऐसा है जो कि हमको इसलिए खूबसूरत बनाता है क्योंकि हमारे इम्परफेक्शंस बहुत ब्यूटीफुल है। हम थोड़े से भुलक्कड़ हैं, थोड़े से भावुक हैं, थोड़े से अजीब हैं, और शायद इसीलिए हम इतने यूनिक हैं, है ना। तो बस इसी नोट के साथ ज्योति चाहती है आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द FM रेनबो पर ही। सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए FM रेनबो से, जिस पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी व गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए और हर काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने मॉनसून से पहले की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और उन्हें समय से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में 150 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति में बैठक शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत में मंदिर निर्माण और दान प्रकरण की जांच को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने बताया कि सरकार ने एक सप्ताह में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान महादान का पुनीत कार्य किसी को नया जीवन प्रदान करने के साथ ही मानवता की सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। इस मौके पर

फरुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों में रक्तदान करने की अपील की। वहीं कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जिला अस्पताल में स्वेच्छित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। आजमगढ़ में के जिले चिकित्सा में नवनिर्मित 10 बेड वाले ब्लड कलेक्शन रूम में रक्तदान शिविर आयोजित कर आज से उसकी शुरुआत की गई। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को है। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंट नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए DGP ने बताया कि अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।

हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 जून संडे और टाइम हो रहा है 4:05। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस घंटे आप बने रहेंगे श्वेता के साथ। जी हाँ, तो शुरू हो गया है प्रोग्राम यूथ वेव। आपके साथ साझा करूंगी मैं आज कुछ बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन और उसके साथ ही साथ आपको सुनाऊंगी बेहतरीन सॉन्ग्स। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इंफोटेनमेंट की इस खूबसूरत सफर के लिए। शुरू करते हैं एक एनर्जेटिक ट्रैक के साथ फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबोज़ घंटे श्वेता के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: शहर आपका, धुन आपकी।

हेलो हेलो, 4:15 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो आज के डिजिटल जमाने में बेहद जरूरी है। दोस्तों कहते हैं मशीन को दिल नहीं मिला, पर इंसान को एक ऐसा दोस्त मिल गया जो थकता नहीं है, जज भी नहीं करता और हर वक्त उसके लिए मौजूद रहता है। उसका नाम है AI। यस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं या सोशल मीडिया पर हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है। भाई, पेन से पहले तो लोग याददाश्त पर जीते थे, कंप्यूटर के बाद लोग दिमाग पर जीते थे, और अब AI के बाद लोग सवाल पूछने की कला पर जिएंगे। सच में AI में ना सही सवाल पूछना ही एक्चुअल स्किल है। तो फिर कोई मेहनत की तो काम है ही नहीं। यू जस्ट नीड टू टाइप एंड गिव द AI अ राइट प्रॉम्प्ट और द राइट प्रॉम्प्ट्स। सो बात होगी इसी टॉपिक पर और इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग बातें, लाइक AI एंड साइबर सिक्योरिटी। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए इस घंटे श्वेता के साथ 100.7 FM, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हेलो दोस्तों, 4:23 हुए हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव श्वेता राजवंशी के साथ।

प्रोग्राम तो देखिए जारी रहेगा और बात चल रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी की। फिलहाल मैंने इंट्रो दिया था, मैंने आपसे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों और यू नो ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपको सुनना क्यों चाहिए इस एपिसोड को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4:25 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और फिर 4:30 पर हम फिर मिलेंगे और बात होगी जारी रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। पर उससे पहले अगर मैं एक सिंपल सवाल में आपसे पूछूं कि AI होता क्या है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? सोचिए थोड़ा। AI, ओके, सुना तो सभी ने है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। AI का मतलब है मशीन्स या कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बनाना कि वो कुछ ऐसे काम कर सके जो नॉर्मली ह्यूमंस करते हैं, राइट? जैसे सोचना, सीखना, सिखाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजंस लेना, ठीक है? तो इस बारे में बात होती रहेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे प्रोग्राम यूथ वेव में। टिल देन, एंजॉय।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM।
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है स्टाफ कार चालक ग्रेड 2 के पद के लिए आवेदन। पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के लिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट cvc.gov.in/vacancies.html। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सत्र 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन। पाठ्यक्रम है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 40 सीटें, अवधि रहेगी 2 वर्ष। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 40 सीटें, अवधि रहेगी 1 वर्ष। डेंटल लैब टेक्नीशियन 48 सीटें, पाठ्यक्रम की अवधि रहेगी 2 वर्ष। और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 144 सीटें, अवधि रहेगी 1 वर्ष। रिक्त सीटों की जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com। टाटा मेमोरियल सेंटर निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 19 जून 2026। सैनिक स्कूल अमरावती नगर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मैस प्रबंधक अवर श्रेणी लिपिक LDC और चिकित्सा अधिकारी अंशकालिक। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए देखिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर की वेबसाइट sainikschoolamravatinagar.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट गुजरात आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा फिजिसिस्ट 2 पद, नैदानिक मनोवैज्ञानिक 1 पद और बाल मनोवैज्ञानिक 1 पद। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आवेदक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsrajkot.edu.in। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। PGT कंप्यूटर विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान, आर्ट मास्टर और प्रयोगशाला सहायक भौतिकी। अनिवार्य और वांछनीय योग्यता। आवेदन करने की प्रक्रिया

0: पदों की संख्या और आरक्षण तथा वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschooljhansi.com। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय आवेदन कर रहा है इन विभागों और पदों के लिए आवेदन। अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य, संस्कृति और मीडिया अध्ययन विभाग में सह आचार्य तथा अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम, शर्तें, सेवाएं एवं अन्य विवरण के लिए देखिए राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वेलकम बैक दोस्तों, 4:30 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और श्वेता है आपके साथ। तो अब से कुछ ही देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि एआई का मतलब होता है जब आप मशीन या कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बना दें कि वो कुछ ऐसे ही काम करने लगे जो डेली या नॉर्मली तो नॉर्मली ढंग से ह्यूमंस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ थिंकिंग कैपेबिलिटी, जैसे कि सोचना, सीखना या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो जब हम देखते हैं ना खूब ढेर सारी वीडियोस अपने फ़ोन पे, आप किसी भी ऐप के थ्रू जब वीडियोस देखते हैं तो आपने अक्सर पाया होगा कि सिमिलर वीडियोस ही ना आपके फीड में सजेस्ट होने लगती हैं। कि आपने सोचा है ये कैसे आ रहे हैं, अभी तो मैंने ये सोचा था, या तो मैंने कहीं पे गूगल पे सर्च किया था और मैंने कहीं पे इट कैन बी रिलेटेड टू शॉपिंग या फिर कोई भी सर्च इंजन के थ्रू आपको सिमिलर फीड पे चीज़ें आने लगती हैं, राइट? तो ये काम होता है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये कमाल होता है एआई का। वैसे ही जब हम गूगल मैप्स के थ्रू शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं या वो बताता है, तो उसके पीछे भी एआई का ही कमाल होता है दोस्तों। और बहुत से लोग वॉइस असिस्टेंट्स भी यूज करते होंगे, जैसे कि सिरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। इन सबकी भी मदद जो है एआई ही करता है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि एआई की मदद से ही ये काम करते हैं। और अगर हम आज के दौर पे बात करें तो भाई स्टूडेंट्स भी एआई की मदद से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट वो कई तरीके की लैंग्वेजेस सीख पा रहे हैं। आप जानते होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, आजकल बहुत ट्रेंड है सर्टेन कंट्री के सर्टेन लैंग्वेजेस, बिकॉज बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जो पॉप म्यूजिक या फिर किसी प्रोग्राम्स के थ्रू, कल्चरल इवेंट के थ्रू बहुत फेमस हो रहे हैं। तो लोगों का स्पेशली बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे भी सीखना है, फॉर एग्जांपल कोरियन, जापानीज या फिर आप कह लीजिए हिंदी या संस्कृत। तो बच्चे एआई के थ्रू ये सारी लैंग्वेजेस बहुत ईजिली सीख रहे हैं, इनफैक्ट रिसर्च पेपर्स भी पढ़े जा रहे हैं एआई की मदद से, जो पहले बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था लोगों को ढूंढ पाना या उस रिसर्च पेपर तक पहुंच पाना। तो थ्रू द हेल्प ऑफ एआई हम कई ऐसे चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं जो हमारे अप्रोच से बाहर हैं, राइट? और इसी की तरह कोडिंग प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं आज के लोग, और साथ ही साथ एआई की हेल्प से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत से कह सकते हैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो बहुत आसान तरीके से बच्चे समझ रहे हैं इनके थ्रू, पढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट बच्चे ही नहीं, प्रोफेसर्स, टीचर्स भी एआई टूल की हेल्प से बहुत ढेर सारी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, बनाते हैं। इनफैक्ट वो कह सकते हैं कि जैसे कि क्विजेस, प्रेजेंटेशंस या फिर स्टडी मटेरियल, यस, तो ये बहुत ही मिनटों में हो जाता है। यू जस्ट नीड टू गिव सम राइट प्रॉम्प्ट्स और वो आपके लिए बहुत ही जल्द आपको एक

सकते हैं रेडीमेड एंड जैसे कि विद इन 2 to 5 minutes आपको पूरा का पूरा मैटर्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में एकदम कैटेगोरिकली मिल जाता है राइट तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल. इस बारे में और भी बात होती रहेगी, बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए. बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर, प्रोग्राम यूथ वेव सुन रहे हैं आप, श्वेता राजवंशी है आपके साथ.

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, 4:40 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैंने आपको बताया कि कैसे ये मदद करता है बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ऐसे ही मैंने जहाँ भी एजुकेशन सेक्टर में इसके योगदान के बारे में बात की, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी AI डॉक्टर्स को बहुत हेल्प कर रहा है, जैसे कि डिजीज डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। और इनफैक्ट नॉट ओनली वन सेक्टर, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। इनफैक्ट अभी तो मैंने ये देखा है कि AI अब घर का इंटीरियर डिज़ाइन भी कर रहा है। मतलब आप सीधे एक फ़ोटो क्लिक करके डालिए और आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए एंड वो आपको परफेक्ट आपको ऑप्शंस देता है डिज़ाइनिंग के। लेकिन देखिए, ये सब तो चीज़ें चलती ही रहेंगी। आपको क्या याद रखना है कि AI जो है वो सिर्फ एक टूल है, टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन टूल है। इसका सही और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए हर टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। बातें तो देखिए चलती ही रहेंगी। मैं आज आपके साथ बनी रहूँगी रात 8 बजे तक, ओनली ऑन 100.7 FM। और हम इस वक्त लेते हैं एक क्विक म्यूजिकल ब्रेक। Stay tuned and keep listening to 100.7 FM, Shweta ke saath.

0: 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शहर आपका, धुन आपकी।

दोस्तों 4:50 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, अब बने हैं श्वेता के साथ। तो अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और मैंने आपसे बताया कि AI एक टूल है और इसे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बेहतर ढंग से यूज करें। अब उसके कई रीजंस भी हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इसके बेनिफिट्स हैं तो दूसरी तरफ इसके काफी चैलेंजेस भी हैं। जैसे AI कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिले उसको वेरीफाई जरूर करें। ऐसे ही नहीं आप उसको एक दूसरे को भेजें या फॉरवर्ड करने लगे, वेरीफाई ज़रूर करिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आजकल AI की मदद से ये देखा गया है कि फेक फोटोज़ या फेक वीडियोज़, इनफैक्ट फेक वॉइसेस भी बनाई जा सकती हैं, तो ज़रा सावधान रहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की चीज़ों को हम डीप फेक्स कहते हैं, और इसीलिए किसी भी शॉकिंग या अनयूजुअल कंटेंट को जब आप रिसीव करते हैं, देखते हैं, तो उसे बिना चेक किए शेयर मत करिए। साथ ही साथ बहुत ध्यान रखिए कि अननोन मैसेजेस, अननोन लिंक्स या कोई भी ऐसा अटैचमेंट जो आता है मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप में कहीं पे भी, तो आप उसे क्लिक करने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। इनफैक्ट कई बैंक्स के एडवर्टीजमेंट्स एंड आपके पास पक्का मेल्स भी आते होंगे, इन्फॉर्मेशंस भी आती होंगी कि आप अननेसेसरी कोई भी अननोन लिंक्स एंड अटैचमेंट्स पर क्लिक ना करें। और साथ ही साथ ज़रूर ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना UPI पिन, OTP मतलब कि वन टाइम पासवर्ड या बैंक डिटेल्स किसी के साथ भी ऑनलाइन शेयर ना करें। चाहे वो पूछे आपसे, पर आप शेयर मत करिए, सोच समझ के अपने काम करिए। अगर आप किसी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं इन केस, तो तुरंत आपको भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि ये जो पोर्टल वेबसाइट पे आप रीच आउट कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ज़रूर सतर्क रहिए और अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि इसी में ही, सावधानी में ही हमारी भलाई है। तो भाई भलाई तो हमारे गाने सुनने में भी है इस वक्त। भाई हम बैठे हैं आपको बेहतरीन गाने सुनाने के लिए, तो बने रहिए श्वेता राजवंशी के साथ। आप सुन रहे हैं यूथ वेव ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों जब बात हो रही है AI की, then how can I forget to talk about cyber security? जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स या ऑनलाइन अकाउंट जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को साइबर क्रिमिनल से बचाना। और देखिए, बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम घर पर लॉक लगाते हैं, एकदम ताला लगा के रखते हैं कि भाई हमारी पर्सनल चीज़ों पे कोई भी हमें दखलंदाजी पसंद नहीं है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी साइबर सिक्योरिटी हमारी सेफ्टी का लॉक है। सेफ रहें, अवेयर रहें, आज की डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और टेक्नोलॉजी तो देखिए एक पावरफुल टूल है, अगर हम इसे वाइजली यूज करें तो ये लर्निंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के कई डोर्स खोल देता है, हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटीज ला के रख देता है। पर आज AI के साथ साथ हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए अपनी साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्पेशली बैंक रिलेटेड डिटेल्स मत शेयर करें। पैन कार्ड, ये सब आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी किसी भी चीज़ पे पानी है, जैसे कि आपको कि कंटिन्यूसली भेज रहा है कि मेरे साथ शेयर करें कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स या ID, तो आप ज़रूर वहाँ जाके पता लगाएं। ऐसे ही नहीं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी इंफॉर्मेशन का कोई कैसे यूज कर सकता है। आज की दुनिया में आप आंख बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते, स्पेशली रिलेटेड टू योर

मनी और योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट? तो देखिए ये बातें होती रहेंगी और आप बने रहेंगे मेरे साथ. देखिए मुझे और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करनी थी, पर कोई बात नहीं. यूथ वेव लिसनर्स, याद रखिए फ्यूचर उनका होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, और मैं आपको स्मार्ट बनाती रहूँगी. और साथ ही साथ स्मार्ट यूज़र बनना मैं कहूँगी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्मार्ट टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होना. इस वक्त इतनी तेज़ी से जो अपग्रेड हो रही है, तो फिर आपका काम है कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग. इसी पॉजिटिव वाइब के साथ मैं आरजे श्वेता राजवंशी वाइंड अप करती हूँ प्रोग्राम यूथ वेव को. आपसे कुछ ही देर में फिर से मिलूंगी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो श्वेता के साथ.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारत की सोच का प्रतीक थे, जिन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान और मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पर कर पार कर के भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। वहीं देश में सड़कों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी व गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए और हर काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने मानसून से पहले की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और उन्हें समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने बताया कि अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अपराधियों में कानून का भय बड़ा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बातचीत कर मंदिर निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गठित एसआईटी की सराहना करते हुए सरकार की तत्परता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल

है, सरकार ने एसआईटी से एक सप्ताह की प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में इस निर्णय में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,95,83,000 रुपए से अधिक की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। फर्रुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया संवाद किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में जनता चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
2: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को

0: वो जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इंपोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से वह है।
1: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं, जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं।
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है, और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं, तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है, और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया है?
0: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी, और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जा करके कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है, और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए, और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के, भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आ रही। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो SP गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के है। इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती

0: सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
7: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
6: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
7: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
8: शहर आपका, धुन आपकी।

दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एफएम टॉप 10। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका, जिसे आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 एफएम मेगा हर्ट्ज पर। और अगले कुछ घंटे आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, आज शाम 8 बजे तक श्वेता हाजिर है ओनली ऑन एफएम रेनबो। फिलहाल तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, क्योंकि आज की इस काउंटडाउन में स्पॉटलाइट उन ट्रैक्स पर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड रीमिक्स रील्स पर धूम मचा रहे हैं। आई एम श्योर वो आपके भी फेवरेट हैं, क्योंकि वो मेरे भी फेवरेट हैं, तो मैं जानती हूँ आप लोगों का टेस्ट। और साथ ही साथ मैं बजाऊंगी ऐसे गाने जो आपको एक नॉस्टैल्जिया देंगे, ठीक है, वो एक सरप्राइज में आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं एक फ्रेश एंड पावरफुल ट्रैक के साथ। फिल्म धुरंधर का ये सॉन्ग अपनी सोलफुल मेलोडी और इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने को आवाज दी है खान साहब और शाश्वत सचदेव ने। एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 10 आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 एफएम रेनबो।

कैसा लगा आपको ये ट्रैक, है ना दमदार? तो अब वक्त आ गया है एक ऐसे ट्रैक की ओर बढ़ने का जो 3 दशकों बाद भी डांस फ्लोर की जान बना हुआ है। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था ना, तब इसके बीट्स और स्टाइल ने यूथ को दीवाना बना दिया था। बपी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों से सजा ये अगला गाना आज भी उतना ही एनर्जेटिक लगता है। FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 9 आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: घर खर्च के पैसे 2,000 जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 5:35 और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर आज बहुत पॉपुलर है। अभी आपने सुना एक बेहतरीन सा जबरदस्त गाना और आपने रिसेंटली उसे कहीं तो सुना होगा, आई एम श्योर। और सुनते ही आपकी यादें भी ताजा हो गई होंगी। जी हाँ, तमा तमा उन्हीं सॉन्ग्स में से है। फिलहाल पार्टी मोड ऑन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर मूवी का ये एनर्जेटिक ट्रैक जिम प्लेलिस्ट एंड पार्टीज दोनों में खूब पॉपुलर है। बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इस ट्रैक को यूथ का फेवरेट बनाया है। सो FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 8 ओनली ऑन 100.7 FM। स्टे ट्यून्ड।

भाई कॉलेज फेस्ट हो या फेयरवेल पार्टीज, ये ट्रैक तो हर जगह परफेक्ट फिट है। तो सुनते हैं बादशाह और बेनी दयाल के वोकल्स में लेट्स नाचो फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स। आज भी पार्टी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर है एंड एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 7।

जी हाँ, तो जिस सरप्राइज की मैंने शुरुआत में बात की थी, अब बढ़ते हैं उन सुपर हिट्स की ओर जो 90s के दौर में ब्लॉकबस्टर्स थे। जी हाँ, वो ब्लॉकबस्टर्स थे और इन सॉन्ग का जादू इतना था कि आज भी इन्हें रिमिक्स वर्जन में लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, अब दिल थाम के लीजिए क्योंकि अब प्ले होंगे पावरफुल एवरग्रीन फेवरेट्स अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज में FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 6 आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले।

जी हाँ, अब आ रही है नंबर वन सॉन्ग की, जिसने रिसेंटली जबरदस्त कमबैक किया है. और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं प्ले करने वाली हूँ गुप्त का सुपरहिट ट्रैक. जी हाँ, दुनिया हसीनों का मेला लगभग 3 दशकों बाद फिर से ट्रेंड कर रहा है. और इस सॉन्ग को एक नया अवतार में रिसेंटली फीचर किया गया है, जिसके बाद से ये ऑनलाइन वायरल हो गया है. एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ओरिजिनल सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में लाखों नए व्यूज हासिल किए हैं. और एक न्यू जनरेशन, एक आई मीन टू से पूरी की पूरी एक नई जनरेशन ने इस सॉन्ग को डिस्कवर किया है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात. सिंगर उदित नारायण जी ने भी कहा है कि उन्हें हमेशा से लगता था कि इस गाने में कुछ तो खास है. जो एक टाइमलेस बात है वो ये गाना लेकर आया है, और आज उसकी पॉपुलैरिटी फिर साबित तो हो ही रही है. तो चलिए सुनते हैं हम दुनिया हसीनों का मेला, ओनली ऑन 100.7 FM. बने रहिए श्वेता के साथ.

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हर जमाने में कुछ आवाजें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जो मास हिट्स बन गए। तो दोस्तों, ये था आज का एफएम टॉप 10 काउंटडाउन। चलिए इसी के साथ मैं श्वेता अब इजाजत चाहती हूँ। कुछ ही देर में फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद से महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। पिछले 12 वर्षों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का नया एक नोड है। यहाँ डिफेंस फैक्ट्री लगेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। परीक्षा के लिए कुल 381,605 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कामों को गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने का निर्देश दिए। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता की। फरुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया संवाद किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में जनता चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ान कल से शुरू हो रही हैं। पहले दिन 4 आगमन और 4 प्रस्थान मिलाकर कुल 8 उड़ानों की आवाजाही होगी। हवाई अड्डे पर पहली उड़ान लखनऊ से आएगी, जो सुबह 8:05 बजे लैंड करेगी। जाने वाली पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए सुबह 8:35 बजे रवाना होगी।

पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़। सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

भाई आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 मेगाहर्ट्ज पर. ये वक्त होता है शाम का जब आप इंजॉय करते हैं आपका शो, आपका प्रोग्राम शामी अवध. मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी. इस घंटे एक बार फिर से आपके साथ स्वागत करती हूं सबका प्रोग्राम शामी अवध में. ये प्रोग्राम है जहां पे लखनऊ का दिल धड़कता है. आप मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो बात होगी तमाम अपडेट्स की. उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ.

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध और यहाँ लेकर आते हैं हम लखनऊ सिटी की अपडेट मौसम से लेकर मेट्रो तक। जी हाँ, यहाँ हम शेयर करते हैं आपसे हमारे शहर की मेजर सिटी हैपनिंग्स, इवेंट अपडेट्स, इन शॉर्ट शहरे रौनक। कहते हैं ना अमा यार, चल क्या रहा है हमारे शहर लखनऊ में। तो भाई इस वक्त तो गाने चल रहे हैं लखनऊ में, बेहतरीन गाने। पर उससे पहले क्विक अपडेट में देती हूँ कि जून के सेकेंड हाफ में लखनऊ के क्रिएटिव स्पेसेस में पोएट्री, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक ओपन माइक्स का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, जो यंग आर्टिस्ट, राइटर्स और परफॉर्मर्स के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों अब से कुछ ही देर में 8:30 पर आप सुन सकते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एस्बेस्टर बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से। बाकी के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर।

अब से कुछ देर में 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंगम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से, और बाकी के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर।

तो दोस्तों 6:25 हो रहा है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ, प्रोग्राम शामे अवध। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, कुछ दिन से जून की गर्मी के बीच बादलों ने ना दस्तक देनी शुरू कर दी है। कल ही का मौसम देख लीजिए, हवा में नमी, आसमां में बादल और लखनऊ वालों का अब इंतजार खत्म होने को। काश खत्म हो जाए कि मानसून जल्दी से आ जाए और जबरदस्त बारिश लेके आ जाए। वैसे भी बारिशों में लखनऊ का अपना ही चार्म होता है ना। आपको क्या लगता है? फिलहाल मुझे तो लगता है कि कैंट और हजरतगंज की वो भीगी सड़कें, वाह वाह वाह, और मरीन ड्राइव की हवा, घूमती रिवरफ्रंट का मौसम, साथ में वो गरम गरम चाय, क्या बात है, क्या मजा आता है। वो होता है असली मानसून का मजा, राइट? जी हाँ, तो आप बताएं मुझे लखनऊ में बारिश का सबसे फेवरेट स्पॉट आपका कौन सा है। तो चाय का कप तैयार रखिए और आप सुनते रहिए शामे अवध श्वेता के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM पर।

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शामे अवध इस शाम का उन्वान है। शामे अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

तो दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शाम अवध श्वेता के साथ। चलिए कुछ अपडेट्स मैं आपको दे देती हूँ। लखनऊ के रिवर फ्रंट एरिया में एक नया अट्रैक्शन डेवलप होने जा रहा है। गोमती रिवर फ्रंट पर एक मॉडर्न पेडेस्ट्रियन

ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका थीम होगा स्माइल यू आर इन लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ये ब्रिज सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बकायदा ये सिटी के लिए एक आइकॉनिक सेल्फी स्पॉट और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है। प्रोजेक्ट को सिटी का नया अर्बन लैंडमार्क माना जा रहा है, साथ ही गोमती कॉरिडोर और जो रिवर फ्रंट एरिया है उस पे बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स भी सिटी की ट्रैफिक और टूरिज्म पोटेंशियल को बूस्ट करने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म पे भी काम हो रहा है, साथ ही साथ ब्यूटिफिकेशन पे भी काम हो रहा है। और वन मोर अपडेट, यूपी दर्शन पार्क में लखनऊ के मोस्ट पॉपुलर फ्लीए फेस्टिवल में एक फ्लीए अफेयर प्रोग्राम चल रहा है। इसका आज फाइनल डे है, सो अभी भी टाइम है, 14 जून को आज उनका फाइनल डे संडे को है। इट्स अ लॉन्ग डे इवेंट, सो आप डिटेल्स एंड अपडेट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर उनके अदर सोशल मीडिया पेजेस पे देख सकते हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो भाई इंफरटेनमेंट का तो बरकरार रहेगा पूरा का पूरा, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, साथ ही साथ हम आपका इंटरटेनमेंट कराते रहेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स एंजॉय सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप शामे अवध श्वेता के साथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, कि हर शहर की पहचान ना उसके लोग होते हैं। लखनऊ में ग्रीन लखनऊ इनिशिएटिव्स लोगों के साथ मिलकर ग्रेजुअली सिटी को क्लीनर और ग्रीनर बनाने की जो इनिशिएटिव है, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो आप भी अपने आसपास चीज़ों को साफ स्वच्छ रखिए, और ये चीज़ें किसी शहर को सिर्फ डेवलप ही नहीं करती बल्कि लिवेबल और सुंदर बनाती है। तो चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम शामे अवध को। इजाज़त दीजिए मुझे, कुछ ही देर में हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम हेलो FM में। तो बने रहिए श्वेता राजवंशी के साथ, और 7 बजे ज़रूर सुनिए आज की टॉप 10 न्यूज़। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी ने कहा, सरकार की कई योजनाओं का लाभ प्रदेश के 2 करोड़ बच्चों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। यूपीपीएससी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 67 जनपदों के 891 परीक्षा केंद्रों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा में कुल 40% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रमों का दौरे जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में पत्रकारों से वार्ता की। फरुखाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, मिर्जापुर में नंदगोपाल गुप्ता नंदी, शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया संवाद किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में जनता चौपाल में हिस्सा लिया। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ान कल से शुरू होंगी। पहले दिन 4 आगमन और 4 प्रस्थान मिलाकर कुल 8 उड़ानों की आवाजाही होगी। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सरकार ने SIT का गठन किया है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया, सरकार ने 1 हफ्ते में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के DGP राजीव कृष्णा ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्तदान के महत्व का जिक्र करते हुए कहा, रक्तदान से किसी को नया जीवन प्रदान करना मानवता की सच्ची मिसाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

जी हाँ दोस्तों, 7 बज गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम। आप हैं श्वेता राजवंशी के साथ और आई एम श्योर आप भी चाह रहे होंगे कि आपका भी फ़ोन लगे और जल्दी से लग जाए, बातें करें और आपकी फरमाइश हम पूरी करें। तो भाई देर किस बात की है, हम बैठे ही हैं आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए और हम आपकी फरमाइश आपके चाहने वालों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो देर किस बात की है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और हम पूरी करेंगे। जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमारा नंबर डायल करिए और हम तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाइए। और इसी बीच

साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। ये बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि हम इन्हें लाइन पर लें, तो जल्दी से हम इनको लाइन पर लेते हैं और कुछ गुफ्तगु करते हैं। हेलो, हेलो,

कोई बात नहीं, इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो हम प्ले कर रहे हैं। इनका नाम है पिंकी रिंकी। हाँ जी, इन्होंने हमें कॉल किया था, पिंकी रिंकी ने, और इनकी ये रिक्वेस्ट बदल गए हैं ये दुनिया फ्रॉम द मूवी आंदोलन आपके लिए ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

0: जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुल्तान मज़ा बात कर रहा हूँ, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं?
1: जी बिल्कुल मैम, हम रोज सुनते हैं अपने 100.7 FM रेनबो को।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है जब आपने कॉल किया था तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, राइट?
1: जी जी जी जी।
0: अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने इस वक्त कॉल किया। आप क्या, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गाने के बोल हैं, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना।
0: ओके, और ये किसको सुनाना पसंद करेंगे?
1: ये मेरे दोस्त हैं, सादिक रजा है, मोनस रजा है, जिशान रजा है, अफजाल रजा, इकबाल रजा, मम्मी पापा।
0: ओके,
1: और मैम अंजू मैम है, तरनुम मैम है।
0: जी जी बिल्कुल, सभी के लिए आपकी ये फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, और ये गाना आपके लिए और आपके सभी चाहने वालों के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।
1: थैंक यू।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

0: आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद।

बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 7:32 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, मेरी यानी श्वेता राजवंशी के साथ। तो फिलहाल हम तक काफी कॉलर्स पहुंच रहे हैं और एक कॉलर इस वक्त लाइन पर है, चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी फरमाइश जानते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम बखाना तहसील जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं मैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं ना?
1: हाँ, डेली सुनते हैं प्रोग्राम, डेली मिस नहीं करते।
0: वाह क्या बात है, और आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: आज हमको सुनाइए अंत पिक्चर का, करती हूँ प्यार मैं सिर्फ संडे को, ऐसे करके गाने को बोल ना।
0: हाँ,
1: ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, थोड़ा नाम ले लूँ?
0: हाँ जी बिल्कुल, अपना बताइए फरमाइश, ये किस किस तक पहुँचानी है?
1: पहले तो आप हो गए, आप जितने आते हैं एफएम रेनबो के उन सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा। रसूलपुर गुलगा से हो गए प्रभात तिवारी, मेरे छोटे भाई राजेंद्र प्रसाद हो गए कुंडा प्रतापगढ़ से, और मोनू रघुवंशी हो गए सीतापुर से, अश्विन भाई हो गए और भगवान सिंह परमार जी हो गए, प्रेम कुमार जी हो गए, राहुल भाई हो गए, दिलीप कुमार हो गए सीतापुर चीनी मिल से, और मागीला चंदेल हो गए, और सुना है राहुल भाई हो गए इटाव से, और जितने लोग सुने उन सभी के लिए मेरे बड़े भाई किशोर तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्ना तिवारी। हेलो,
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपका ये गाना मैं प्ले करती हूँ।
1: ठीक है मैम, थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, एंजॉय।

जी हाँ दोस्तों, 7:38 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो एफएम श्वेता के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी फरमाइश पूरी हो तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए, डायल करिए हमारा नंबर और हम तक पहुंचाइए अपनी रिक्वेस्ट। हम प्ले करेंगे आपका सॉन्ग।

0: जुड़ चुकी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, वो मोहतरमा कहाँ चली गई भाई?
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए भाई। कहाँ चली गई आप? अपना नाम बताइए।
1: हमारा नाम है सोनू त्रिपाठी।
0: अच्छा जी, कहाँ से कॉल करा है आपने?
1: अच्छा, यहाँ से।
0: अरे वाह, क्या आप सुनती हैं 100.7 FM रेनबो?
1: हाँ मैम।
0: अच्छा, क्या आप जो भी
1: मैम, हम तब से सुनते थे जब से शैलजा मैम थी, तब से सुनते थे।
0: अच्छा,
1: बचपन से, पर आज फोन लगा
0: तो अभी
1: पहली बार।
0: बधाई हो भाई। फिलहाल ये बताइए, अभी आप करती क्या है?
1: कुछ नहीं मैम,
0: मतलब क्या आपकी स्कूलिंग हो गई, क्या है, कुछ तो करती होंगी?
1: हम घर पे हैं।
0: घर पे रहती हैं? अच्छा, तो आप अपने खाली समय में क्या करती हैं?
1: खाली समय में यही फाल पीको, ब्लाउज सिलाई करती हूँ।
0: अरे वाह, तो ये भी तो एक कला ही होती है, सिलाई बुनाई, हर किसी को थोड़ी ना आती है।
1: हाँ मैम,
0: अच्छा
1: देवरानी मेरी सिलाई है।
0: अच्छा मैं आपसे बातें तो करती रहूंगी, लेकिन मुझे जरा ये बताइए आपको गाना कौन सा सुनना है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही थी फोन पर भी और आप एकदम मार घनचक्कर हुई पड़ी थी, कोई गाना ही नहीं बता रही थी मुझे।
1: मैम गाना
0: अभी भी घनचक्कर हो गई है। चलिए कोई
1: राजा हिंदुस्तानी पिक्चर का सुनवा दीजिए।
0: भाई, अच्छा कोई भी गाना।
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: अरे अरे अरे, कोई आया क्या आपकी जिंदगी में?
1: ठीक है मैम, ठीक
0: अच्छा ठीक है, किसी को सुनाना चाहेंगी आप ये गाना?
1: है।
0: किसी को सुनाना चाहेंगी आप ये गाना?
1: हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ मैम,
0: हाँ जी, आप ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: हाँ मैम,
0: जल्दी से नाम बोल दीजिए।
1: हमारी एक बहन है गुंजन तिवारी। ठीक
0: ठीक है,
1: है मैम, रखें।
0: ओके,
1: नमस्ते
0: बाय बाय,
1: मैम।
0: नमस्ते।

0: दोस्तों बिल्कुल आते हैं आप लोग हमारी जिंदगी में बहार बन के, और इसी बात पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग
1: जी, हम गुलक्का सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से मैम।
0: हाँ जी, आपकी तो आवाज मैं पहचान गई। कैसी हैं आप
1: मैम? आप तो हमारी आवाज पहचान जाती
0: हैं। हाँ जी, है ही बड़ा ही प्यारा अंदाज आपका गुड इवनिंग और हेलो बोलने का।
1: अलग है हमारा बात करने का।
0: हाँ जी, तो बताइए आज आप के लिए हम कौन सा गाना प्ले करें?
1: जी सिर्फ तुम मूवी का एक मुलाकात जरूरी है।
0: अरे वाह, क्या बात है। ठीक है
1: जी मैम, लेकिन आज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
0: अरे ये तो,
1: हम रेडियो भी सुनते हैं, लाइव सुनते नहीं है।
0: हाँ जी, आज तो क्रिकेट मैच का चल रहा है रिले, और जी, आप अच्छा आप पे सुन सकती हैं हमें।
1: जी मैम, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा आज हमको।
0: कोई बात नहीं, देखिए आपकी कॉल लग गई और हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं आपके लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
1: कैसी हैं मैम?
0: हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। हमने आपको 4 बजे सुना था, हम बहुत खुश हो गए थे कि आज स्वतः मैम आई हैं, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन 7 बजे खोला रेडियो तो।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आपने मेरी आवाज पहचानी और आपने कॉल किया, और देखिए आपका कॉल मिल भी गया, लग भी गया, और हमने पिक भी कर लिया। तो ये जल्दी से बताइए, गाना आप किस किस को सुनाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू।
1: रोशनी रावत है, बबीता राव है, नीलू शर्मा है, समा परवीन है, साहिबान साहब, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग नहीं सुन रहे उन सभी को।
0: अरे वाह, सभी को, मतलब आप ये गाना सुनाना चाहती हैं?
1: जी जी मैम।
0: ओके
1: ओके, थैंक यू।
0: ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय
1: बाय।

0: जी दोस्तों, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ज़रूरी होती हैं, और एक मुलाकात की तो जो हसरत होती है वो बहुत ही गहरी होती है। इसी के साथ जो आपकी हसरत है कि आपकी फरमाइश हम सब तक पहुंचाएं, आपके चाहने वालों तक पहुंचाएं, तो बिल्कुल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: जी, जिला रायबरेली, ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी रामराज जी, आप बताइए, आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मुझे फिल्म धर्म कांटा का गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक है, ओके। और आप क्या हमारे रेगुलर लिसनर हैं?
1: जी आपके यहाँ ईमेल हम हर कार्यक्रम में करते हैं और फोन भी लगाते हैं।
0: क्या बात है, तो इसका मतलब आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद है और आप दिल लगा के सुनते हैं।
1: जी मैं FM रेंडो तो हम एक साल से सुन रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी लखनऊ 1985 से सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा जान के। जी जी, तो आपकी ये फरमाइश आप किस किस तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: जी चार छह लोग उनके नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल लीजिए
1: जी। सबसे पहले मिर्जा इमरान बेग पहाड़ीपुर के, मिर्जा तुराब बेग रामचरण प्रजापति
0: जी,
1: पप्पू पास मनी से नीरज प्रभु बजरंगी काका
0: जी जी, सभी को आपको जी थैंक यू
1: जी।
0: ठीक है, तो आपको, आपके परिवार को, आपके सभी फ्रेंड्स को, सभी मित्रों को ये गाना आपकी पसंद का ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो सुनिए और इंजॉय कीजिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है, चलिए इसी तरह आप सुनते रहिए, हमें कॉल करते रहिए, हम तक प्यार अपना पहुंचाते रहिए, हम तक अपना आशीर्वाद पहुंचाते रहिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: देखिए वक्त नज़दीक आ रहा है ये प्रोग्राम वाइंड अप करने का, पर उससे पहले मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं जो चाहती हैं कि मैं उनकी कॉल प्रोग्राम में शामिल करूं, तो जल्दी से हम उनसे बात कर लेते हैं और उसी के बाद उनकी फरमाइश के साथ ये प्रोग्राम हम एंड करेंगे और आपसे टाटा बाय बाय करेंगे और फिर से मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तो जल्दी से हम उनसे बात करते हैं, ले लेते हैं उन्हें लाइन पर। हेलो,
1: नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं पूजा बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी पूजा, बताइए आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैम गीत के बोल है, तेरा फितूर जब से चढ़ गया है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना, किसको सुनाना चाहेंगी आप?
1: मैम मेरी सिस्टर है।
0: ओके,
1: आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, बहुत दिनों से कॉल लगा रहे, बिल जाती है पर रिसीव ही नहीं होती।
0: अरे कोई बात नहीं, देखिए आज मैंने ही आपकी कॉल रिसीव कर ली और आपसे बात हो गई, बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपकी पहली बार कॉल लगी है।
1: मेरी कॉल रिसीव करने के लिए थैंक यू।
0: हाँ जी, और थैंक यू हमें कॉल करने के लिए और हम तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए।
1: जी, और ये तो मतलब सभी श्रोताओं को डेडिकेट कर रही हूँ।
0: ठीक है, बिल्कुल, ये गाना आपको, आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स को हमारी तरफ से ओनली ऑन 100.7 FM पर। आप सुन रही हैं श्वेता राजवंशी को और सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, ओके, चलिए सुनते हैं हम एक ये प्यारा सा गीत और टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिस्निंग टू 100.7 FM जो है धड़कन लखनऊ की।

वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है। पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड है। यहां डिफेंस फैक्ट्री लगेगी और यह सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल है, कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, जिससे न केवल प्रदेश की नई पहचान बनी है, नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। UPPSC द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से शुचिता को लेकर समुचित व्यवस्था की गई। सभी जिलों में प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग मुस्तैद रहा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ान कल से शुरू हो रही है। पहले दिन 4 आगमन और 4 प्रस्थान मिलाकर कुल 8 उड़ानों की आवाजाही रहेगी। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन 15 दिन बढ़ाए जाने के लिए सैलानियों की आमद बढ़ी है। पर्यटन को जंगल में बाघ व अन्य वन्य जीवों के दीदार भी निरंतर हो रहे हैं। PTR सहित प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व इस बार 15 जून के स्थान पर 30 जून तक खुले रहेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में रक्तदान शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए गए। आजमगढ़ के मंडली चिकित्सालय में आज से 10 बेड के रक्तदाता कक्ष की शुरुआत की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7 सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
3: पुरानी जींस और गिटार।
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद।

0: शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, और दिल में कोई ना कोई कभी ना कभी दस्तक जरूर देता है, और हम उस दस्तक देने वाले के पीछे बिना सोचे समझे चल देते हैं। बस यही तो है जिंदगी। तेरी जिंदगी की हर खुशी के गवाह तो बहुत होंगे, तेरे दिल से जुड़े हर गम के भागीदार हम हैं। बस यही होती है जिंदगी, और यही होता है जब किसी पर दिल आ जाता है। प्रोग्राम आबशार में आज मैं सरशार हूं, आपका दोस्त जमशेद, 100.7 FM रेनबो के साथ। कबूल कीजिए जमशेद का प्यार भरा सलाम।

कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, और वो लहर तब उठती है जब किसी की आमद होती है, किसी के आने की आहट होती है, तो दिल ना जाने क्या क्या सोचने लगता है।

0: पूरा।
1: चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें, अगर वो कहें और अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें। तेरा साथ होना मेरे होने का एहसास है, जिंदा नहीं उस पल में जिसमें तू नहीं है। तू है तो हर लम्हा मेरे लिए खास है, और इस तरह से मोहब्बत का आगाज होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी हमेशा अच्छा ही होता है।

रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि ये लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। ये कहना है साहिर लुधियानवी साहब का, और यकीनन हर किसी को मुकम्मल मोहब्बत नहीं मिलती, जिस तरह से हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इसीलिए लोग कहते हैं दिल ना लगाना दिलदार यहां। उनको तो हर शख्स हर कोई झूठा नजर आता है इस मोहब्बत की दुनिया में।

दिल ना लगाना, दिलदार यहां सब झूठे हैं। और वाकई किस पर यकीन किया जाए, कैसे यकीन किया जाए? हर किसी के पास दो चेहरे नजर आते हैं, कहते कुछ हैं लेकिन दिल में होता कुछ और है। और उसके बाद मोहब्बत में एक दूसरे का भरोसा यूं ही खत्म होता जाता है।

बस ऐसा ही होता है जिंदगी के साथ, कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ खो जाता है। लेकिन कौन किसके लिए कब जीता है ये तो वक्त ही बताता है। फिलहाल 8:41, साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम आबशार का वक्त।

बस यहीं तक। होती है मुलाकात कुछ देर के बाद, यानी समाचार संध्या के बाद। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ। होती है मुलाकात कुछ देर के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास

0: जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।

0: and a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
2: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट को डिजाइन को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन जितना ज्यादा डिजाइन जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे

0: देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन GST बनाया है सरकार ने।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेहनत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे,
2: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत
5: Love you, जिंदगी।
4: सुकून से भरा दोपहर
6: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
7: जगह।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल
8: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
9: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो
10: धड़कन लखनऊ की।
9: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 9:04 साथ में है कुछ सेकंड्स और रजनीगंधा में तो मैं रहूंगा ही जरूर। मैंने प्रोग्राम रजनीगंधा में होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले ये जो एक घंटा होता है यानी 9 से 10 बजे के बीच वाला जो वक्त होता है, ये कुछ अलग सी म्यूजिक आपके लिए लेकर आता है। और म्यूजिक होती है कुछ यूं।

बिल्कुल, दिल की बात यही कहती है कि डांस का मूड हो चुका है शुरू, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ ये गीत, जिससे आपके पैरों की धड़कन रहेगी बरकरार, क्योंकि आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ।

और ऐसे ही शोख अदाओं का जादू चलता रहेगा और एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत आप तक रहेंगे पहुंचते, और जब मौका मिल ही गया है और लाइन शुरू हो चुकी है गीतों की, तो क्यों ना फिर इस अगले गीत की तरफ कदम बढ़ाया जाए।

तेनू शरारत सिखावा जदो नैना लड़ावा नैन लड़ाइए और साथ में जो पैरों की धड़कन है पैरों की थिरकन है वो भी रहेगी बरकरार।

और आज की रात मजा इन गीतों का भी लीजिए और साथ में पैरों की थिरकन रखिए बरकरार। और 9:19 हो चुके, अभी भी ढेर सारे गीत आप तक पहुंचने हैं बाकी। एक तरफ आप रेडियो पर ले रहे हैं मैच का मजा, जी भारत और पाकिस्तान का मैच चला है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, और न्यूज ऑन एयर ऐप पर मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ।

0: बिल्कुल झूठी कसम नहीं होती है, कसम वही होती है जो निभाई जा सके। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर पर, और बहुत अच्छा आपको लग रहा है और मैं कहूँगा शुक्रिया। साथ साथ विजय पाल यादव जी नमस्कार, आपने ग्राम अपोस्ट ललहुआ जिला खेरी से किया है मेल, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आबशार भी आपको बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए है, होता है प्रोग्राम। जावेद अख्तर साहब का भी मेल आ चुका है और लगातार प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। और भाई पॉप टाइम में आपने लिखा है, पॉप टाइम में आप आए बाहर आ गई, आबशार सुना नहायत ही खूबसूरत अंदाज, गज़लें लाजवाब लगें। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने किया है मेल, और शमसुल कमर राही और बेगम रुसार का भी नाम लिखा है मेल में। साथ साथ वैभव प्रकाश जी का भी मेल आ चुका है नागपुर महाराष्ट्र से, ज़बरदस्त आगाज। और लिखते हैं जमशेद जी के साथ साथ सभी श्रोताओं व गंगोई सीतापुर के लोगों को मेरा सादर नमस्कार, और नागपुर में बारिश होने से गर्मी में राहत मिली है, लेकिन पॉप टाइम की गर्मी सर चढ़कर बोल रही, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। साथ साथ रामराज का भी मेल आ चुका है रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका, और सबसे पहले आपने हमारे लिए लिखा, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेल आ चुका है विकास यादव का, आपने हमें सुल्तानपुर से मेल किया है, और पूरा प्रोग्राम आप एंजॉय करें लगातार, बस इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए। शहनू नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास मटकली जिला बरेली से, प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय, रोज सुनते हैं। और साथ साथ मेल आ चुका है शुक्ला जी का, यानी अनुराधा शुक्ला जी, विलेज गंगापुर है ना, सही पढ़ा ना, बहराइच से आपने हमें किया है मेल, और प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय, लाजवाब गीत लग रहे हैं। आनंद तिवारी जी का भी मेल आ चुका है, बेसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए, मेरा अंदाज मेरी पहचान है। और आपने मल्लावा हरदोई से हमें किया है मेल, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, ये गीत एंजॉय कीजिए।
1: नहीं बेटा, प्यार में हाँ।

और करण औजला की आवाज के बाद चलते हैं एक और पुराने गीत की तरफ, जिसने बहुत बहुत ज्यादा शोहरत पाई थी। जी, मैं इस गीत की बात करने वाला हूं उस दौर के, और ये रहा आपके रेडियो सेट पर, याद आया, काफी ज्यादा शोहरत पाई थी, या यूं कहें बहुत उधम मचाया था इस गीत ने।

और मेल आपके हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल आ चुका है हमारे पास। और आपने हमें कहां से मेल किया है? आपने हमें कलकत्ता से मेल किया है, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। और प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय, बस यही तो मोहब्बत है। इतनी दूर दूर से आप हमें मेल करते हैं, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। और साथ साथ मेल हमारे पास आ चुका है जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरूही नामदेव और सौम्या नामदेव का। आपने खनौदी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से किया है मेल और गाने आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। इन्होंने कहा, वाह जमशेद भाई, आज तो कमाल हो गया, सभी गाने बेहतरीन तरीके से पेश कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह के मेल करते हैं। तेज बहादुर यादव जी का भी मेल आ चुका है, सलाम नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति गाने आप गजब के गजब है। चलिए, और पिछले कई दिनों से आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कार्यक्रम मैंने सुने लेकिन मेल नहीं कर पाया। आज संडे है, घर पर ही हूँ और इसलिए मेल करने का समय मिल गया। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, आपने हमें शर्की ज़िला रायबरेली से किया है मेल और इस समय गुरुग्राम हरियाणा से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं ऐप पर, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अरविंद कुमार दुबे जी का भी मेल आ चुका है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, नमस्कार, उमस भरी गर्मी और ठंडक भरी बयार है, श्रोताओं का विशेष प्यार दुलार है, जागरूकता और सामाजिक सरोकार है, लखनवी तहजीब और हमारा संस्कार है, एफएम रेनबो लखनऊ केवल चैनल नहीं, हर रोज़ हर घड़ी आत्मीय परिवार है। अरविंद दुबे, दीपा, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी तिवारी, श्यामा कुमारी, ग्राम धर्मदेवा, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से।

0: 완충가?
1: और झुमका गिरा बरेली की बाजार में, यानी यूपी का जिला बरेली, और वहां पर गिरा झुमका, लेकिन कहां पर मिला ये किसी को नहीं पता। ओ हो हो हो, इस गीत ने भी धूम मचाई थी। चलिए इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं।

और यहाँ पर हम दोनों की बात हो रही है, यानी पर्दे के उस पार है आप, पर्दे के इस पार हूँ मैं यानी जमशेद आपके साथ। और ये जो वक्त है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि 9:57 हो चुके हैं साथ में कुछ सेकंड्स। अब से कुछ देर के बाद प्रोग्राम शुरू होगा रजनीगंधा, जहां पर मैं खूबसूरत गीत लूंगा और साथ में लूंगा चंद आशार ऐसे जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से करेंगे रिलेट। फिलहाल मुझे यानी जमशेद को दीजिए इजाजत प्रोग्राम पॉप टाइम से। और चलते चलते तो मैं यही कहूंगा, ये जो गीत है ये लगातार आज भी कायम है जी, यानी दलेर मेहंदी की एक बार फिर से आवाज। मैं चलता हूं, थोड़ा सा तैयारी कर लो, न्यूज ब्रेक यानी न्यूज भी आप तक पहुंचाना है, और उधर रेडियो पर आप लगातार कमेंट्री सुन रहे हैं भारत और पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच की। तो बस हमारे साथ बने रहिए न्यूज ऑन एयर ऐप पर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के सांसदों व विधायकों और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दोनों मंडलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी परियोजनाओं प्रस्तावों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विचार विधानसभा वार उनके क्षेत्र की सड़क आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर प्राथमिकता निर्धारित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए समय से परियोजनाओं की स्वीकृति कराई जाए तथा तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी सड़क निर्माण परियोजनाओं प्रस्तावों का डिजिटल प्रेजेंटेशन देखा। विश्व रक्तदाता दिवस के विशेष अवसर पर पुलिस अधीक्षक बिजनौर अभिषेक झा के निर्देशन में पुलिस लाइन अस्पताल में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अभय कुमार पांडे एवं प्रतिसार निरीक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार मौजूद रहे और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। कानपुर नगर में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं विकास

कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित के कार्यों को साझा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने आज शाम गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की साधारण बैठक में विभिन्न संस्थाध्यक्षों और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे युवाओं को AI, साइबर स्पेस, साइंस इत्यादि अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना है। देश के जवान और किसान को सशक्त बनाकर स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत बताई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
5: पुरानी जींस और गिटार
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
2: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनी

ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। भला बताइए, इतनी तारीफ कौन करता है भला? क्या आपने कभी ऐसी तारीफ की है किसी की? लेकिन यकीन जानिए, अगर किसी की तारीफ करते हैं, चाहे आप किसी पीठ के पीछे करें या किसी के सामने से तारीफ करें, कुछ देर के लिए उसका मूड जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। फिलहाल मेरा मूड अच्छा और हो गया। 10:11 हो चुके हैं, आपके साथ प्रोग्राम

अपनी कंधा लेकर मैं जुड़ चुका हूं और खूबसूरत गीतों का जो खजाना है वो लगातार एक के बाद एक आपके पास पहुंचेंगे। और अगला गीत भी कुछ कह रहा है। मैंने कहा ना कि इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, ये तारीफ का एक अलग अंदाज हो गया, लेकिन जो अगला गीत है उसमें भी तारीफ का अंदाज जो है कुछ अलग है, थोड़ा सा जुदा है।

अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। तेरी जिंदगी की हर खुशी के गवाह तो बहुत होंगे, तेरी जिंदगी की हर खुशी के गवाह तो बहुत होंगे, तेरे दिल से जुड़े हर गम के भी भागीदार हैं हम। इस कदर इतनी शिद्दत से मोहब्बत है तुझसे,

जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तू है शामिल इस जिंदगी में इस तरह जैसे मेरी मुस्कान में शामिल मेरा गम है। तूफान चाहे कितने भी आए फिक्र नहीं, जब तू समंदर मेरा और तेरा साहिल हम हैं।

कोरा कागज था ये मन मेरा, कैसे किसने उस कोरे कागज जैसे मन पे अपना नाम लिख दिया। ये यूं कहे कि तू ना जाने तेरे दीदार के लिए दिल मेरा कितना तरसता है, तेरे एक दीदार के लिए दिल मेरा कितना तरसता है। महकती है दिल की गली जब तू सावन बन के बरसता है।

मन में तुम्हें मुस्काए, खुद को देखते हैं जब भी आईने में, लगता है किसी की अमानत है हम, ख्याल रखते हैं हम अपना उसी के लिए, आज जिंदा जिसकी बदौलत है हम।

तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहो। महफिल में तेरी ना हो हमारा जिक्र, महफिल में तेरी ना हो हमारा जिक्र, न तेरी गली में चर्चा मेरे नाम का, बस बस तेरे दिल में बसेरा हो मेरा, वरना ये जिंदगी मेरी किस काम की है भला। यही होता है

आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। 10:56 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होती है मुलाकात प्रोग्राम रजनीगंधा के आगे के सफर में। तो आपसे ये कहूंगा, आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के शानदार 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास, सुशासन और सेवा का मॉडल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गोरखपुर महानगर की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ ही प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय फेज के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर महानगर के विकास की 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा द्वारा सोमवती अमावस्या पर्व के दृष्टिगत कछला गंगा घाट का भ्रमण निरीक्षण किया गया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि गंगा घाट पर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जाए व श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा सामना न करना पड़े। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज पुलिस लाइन वाराणसी में नवनिर्मित गेस्ट हाउस, अत्याधुनिक जिम और क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी ने निर्देश दिया कि थानों पर प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण थाना स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के प्रति पुलिस का व्यवहार संवेदनशील, सम्मानजनक और जनोन्मुखी होना चाहिए। साथ ही थाना दिवस और तहसील दिवस को अधिक प्रभावी बनाते हुए शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री तथा जनपद फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक

होने से पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता सामग्री, स्वीकृति पत्र एवं अनुदान राशि के चेक वितरित किए गए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.
4: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
5: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।
6: ठहरते आश के जगह।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
8: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो
9: धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

मोहब्बत है क्या चीज? ये सवाल हर एक के जहन में कई बार कौंधा जरूर होगा। कहां, कैसे इसका आगाज हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बड़ा पेचीदा सवाल है और इसका जवाब हर शख्स ढूंढने की कोशिश करता है। मोहब्बत ना जाने कब, कैसे कोई अनजाना चेहरा, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, ना जाने कौन सी चीज कब अच्छी लग जाती है और उन चीजों से मोहब्बत हो जाती है। कभी किसी को किसी की आवाज से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत है हुजूर, कभी भी कहीं भी किसी से भी किसी भी चीज से हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर वहीं पर आऊंगा, ये किसने शुरू की, कैसे हुई इसकी शुरुआत, कैसा महसूस किया होगा पहली बार जब किसी को किसी से मोहब्बत हुई होगी। और उसके बाद जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके साथ जिंदगी के हर लम्हे को एक ख्वाब की शक्ल में देखा। वो ख्वाब जिसकी ताबीर हर कोई चाहता है, उस ख्वाब को पूरा करना हर शख्स चाहता है। 11:15 7 महक कुछ सेकेंड्स। प्रोग्राम रजनीगंधा में एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

कहता है दिल रास्ता मुश्किल, और वाकई मोहब्बत की जो डगर होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाती किसी को, और अगर मिल जाती तो जो किस्से कहानियां बनी है, फिर वो चाहे लैला मजनू की हो या शीरी फरहाद की हो या और भी मोहब्बत के कई किस्से हो, वो यूं ही ना बनते। बहुत मुश्किल डगर होती है मोहब्बत की, इसीलिए इस राह पर कदम रखने से पहले कई तरह की बातें सोच लेनी चाहिए। क्या? अरे यही ना कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई तरह की अड़चनें भी आती हैं मोहब्बत के रास्तों में,

यूं दस्तक मोहब्बत की दहलीज पर हमारी राहें बदल देगी। एक अजनबी की चाहत इस हद तक हमें होकर रहेगी। मन के कोरे कागज पर नाम तुम्हारा मोहब्बत से लिख दिया। सफर के हम सफर बन रहेंगे। चाहत को सरेआम कर दिया।

क्या मिले कि फैले हुए गम से मट गए, तुम क्या मिले कि फैले हुए गम से मट गए, सदियों के फासले जो थे लम्हों में कट गए।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
1: धड़कन लखनऊ की.
0: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मध खरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो.

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? कभी अंजाम के डर से, कभी इल्जाम के डर से। शराफत वो भी करते थे, शराफत हम भी करते थे। न हम इकरार करते थे, न वो इनकार करते थे। मगर हां, छुप छुप कर एक दूजे का हम दीदार करते थे।

हम क्या बताएं प्यार क्या होता है, कभी इनकार कभी इजहार होता है। बेरंग सी दुनिया में रंगों का नजारा तब होता है जब किसी से प्यार होता है। होती है जंग मोहब्बत के कायनात में जब दिल से दिल का तकरार होता है। कुछ ऐसा ही रंग होता है प्यार का।

और ये जो जिंदगी है ना, इसमें उतार चढ़ाव भी भरपूर तरीके से भरे होते हैं। कुछ चीजें मिलती हैं तो कुछ खो जाती हैं, लेकिन उन चीजों के मिलने या खो जाने में अपना मन कभी नहीं भटकाना चाहिए, है ना। मिल गया तो वाह वाह, अगर खो गया तो फिर नाराजगी कैसी, और अगर नाराजगी है तो उसको भी कभी ना कभी कैसे ना कैसे दरकिनार कर देना चाहिए।

तन्हाइयों का मुनाफा है। मगर अचानक हवा किधर से आई जो तेरी याद लेकर आई है? मेरा हाल मत पूछो, अंधेरे में घिरा हूं फिर भी खुली छत पे टहल रहा हूं। भरोसा देने तेरी याद आई है, खुली छत है, चांद बादलों की ओर से छुपा देख रहा है। उसे भी शायद आज किसी की याद आई है, और उन यादों में वो सारी बातें एक बारगी दूल दिमाग में कौन गई है।

मेरे दिल में जो डाला है डेरा तुमने, लम्हा लम्हा साथ बिताया है तुमने, खामोशियों में भी साथ चलते हो मेरे, चुप रहूं तो भी जज्बात समझते हो मेरे। 11:56 साथ में कुछ सेकंड्स, ये बात कभी अधूरी नहीं रहेगी, फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल मुझे इस वक्त दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शब्बा खैर। और हाँ, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी UPCA द्वारा ग्रामीण अंचल की क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय स्पीड हंट शिविर का शुभारंभ आज गाजीपुर में हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर UPCA के सदस्य, आयोजक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉ. ईरज राजा ने आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उचित अवसर और मार्गदर्शन की होती है। फरुखाबाद UPPSC प्रवक्ता परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने GGIC कॉलेज एवं दुर्गा नारायण PG कॉलेज फतेहगढ़ में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ड्यूटीरत कर्मियों की चेकिंग पर परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर जिले के जैतीपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में बहगुल नदी में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने मौसा की बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए थे। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर अमरोहा में आज जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया एवं CMO रमाकांत सागर द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया तथा भविष्य में नियमित रक्तदान का संकल्प लिया। CMO ने कहा कि व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए, इसके बाद रक्त की स्वतः पूर्ति होती रहती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। सूर्योदय 5:12 पर था, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसार सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।